मीडियम वेव 254.45 मीटर यानी 1189 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून सन 2026 हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। श्रोताओं, स्वीकारें हमारा नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन

नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक

हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम। आरंभ करते हैं समूह स्वर में मातृवंदना से।

आकाशवाणी रीवा और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशंस पर इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम। लीजिए अब सुनिए सुधीर फड़के की आवाज में सूरदास की ये रचना।

0: इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हो रहे हैं। कृषि संकेत के अंतर्गत आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं फसल अपशिष्ट से लाभ विषय पर।
1: भारत देश में मेर मेर के जैव पदार्थ संसाधन उपलब्ध हैं, जैसन के कृषि फसल अवशिष्ट, कृषि उपोत्पाद, वानिकी अवशिष्ट वगैरह। इनमें अपने ही अन मिले वाले वार्षिक फसल अवशिष्ट केर मात्रा लगभग 500 मीट्रिक टन है, जौने मा 135 मीट्रिक टन धान केर पैरा हो। किसान भाई करो, ऐसन कईक ठे विकल्प हाँ जिनकर उपयोग फसल अवशिष्ट के उत्पादकता पूर्ण प्रबंधन में कीन जा सकत है। पशु चारा के रूप में प्रयोग करे के अलावा बहुत अधिक मात्रा में फसल अवशिष्ट केर उपयोग कंपोस्ट निर्माण में, ऊर्जा पैदा करे में, बायोचार बनाबे में और बायोगैस और जैव ईंधन के उत्पादन के खातिर कीन जा सकत है। भाई करो, खादी के खातिर फसल अवशिष्ट के कंपोस्टिंग करे में फसल अवशिष्ट का पशुअन के बाड़ा में पशुअन का बांधे के जगह में बिछाई के कंपोस्टिंग कीन जा सकती है। जोने के बाद यही गड्ढा में डारी के गोबर के साथ मिलाई दिन जात है। यह हर किलोग्राम चारा में पशुअन के बाड़ा से लगभग 2-3 किलोग्राम तक पशुअन के मूत्र अवशोषित हो जाते हैं या मेर से खेते में कंपोस्ट तैयार कीन जा सकत है। एक हेक्टेयर खेत से मिले वाले धान के पैरा से लगभग 3-3.5 टन खादी मिलत ही। वे करो, जैव पदार्थन के ऊर्जा के स्रोत के रूप में घलाई उपयोग कीन जा सकत है और पर्यावरण से जुड़े लाभ के फलस्वरूप सगले संसार में एकर उपयोग बढ़ी रहा है। पिछले कुछ सालन में ऊर्जा के उत्पादन के खातिर जीवाश्म ईंधनन के विकल्प के रूप में फसल अवशिष्ट के प्रयोग में बढ़ोतरी भय है। ऐसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा का कम करे के खातिर तात्कालिक समाधानों मिला है। ऊर्जा के अन्य नवीकरण स्रोतन में जैसन के सौर ऊर्जा,

0: आओ पवन ऊर्जा के तुलना में जैव पदार्थ एकठे भंडारण योग्य किफायती ऊर्जा के बचत करे वाला आओ पर्यावरण के अनुकूल संसाधन है। ऐसा ही यह धान के पैरा जैसन जैव पदार्थ का बायोगैस के रूप में परिवर्तित किन जा सकत है। इनसे यह पावा गया है कि यह सूखे धान के पैरा से 300 घन मीटर बायोगैस प्राप्त किन जा सकत है। यह प्रक्रिया से 55 से 60 फीसदी मीथेन के अंश वाली गुणवत्ता पूर्ण गैस मिलत थी। आओ बची स्लरी के प्रयोग खादी के रूप में किन जा सकत है। वही करो यह प्रक्रिया से हमें पंचन का एक ऐसा हानि रहित विधि मिली है जौने से फसल अवशिष्ट के उच्च गुणवत्ता युक्त ईंधन गैस प्राप्त करे आओ खादी बनावे में लाभकारी प्रयोग किन जा सकत है जौने एकर मिट्टी में पुनर्चक्रण किन जा सके। भाई करो गैसीकरण एकठे ऊष्मी रासायनिक प्रक्रिया होती है जौने मा फसल अवशिष्ट का आंशिक रूप से जलाई के गैस प्राप्त की जाती। यह प्रक्रिया मा जैव पदार्थ पूरी तरह से विघटित हो जाता। आओ प्रारंभिक पायरोलाइसिस से ऊर्जा से परिपूर्ण गैसी उत्पाद मिलत है। फसल अवशिष्टन के प्रयोग प्रोड्यूसर गैस पैदा करे के खातिर गैसी फायर में कीन जा सकत है। यह गैस का बाद में विद्युत उत्पादन के खातिर इंजन में भेजा जाता है जौन अल्टरनेटर से जुड़े रहा था। सूखे जैव पदार्थ के लगभग 75 फीसदी भाग परिवर्तनीय शीतल कीन जाता है या के वाष्प में बदल दीन जाता है। जो यह वाष्प का जल दिन कुछ सेकंडे के भीतर ठंडा कीन जात है तो इनसे एकठे गहरे भूरे रंग के द्रव पदार्थ मिलत है जौने का जैव तेल कहा जात है। यह जैव तेल के कैलोरीफिक मान 16 से 20 मेगा जूल प्रति किलो के बीच रहत है। भाई करो इन्हीं फसल अवशिष्टन से जैविक चार या के बायोचार माने के कोयला बनावा जा सकत है। यह जैविक चार उच्च कार्बन युक्त पदार्थ है जौन जैव पदार्थ के धीमे पायरोलाइसिस माने के ऑक्सीजन के अनुपस्थित में जलाए से बनत है या ऊर्जा के स्रोत के रूप में होत है। यही खादी के रूप में प्रयोग किया जा सकत है। वायुमंडल में हानिकारक गैसन के उत्सर्जन का कम करे और स्थिर राखे के क्षमता एहम होती है। एह बायोचार के प्रयोग ऊर्जा से भरपूर गैसन का उत्पन्न करे में किया जात है जौन द्रव ईंधन बनाबे या सीधे शक्ति या के ऊष्मा पैदा करे में प्रयोग किया जा सकत है। कार्बन के बहुत अधिक समय तक भंडारण करे में एकर प्रमुख भूमिका हो सकती है। जैव चार माटी के उपजाऊपन और ओके पानी सोखे के क्षमता का बढ़ावत है और इनसे पौधन के जड़न का खनिज पहुंचावे के दर में बढ़ोतरी होती।
1: कृषि संकेत के अंतर्गत अभी किसान भाई जानकारी प्राप्त कर रहे थे फसल अवशिष्ट से लाभ विषय पर। ये आकाशवाणी का युवा केंद्र है। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस से पाठ। गायक कलाकार हैं रविन्द्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर।

श्री राम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी ये धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सची तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो आप वही कीजिए, भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने

कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूली ले ली होती।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर। हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए जान लेते हैं आज के प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 9:30 पर अनुप्रसारित किया जाएगा सुर्खियों में। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 10:05 पर। फिल्मी गीतों का आनंद लिया जा सकता है संगीत प्रभा में सुबह 7:20 पर और 8:30 पर। शाम 7:21 पर किसान भाई चौपाल में सुनेंगे इस सप्ताह की कृषि सलाह। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के प्रमुख कार्यक्रम।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम इस एक

शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करते हैं।

0: चरणे अस्ति। भारतस्य सहभागिदेशस्य रूपेण सहभागित्वेन सर्वेषां दृष्टिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह बहुप्रतीक्षितायां द्वैपाक्षिकसम्मेलने दृढतया निबद्धः अस्ति, यत् अद्य शिखरसम्मेलनावधौ भविष्यति। 25,000+ फरवरी मासे वाशिंगटन डीसी इत्यत्र अंतिम वारम मेलनानंतरम उभयोः मध्ये एतत् प्रथमं मेलनं भविष्यति। अद्यतनस्य संवादस्य समये तौ बहुविध क्षेत्रेषु द्वैपाक्षिक सहयोगं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः, तथा च परस्पर हितानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु चर्चां करिष्यतः इत्यपेक्षा अस्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना सह मेलनम् अतिरिच्य अद्य प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सर्वेभ्यः लाभाय सन्तुलितं सर्वसमावेशं सुस्थिरं च आर्थिकवृद्धेः पुनरुत्थानम् इत्यस्मिन् विषये तथा कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः सुरक्षितं द्रुतप्रभावी उपयोगं सुनिश्चेतुम् इति विषये G7 इत्यस्य कार्यसत्रे अपि भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमंत्री ईयू परिषदः अध्यक्षेण एंटोनियो कोस्टा इत्यनेन सह ईयू अध्यक्षस्य आयोगस्य अध्यक्षया फॉन डेर लेयन इत्यनया सह त्रिपक्षीय सम्मेलनं करिष्यति। जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज इत्यनेन सह अपि द्वैपाक्षिकोपवेशनं भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलने नूतन सहभागित्वस्य निर्माणं तथा अंतर्राष्ट्रीय ऐक्य भावस्य पुनर्निर्माणं इत्यस्मिन् विषये सत्रम् अभिसंबोधितवान्। विदेश मंत्रालयेन सूचितं यत् सत्रावधौ प्रधानमंत्रिणा अंतर्राष्ट्रीय सहभागित्व विनिर्माणे विशेषतः वर्धमान परस्पर सम्बद्ध विश्वे विश्वासस्य महत्त्वम् अधोरेखितम्। सभायां प्रधानमन्त्रिणा अधोरेखितं यत् भारतं सर्वदा मानवतायै प्रथमं इति दृष्टिकोणम् अनुसरति। सः अग्रे अकथयत् यत् भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहभागित्वस्य दूरदृष्टिः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य कालातीतदर्शनस्य आधारेण अस्ति, विश्वमेकः परिवारः अस्ति इति। फुटबॉल क्रीडायां गतरात्रौ न्यूजर्सी क्रीडाङ्गणे प्रथमसमूहस्य आरम्भिकक्रीडायां फ्रांस देशेन सेनेगल देशं 3-1 इति अंकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान

0: के साथ बैठकें की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्धार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबाय ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi undertook extensive diplomatic outreach on the sidelines of the G summit in Avignon, France, holding bilateral meetings with leaders from Canada, United Kingdom and UAE yesterday. He also met and interacted with the leaders of several other countries on the sidelines of the G7 meeting. The Ministry of External Affairs said that during their meeting, Prime Minister Modi and his Canadian counterpart, Mark Carney, welcomed the positive momentum in India-Canada relations and reaffirmed their commitment to building a forward-looking strategic partnership. During his meeting with British Prime Minister Keir Starmer, Prime Minister Modi reviewed the progress in India-UK relations under Vision 2035. Prime Minister Modi also met UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan on the sidelines of the G7 summit. The two sides called for continued free, fair and unimpeded navigation, trade and commerce through the Strait of Hormuz. During his meeting with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, Mr. Modi emphasized that India and Japan will continue to deepen ties

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी और प्रदेश में अगले सप्ताह होगी मानसून की दस्तक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 12 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कूनो अभयारण्य जाएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 18 जून को बैतूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी और ओंकारेश्वर एवं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन व आरती में शामिल होंगी। 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भी राष्ट्रपति सहभागिता करेंगी। वे 20 जून को शाम को करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगी। इस दौरान वे 2 प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित मुख्य योग कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया, जिसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो

0: भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम अभियान शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है, इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की भी चर्चा की। वहीं फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात कर व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से भी मुलाकात की। राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में विकास और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए 24,000 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की गई है। बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए परोपकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसी संस्थाओं को अनुदान दिया जाएगा।
1: वर्तमान में कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो 20 बिस्तर से ऊपर के हैं उनमें डॉक्टरों की व स्टाफ की कमी देखी गई है। जो विशेषज्ञ डॉक्टर मिलना चाहिए वो उपलब्धता नहीं है, तो इस बार एक निर्णय लिया गया है कि 3 जिलों में रीवा, देवास और एक और जिला हो रहा है जिसमें तीनों जिले के अंदर यह 8 सामुदायिक केंद्रों को निजी तौर पर संचालन करने के लिए दिया जाएगा। यह एक नई नीति ला करके 8 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृति दी गई है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 सीजन के लिए देशभर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि अलनीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने देशभर में पराली प्रबंधन के लिए जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी।
2: सब जानते हैं कि पराली जलाने के कारण न केवल पर्यावरण बिगड़ता है बल्कि धरती माता का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। मित्र कीट मारे जाते हैं, धरती की उर्वरा शक्ति घटती है और प्रदूषण से होने वाले नुकसान से हम भलीभांति वाकिफ हैं। इस बार तय किया कि जब धान की बुआई हो उस समय ही पराली ना जले, इसकी योजना बनानी चाहिए। कई कदम हम उठाने वाले।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पूर्व मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू की जयंती पर विधानसभा में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री उज्जैन जाएंगे जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 21 जून को होने वाली नीट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसके लिए सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। कल मंत्रालय में नीट परीक्षा की तैयारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षा के आयोजन में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि न रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परीक्षा कराने में संलग्न सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह परीक्षा प्रदेश के 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न कराई जाएगी। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। 5 दिवसीय इस सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, नीतिगत निर्णयों और विकास कार्यों से संबंधित मुद्दों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। अब रुख करते हैं खेलों की खबरों का। भारत हॉकी महिला नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कल न्यूजीलैंड में हुए क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 2-1 से हरा दिया। भारत के लिए कप्तान सलीमा टेटे और लालेर रेमसियामी ने गोल दागे। जापान की ओर से एकमात्र गोल हिरामित्सु ए ने किया। भारत पूल ए में इस समय शीर्ष पर बना हुआ है जिसमें उसका अगला मुकाबला उरुग्वे से कल सुबह 4:15 बजे होगा। वहीं T20 महिला विश्व कप में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। यह मैच ब्रिटेन में लीड्स में शाम 7

बजे से होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक अब अगले सप्ताह होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इंदौर और उज्जैन सहित प्रदेश के 34 जिलों में प्री मानसून बारिश की संभावना जताई है। वहीं भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, शहडोल जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में कल मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एवं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भरता विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर नर्मदापुरम और जबलपुर जिले में आज शोभायात्रा निकाली जाएगी। आगरमालवा जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक जिले के जलाशयों में मत्स्याखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। झाबुआ कलेक्टर ने कल राणापुर में जनसुनवाई में 54 आवेदनों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए। जबलपुर नगर निगम में पदस्थ प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च वारंट प्राप्त कर उनके ठिकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नर्मदापुरम के पचमढ़ी में 26 जुलाई को 8वीं पचमढ़ी मानसून मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5, 10, 21 और 42 किलोमीटर की दौड़ होंगी। खंडवा में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय मास्टर वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुना जिले में पॉली हाउस निर्माण एवं गुलाब तथा अन्य फूलों की व्यावसायिक खेती पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम कल कलेक्ट्रेट परिसर गुना में आयोजित किया जाएगा। ग्वालियर में 2 दिवसीय वीरांगना बलिदान मेला कल शहीद ज्योति यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। मंडला और डिंडौरी में समान नागरिक संहिता की जन परामर्श की बैठक कल आयोजित की गई और शाजापुर कलेक्टर रिजु बाफना ने कल 41 प्रतिभावान बालिकाओं को 2,05,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी और प्रदेश में अगले सप्ताह होगी मानसून की दस्तक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है HD बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा आराधना फिल्म का नगमा, आवाज किशोर कुमार की है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में दो रास्ते फिल्म का ये नगमा। शब्द संयोजन किया है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 7:30 होने को हैं। आज सवेरे यह कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: प्रस्तुत कार्यक्रम आज सवेरे, तो आइए सुनते हैं आप इस कार्यक्रम को एफएम गोल्ड पर।
2: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार। आकाशवाणी गोल्ड पर एक नई सुबह का आगाज हो चुका है और हर सुबह हमारे जीवन में लेकर आती है एक नई आशा और उम्मीद की किरण। इसी उम्मीद के साथ कि आज का दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, आइए शुरुआत करते हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे की, जो रोज सुबह ताजा तरीन खबरों के साथ आपको देता है वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूँ सरफिरोजी और मेरे साथ है मेरी को होस्ट तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
1: नमस्कार सरफिरोजी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वेल नाउ यू नो दैट दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड टिल 8 एएम वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू। एवरी डे इज स्पेशल एंड टुडे इज 17th ऑफ जून, इवन मोर स्पेशल। इट्स अ वेंसडे, द मिडल ऑफ द वीक। जस्ट वांट टू विश यू अ वेरी हैप्पी वेंसडे and keep on going to the work. Do not be demotivated, just carry a great smile and your day will be amazing. So with this, let's begin with our news headlines. Prime Minister Narendra Modi has called on all the nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avignon, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade.
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत G7 शिखर सम्मेलन में सहयोगी देश के तौर पर शामिल है।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव

0: को दर्शाती हैं। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: Home Minister Amit Shah chaired a crucial meeting in New Delhi yesterday, during which consensus was reached among six states on the long-pending Kishau multi-purpose dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. In a statement, Home Ministry said that Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a Memorandum of Understanding, MOU, for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Kishau project will be placed before the Union Cabinet for the approval. The ministry said that this decision will prove to be a significant step towards a clean and pure Yamuna, as it will increase the flow of clean water in the river.
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA ने महानिदेशक अभिषेक सिंह का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है।
1: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has directed officials to ensure special arrangements for the candidates appearing in the NEET examination scheduled on 21st of June across 59 districts of the state. The Chief Minister instructed that candidates appearing for the exam should be provided a 50% concession in the fare on Uttar Pradesh State Road Transport Corporation buses on showing their admit cards. He also directed authorities to make necessary temporary accommodation arrangements for the candidates travelling to other districts for the examination and facing difficulties in finding a place to stay. And in view of the rising temperatures and ongoing heat wave conditions across Uttar Pradesh, the state government has extended the summer vacation in schools until under the control of the Basic Education Council and recognized schools till 24th of June. According to an order issued by Additional Chief Secretary, Basic Education and Secondary Education Department, Partha Sarthi Sen Sharma, the summer vacation will now be observed every year from 20th of May to 24th of June, and regular academic activities will resume from 25th of June. The decision aims to protect children from extreme heat and ensure a smooth and organized start to the new academic session.
2: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहलों का भी अनावरण करेंगे।
1: India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall today at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. Moderate to heavy rainfall is expected during the day over parts of Assam, Meghalaya, Bihar, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. According to the Met Department, a thunder squall is likely today in parts of Rajasthan. Places over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and parts of northeast India are expected to experience thunderstorms and lightning today.
2: और भारत हॉकी महिला नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कल न्यूजीलैंड में हुए क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 2-1 से हरा दिया। भारत पूल ए में इस समय शीर्ष पर है। भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से कल सुबह 4:15 बजे होगा।
1: And after hockey, let's talk about cricket. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second ODI of three-match series in Lucknow today. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. In the series opener played on 13th of June in Dharamshala, hosts India won by 7 wickets in a rain-affected match.
2: श्रोताओं अब आपको देंगे महानगरों का हाल तो कहां से शुरुआत कर रहे हैं तन्वी
1: लेट्स बिगिन विद चेन्नई Tamil Nadu state school education minister Raj Mohan said that private schools seeking no objection certificates for opening and renewal certificates for the upgradation can only apply online starting from 1st of July. He said that several private school heads have flagged excess charges collection for the renewal and NOC. The minister appealed to private schools not to charge exorbitant fees per child and called upon them to publicize their fee details. Now, what do we have from Delhi, Sir Firozi?
2: जी तन्वी, गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा. श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए. दिल्ली सरकार वस्तु और सेवा कर GST प्रशासन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 2 सप्ताह का GST डोमेन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रशिक्षण में GST नेटवर्क पर व्यवहारिक अभ्यास कराया जाएगा जिसमें रिटर्न फाइलिंग, पंजीकरण, संशोधन, निरस्तीकरण, बैंक ऑफिस संचालन, हेल्प डेस्क और शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी दी जाएगी. इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभागीय अधिकारियों के ज्ञान, कौशल और व्यवसायिक दक्षता को मजबूत करना है.
1: Now moving towards Bengaluru, Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar urged newly graduated doctors to uphold the trust people place in them and serve with dedication. Speaking at the 28th annual convocation of Rajiv Gandhi University of Health Sciences in Bengaluru yesterday, he encouraged doctors to work in rural areas where healthcare services are most needed. He said Karnataka has 72 medical colleges and produces nearly 13,940 doctors every year, making it one of the leading states in medical education. And Karnataka received the highest wind capacity pipeline award at the Global Wind Day event in Goa. The award was presented by the Union Minister Prahlad Joshi to the Managing Director of KREDL. The state currently has about 9 gigawatts of wind power projects in the pipeline.
2: और अब रुख कर रहे हैं शहरे मुंबई की ओर. भिंड मुंबई नगर निगम ने एक ही स्थान पर शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए गड्ढों की शिकायत करने वाली अपनी एप्लीकेशन को MyBMC मार्ग प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है. ये प्लेटफॉर्म गड्ढों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति और स्ट्रीट लाइटिंग सहित 114 श्रेणियों की नागरिक शिकायतों को कवर करता है. नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, उनकी तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं, शिकायतों की स्थिति का पता लगा सकते हैं और समस्याओं के समाधान होने तक अपडेट प्राप्त कर सकते हैं.
1: And about Hyderabad, the Telangana Activists Identification Committee will hold consultations with various groups from 23rd of June at the Telangana Martyrs Memorial, Amar Jyoti, to identify genuine Telangana statehood activists. Led by Chairman K. Keshav Rao, the committee will seek feedback from student leaders, artists, writers, public organizations, advocates and also doctors. Suggestions can be submitted both online through a dedicated website and offline through appointed special officers. The initiative aims to transparently recognize the individuals who actively participated in the Telangana statehood movement between 2001 and 2014. 14, regardless of political affiliation.
2: और अब बात कर लेते हैं अपने आखिरी महानगर की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने कहा कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी

0: और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। श्रोताओं, महानगरों की जानकारी के बाद अब आपको देंगे महानगरों के मौसम की जानकारी। सबसे पहले बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में आज आंधी के साथ बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान के 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान के 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
1: एंड चेन्नई इज लाइकली टू विटनेस अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म्स। द टेंपरेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन मिनिमम ऑफ 29 डिग्रीज एंड द मैक्सिमम ऑफ 39 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु इज फोरकास्ट टू एक्सपीरियंस अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद वन और टू spells of rain or even thunder showers. The minimum temperature is expected to be 21 degrees and the maximum may reach 31 degrees. Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with the possibility of thunder and even lightning activity. Temperatures are expected to range from 27 degrees to 38 degrees Celsius.
0: और श्रोताओं, अब समय है इतिहास के पन्नों में दर्ज उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। तो बहुत सारी घटनाओं का जिक्र करेंगे तन्वी, लेकिन उससे पहले एक ऐसे दिन की बात कर लेते हैं जो आज के टाइम में बहुत रिलेटेबल हो गया है। आज यानी 17 जून को हर साल विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ये दिन वैश्विक स्तर पर लोगों में मरुस्थलीकरण और सूखे जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इनसे निपटने के लिए उपायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1994 में की थी। ये दिन पहली बार मनाया गया 1995 में और तब से हर साल इसका आयोजन हो रहा है।
1: Absolutely. Today is the World Day to Combat Desertification and Drought. It is being observed globally, and today the theme of this particular day is rangelands. Recognize, respect, restore. Rangelands cover more than half of the Earth's land surface and support nearly 2 billion people by providing food, water, biodiversity and climate resilience. Despite their importance, nearly half of these ecosystems are already degraded or at risk. And if we talk about particularly India, India has taken significant steps in this direction through long-term land restoration and environmental programs. The country has committed to restoring 226 million hectares of degraded land by 2030 as part of its broader climate and land restoration goals. It has also advanced efforts under the National Action Program to combat desertification, which focuses on sustainable land management practices. Large-scale afforestation and ecosystem restoration efforts, including those under the Green India Mission, have helped improve green cover and ecological balance in several regions. And in addition, community-led watershed development and drought resilience initiatives in arid and semi-arid areas have strengthened water security and improved livelihoods. These efforts are further supported by wider climate actions promoting sustainable agriculture, soil conservation and responsible land use. And now, of course, we are talking about this particular day, 17th of June. So let's talk about those particular days in different years that made this day special. If we go back to 1673, French explorers Jacques Marquette and Louis Joliet reached the Mississippi River, becoming the first Europeans to systematically map and document its course.
0: और इस अवधि के लगभग 200 साल बाद 1885 में फ्रांस के लोगों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार में दी गई विशाल स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस के एक लंबे समुद्री सफर के बाद सुरक्षित न्यूयॉर्क हार्बर पहुंची थी।
1: In 1917, महात्मा गांधी एंड हिज वाइफ कस्तूरबा गांधी ऑफिशियली शिफ्टेड देयर रेजिडेंस टू हृदय कुंज विद इन द न्यूली एस्टैब्लिश्ड साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद।
0: और 1928

0: फ्रांस में अमेरिकी विमान चालक एमिलिया एयरहार्ट अटलांटिक महासागर को हवाई जहाज से पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी।
1: In 1944, Iceland officially dissolved its constitutional ties with the Danish monarchy and formally declared itself an independent republic.
0: आज ही के दिन 1956 में भारत की संसद द्वारा महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार देने वाला ऐतिहासिक और क्रांतिकारी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पारित किया गया था।
1: In 2008, India successfully test-fired its indigenous supersonic light combat aircraft Tejas during comprehensive structural trials in Bangalore.
0: और 2012 में भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरी बार इंडोनेशिया ओपन चैंपियन का खिताब अपने नाम कर इतिहास रचा था। और श्रोताओं, अब याद करेंगे उन महान हस्तियों को जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या इस दुनिया से विदा हुए। सबसे पहले बात कर रहे हैं गोपाल बंधु दास की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। गोपाल बंधु दास महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और पत्रकार थे, जिनका नाम उड़ीसा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। वो एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दी। उनका जन्म हुआ 9 अक्टूबर 1877 को उड़ीसा के पुरी जिले में। उत्कलमणि यानी उड़ीसा का रत्न कहे जाने वाले गोपाल बंधु ने वकालत छोड़कर समाज सेवा को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए।
1: Today is the death anniversary of Kate Smith, an American contralto. Referred to as the first lady of radio, Kate Smith became well known for her renditions of God Bless America and When the Moon Comes Over the Mountain. She began to use the descriptor, the songbird of the South, in the late 1920s while performing on the stage. And songbird of the South was used when she appeared on the NBC radio network in that year in April. And then in the summer of that year, she starred in a short feature titled Songbird of the South, in which she sang two of her superhit songs, Bless You Sister and Carolina Moon. Let's hear a song by her that she sung on the Ed Sullivan Show titled Moon River.

0: अभिनेता मोतीलाल राजवंश की आज पुण्यतिथि है। उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला नेचुरल एक्टर माना गया है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे नेवी ज्वाइन करने के लिए मुंबई आ गए। मुंबई में रहते हुए एक दिन मोतीलाल सागर स्टूडियो में शूट हो रही फिल्म की शूटिंग देखने गए। इसके निर्देशक थे केपी घोष। वे मोतीलाल के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि सीधे फिल्म का प्रस्ताव दे दिया। इस तरह महज 24 साल की उम्र में मोतीलाल ने शहर का जादू फिल्म साइन की। इसके बाद कई फिल्मों में वो नजर आए। साल 1940 में आई फिल्म अछूत में मोतीलाल ने इतना शानदार अभिनय किया कि महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल तक ने उनकी तारीफ की। मोतीलाल राजवंश, सिल्वर किंग, डॉक्टर मधुरिका, दो घड़ी की मौज, लग्न बंधन, जीवन लता, दो दीवाने, दिलावर, कोकिला, कुलवधू, जागीरदार जैसी फिल्मों में नजर आए। आइए आपको सुनाते हैं उनकी फिल्म मिस्टर संपत का ये डायलॉग।
1: इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए, चोर, बदमाश, डाकू नजर आते हैं। और मजा ये है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। बिल्कुल खराब। क्या भाव लाए थे?
2: अठन्नी के बारह।
1: अठन्नी के बारह, ये लीजिए, ना जाने क्या होने वाला है दुनिया का। आठ आने के बारह केले, लूट मची हुई है चारों तरफ, जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको।
2: अच्छा
1: जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं थर्ड क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, सैलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं।
3: एंड टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विनय आप्टे, एन इंडियन

वे उन चंद कलाकारों में से हैं जो कला को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि बदलाव का माध्यम मानती हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं सोना महापात्रा के गाए कुछ गीत।

0: श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। दीजिए इजाजत सरफिरोजी और तन्वी को। कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ वंडरफुल डे।
0: नमस्कार।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है।

0: श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति

0: चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुँच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुँच प्रदान कर रहा है।
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट यूजी पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए

0: तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोक सत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of 3-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avion, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life. Highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia, Prime Minister said, it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. The French city of Avion remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first

मीडियम वेव 254.45 मीटर यानी 1179 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है महेंद्र कपूर के स्वर में हमराज फिल्म से। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को लयबद्ध किया है रवि ने।

श्रोताओं, जिस प्रकार अच्छी मौखिक स्वच्छता दांतों की सड़न को रोकती है, उसी प्रकार नियमित रूप से किए जाने वाले सरल योगासन बढ़ती उम्र में जोड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। और यदि आपको पहले से ही जोड़ों में दर्द है, तो कुछ आसनों की मदद से आप अपने जोड़ों के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों के लिए योग एकदम सही है।

योग एक कम जोरदार व्यायाम है जिसे आपकी व्यक्तिगत जरूरतों को अनुसार ढाला जा सकता है। चाहे आप सौम्य योग अभ्यास करना चाहें या फिर ऐसा योग अभ्यास जो घुटनों पर दबाव डाले बिना अधिक जोरदार हो, योग आपकी हर स्थिति में आपके लिए उपयुक्त है। योग तो कुर्सी पर बैठकर भी किया जा सकता है। जाहिर है जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही अच्छा होगा। हमेशा अपने शरीर की सुने और किसी भी योगासन में जोर न लगाएं। स्ट्रेचिंग करते समय सांस लेते रहना भी जरूरी है। सांस लेने से आपको तनाव से बचने में मदद मिलेगी और किसी भी आसन को लंबा करने में सहायता मिलेगी, जिससे बेहतर खिंचाव संभव होगा। योग अभ्यास में महासागरीय श्वास विशेष रूप से सहायक होती है और इन आसनों का अभ्यास करते समय तनाव से बचने के लिए आप योगा ब्लॉक, कुशन, दीवार और अन्य सहायक उपकरणों का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आप घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसे गंभीर गठिया के दर्द से पीड़ित हैं, तो किसी भी प्रकार का योग अभ्यास करने से पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से अवश्य सलाह लें। अब ये सुनते हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर के युगल स्वर में गुमराह फिल्म का नगमा। शब्द संयोजन किया है साहिर लुधियानवी ने और धुन बनाई है एक बार फिर रवि ने।

आइए अब सुनते हैं येसुदास और सुलक्षणा पंडित के युगल स्वर में माया गोविंद की रचना। संगीत दिया है राजकमल ने और फिल्म है सावन को आने दो।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस

0: डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
3: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
4: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
3: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 107 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
4: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
6: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
8: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: चलिए रुक करते हैं फिल्म संगीत की ओर। आकाशवाणी रीवा और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशंस पर इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए अब सुनते हैं रजिया सुल्तान फिल्म का नगमा लता मंगेशकर के स्वर में। जानिसार अख्तर के लिखे इस गीत का संगीत दिया है खयाम ने।

अब आइए सुनते हैं चितचोर फिल्म का नगमा रविंद्र येसुदास की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

अब आइए सुनते हैं शर्मीली फिल्म का नगमा किशोर कुमार की आवाज में। नीरज के लिखे इस गीत की धुन बनाई है एसडी बर्मन ने।

अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में काला पत्थर फिल्म का ये गीत। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है।

खयाम के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा कभी कभी फिल्म का नगमा। इस गीत में लता मंगेशकर का साथ दिया है किशोर कुमार ने।

0: इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह की 9:30 होने को है। सुर्खियों में हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: राजश्री बर्वे के गाए इस भजन के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है प्रदेश की सुर्खियों में क्षेत्रीय समाचार एकांश।
2: सुर्खियों में
3: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम ऐसे विषय को शामिल करते हैं जो हफ्ते की सुर्खियों में रहता है, और इस हफ्ते की सुर्खियों का विषय है एनडीए सरकार के 12 साल।
4: किसी भी लोकतांत्रिक देश की यात्रा में 12 साल का समय एक ऐसा पड़ाव होता है जहां पीछे मुड़कर नीतियों के परिणामों को और आगे देखकर भविष्य के पदचिन्हों को साफ साफ रेखांकित किया जा सकता है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 12 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व नीतिगत बदलाव, कड़े और ऐतिहासिक फैसले, आर्थिक सुधारों की नई बयार और वैश्विक पटल पर भारत की एक नई धमक को देखा है। इस यात्रा के कई आयाम हैं और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मृगेन्द्र सिंह और सुरेश शर्मा जी। सर, आप दोनों ही अतिथियों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
5: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
6: जी बहुत धन्यवाद आपको।
4: तो आइए बिना किसी देरी के सार्थक चर्चा की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। पहला सवाल मृगेन्द्र जी आपसे है। यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो इससे आम आदमी की जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं?
5: देखिए, निश्चित रूप से अपना भारत देश बदल रहा है। अगर बात करें, आप बात कर रहे थे पिछले 12 सालों की, तो 12 सालों में देखिए बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। विशेषकर अपन बात कर रहे हैं कल यूपीआई आप देखिए गांव-गांव के पहुंच गया। विशेषकर युवाओं में इतना क्रेज, कोई भी युवा को देख लो, युवा अपने पास नगद पैसे लेके चलता ही नहीं, वो पूरा उस पर सिस्टम है। चाहे उसको रोजमर्रा की चीज़ें खरीदनी है या और कोई खरीदारी करनी, इवन आप छोटे जो हमारे छोटे छोटे सब्जी विक्रेता हैं उनके पास भी यूपीआई रहता है और वो जो लोग खरीदने जाते हैं उसी से पेमेंट करते हैं। निश्चित रूप से इससे भ्रष्टाचार में काफ़ी रोक लगी है। साथ ही लोगों को जितना पैसा होता है उतना, अगर मान लीजिए आपका 10 रुपये 12 पैसे हुए तो उतने जाएगा, नहीं आप कहाँ कोई चिल्लर ढूंढने जाएंगे करने। तो निश्चित रूप से इससे एक नई क्रांति आई है और भारत को एक नई दिशा मिली है, नई चुनौतियाँ। और आज का जो हमारा बदलता हुआ भारत है या काफ़ी बदल चुका है पिछले 12 वर्षों में, उसकी ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी और उसी का आप परिणाम देखिए कि कितना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो गया।
4: जी बिल्कुल ठीक कहा सर। दूसरा सवाल आपसे है सुरेश जी। जनधन, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की अगर बात करें तो इनके माध्यम से करोड़ों लोगों तक सरकारी मदद पहुंची है। क्या आपको लगता है कि इन योजनाओं ने विशेषकर गरीब तबके की जिंदगी सच में बेहतर की है?
6: देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने नई सरकार के रूप में कमान संभाली, नई सरकार की कमान संभाली, तब उन्होंने एक संस्मरण सुनाया था कि पहले के प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि 1 रुपया भेजता हूं तो वो 15 पैसे मिलता है। लेकिन जब जनधन खाते खोले जाने लगे तो उन सब खातों से ये उसी स्वरूप को बदलने की योजना थी, और गरीब व्यक्ति को व्यवस्था के साथ जोड़ करके और जो सुविधाएं हैं बैंकिंग प्रणाली की वो देने की एक बड़ी योजना जनधन खातों के रूप में हुई
4: जी।
6: और ये कह सकते हैं कि 55 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुले, जिसका आज हम देख रहे हैं कि किसी भी योजना का सीधा खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाना इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी प्रकार जो छोटे किसान हैं और जिन किसानों को एक बेस चाहिए, आधार चाहिए, उस आधार के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना इतनी लाभकारी हुई है कि उन्हें इमीडिएट लाभ देना होता है तो उसके माध्यम से सरकार पहले ही उसके लिए सुविधा उपलब्ध कराती है। और आयुष्मान योजना ने तो जो बीमार और गरीब, तो जो गरीब बीमारी के नाम पर अपने घर बार को बेच करके, जमीन जायदाद को बेच करके इलाज कराता था, उसको 5 लाख की सुविधा देकर

0: के ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि वो सामान्यतया लोगों के बीच में खड़े होने जैसी स्थिति में है। और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तो मुझे लगता है ये जो जमीन बेचकर इलाज कराने वाली प्रथा थी वो लगभग खत्म हो गई थी। इसी प्रकार से जैसे उज्ज्वला योजना है तो उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। और जो हम जंगल कटते हुए सूखी लकड़ी की प्रतीक्षा करते थे और लाने की व्यवस्थाओं में लगे रहते थे, उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन के माध्यम से जो लाभ मिला है उसने महिलाओं की जीवन स्तर को बदला, बीमारी से उनको मुक्ति मिली, आंखों से धुआं का जो परेशानी थी उससे मुक्ति मिली। तो मुझे ये लगता है कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से लागू की गई हैं वो न केवल जमीन पर उतर रही हैं बल्कि भारत के नागरिकों को उसका सीधा लाभ भी मिल रहा है।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अनुच्छेद 370 हटाना और 3 तलाक कानून को लाना, इन्हें देश की एकता और सामाजिक न्याय से जोड़कर देखा जाता है और देश की एकता और सामाजिक न्याय की दिशा में काफी ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। जमीन पर इनका असर आपको किस प्रकार से दिखता है?
2: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी। धारा 370 को हटाना एक इतिहास की धारा को जोड़ने वाला निर्णय साबित हुआ है, इतिहास की धारा को मोड़ने वाला निर्णय साबित हुआ है, क्योंकि ये निर्णय करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इससे जम्मू कश्मीर में खुशहाली की राह खुली है और देश की एकता व अखंडता का ताना बाना मजबूत हुआ है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति इसके तहत, आप देखिए जम्मू कश्मीर कभी आप जाते थे तो कहीं यहाँ घटनाएं हो रही, लेकिन जो आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस की नीति थी धारा 370 के बाद वो पूरी तरह से लागू हुई और आतंकवाद अब आप कहीं सुनने को नहीं मिलता।
1: जी,
2: ये जो हुआ है निश्चित रूप से ऐतिहासिक, इसीलिए देखिए आज जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाने के बाद विकास की ओर दौड़ लगा रहा है और देश की मूल धारा में जुड़ गया है। नहीं, पहले जम्मू कश्मीर को एक अलग हिस्सा माना जाता था लेकिन अब वो नहीं रहा है।
1: जी।
2: इसी तरह आप 3 तलाक की बात करें, 3 तलाक हमारी जो मुस्लिम बहनों के लिए निश्चित रूप से एक ऐसा हथियार है जो कि उनको जीने की राह सिखा रहा, नहीं तो कैसे अपनी जिंदगी बिताती थी, किस आतंक को सहती रहती थी, बोल नहीं पाती थी, बोलने की हिम्मत की तो 3 बार तलाक बोल के उनको घर से हटा दिया जाता था, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। आज ऐसी हमारी माताओं बहनों के लिए ये जो 3 तलाक है निश्चित रूप से उनकी नई राह दिखे, वो नया भारत देख रही हैं, अपने विकास की राह देख रही हैं, उनकी ज़िंदगी सुरक्षित हुई है, उनके खाने पीने की सब व्यवस्थाएं हो रही, नहीं तो कोई भी आप बताइए 3 बार तलाक बोल के उनको भगा दिया जाता घर से, उनको ये नहीं देखते थे कि उनका बच्चा है, छोटा बच्चा है या गर्भवती है या उनको कोई किसी तरह की बीमारी है, तो उनको वो कोई देखने वाला नहीं था, ऐसा लगता था जैसे अमानवीय कृत्य उनके साथ हो रहा है। लेकिन 3 तलाक ने उनको जो मानवता का मिला है, तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए बहुत धन्यवाद दे रही। आप कभी भी मुस्लिम बहनों के बीच में जाइए, वो कहती हैं 3 तलाक ने हमें नई जिंदगी दी है, कोई सोच ही नहीं सकता था कि हमें भी ऐसा भारत मिल सकता है, ऐसा देश मिल सकता है जहां हम अपना सिर उठा के जी सकें, अपने मनमर्जी से काम कर सकें और हमें क्या करना है वो भी कर सकें। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा निर्णय है हमारी मुस्लिम बहनों के लिए।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर। धारा 370 की अगर बात करें तो कश्मीर में इसके हटने के बाद से काफी कुछ बदलाव भी हमने देखे हैं। कश्मीर के युवा विशेषकर से देश की सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अपनी सहभागिता कर रहे हैं। खेलों की हम बात करें तो खेल में भी कश्मीर के कई खिलाड़ी निकल कर आए हैं। सुरेश जी, अगला सवाल आपसे है। अगर हम CAA की बात करें, पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने वाला एक मानवीय कदम बताया जाता है इस कानून को, इस कानून की भावना और उसके संदेश को आप किस प्रकार से देखते हैं?
0: देखिए, CAA कानून जो है जब 2019 में फिर से पारित किया, क्योंकि ये संविधान की भावनाओं के अनुरूप ये कानून बना था।
1: जी।
0: और जहाँ तक मुझे जानकारी है तो जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल लोग थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि जो विभाजन के रूप में पाकिस्तान और बांग्लादेश बन रहे हैं, उस समय पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के रूप में थे वो, तो उनके नागरिकों को आने वाले समय में प्रताड़ना होगी ही। उसका जो कारण है बहुत व्याख्या में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो आज हम आंकड़े देख रहे हैं कि आज़ादी के समय जो वहां के अल्पसंख्यकों के जो एक प्रतिशत था जनसंख्या का वो निरंतर घटा है, इसी से ये लगा कि वहां प्रताड़ना होगी। तो उस समय आजादी के आंदोलन में जो शामिल थे बड़े नेता, उन्होंने इस बात को कहा था कि इनके लोग जब भी भारत आएंगे तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। और अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2019 में CAA कानून लाकर जो 3 देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उनके अल्पसंख्यक जो हिंदू ईसाई और जो बौद्ध और सिख हैं मुख्य रूप से, इनको भारत की नागरिकता दिए जाने में प्राथमिकता दी

0: जाएगी, ऐसा करके ये कानून बनाया। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके उसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन असलियत जो ही उनके सामने आई तो उन्होंने अपने विरोध को वापस लिया और एक षड्यंत्र रूपी विरोध जो है सीएए का हुआ, जबकि उसका सामाजिक विरोध नहीं हुआ। और आज जब उसका क्रियान्वयन हो रहा है तो लोगों को समझ में आ रहा है। तो जो सामाजिक समरसता के लिए, और भारत एक हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र है, इसलिए इन समुदाय, इस धर्म को मानने वाले समुदायों के साथ कहीं भी प्रताड़ना होगी तो वो स्वाभाविक रूप से भारत की तरफ देखेंगे और भारत में ऐसे कानून बना करके, हालांकि इस कानून में केवल 3 देशों का उल्लेख है, लेकिन अन्य देशों के जो सनातन मानने वाले या हिंदू समाज को, धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ रास्ता खुला है। तो मुझे ये लगता है कि इस प्रकार के कानून जो हैं वो सामाजिक समरसता के लिए और अन्य राष्ट्रों में प्रताड़ित हो रहे वहाँ के अल्पसंख्यकों, आप भारत के अल्पसंख्यकों की स्थिति देखिए कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई प्रताड़ना जैसी बातें सामने नहीं आ रही। अतिरेक में जरूर कहते हुए सब हमें सुन जाएंगे, लेकिन उनको स्वतंत्रता है और उन्हें सारे मौलिक अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नहीं है। हमारे देश में सब प्रकार के मानवाधिकार उपयोग करने के लिए अल्पसंख्यकों को छूट है, तो इसलिए इस सीएए का बहुत महत्व था। और मोदी सरकार ने जो, जिसको कह सकते हैं ना कि अप्रत्याशित निर्णय लिए हैं, जैसे अभी हम 370 की बात कर रहे थे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के मैनिफेस्टो में पहले दिन से था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो कश्मीर में जाकर के निरुद्ध किए गए थे और वहीं जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये वो नियम है, वो कानून है, 3 तलाक जैसे कह सकते हैं, सीएए कह सकते हैं, 370 का हटाना कह सकते हैं, 35A का। तो ये एक ऐतिहासिक और बोल्ड निर्णय है, सरकार का इकबाल है, इसलिए ऐसा करने पर सरकार जो है शक्तिशाली दिखती है। और निश्चित रूप से भारत एक शक्तिशाली सरकार का नेतृत्व करते हुए मोदी जी हैं और उसका वैश्विक धमक भी उसी प्रकार से दिखाई दे रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सीएए सामाजिक सुधारों के लिए किए जाने वाले अन्य प्रयासों के साथ एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर, सामाजिक सुधारों के तहत किए जाने वाले प्रयासों के साथ साथ केंद्र सरकार ने बीते कुछ दिनों में आर्थिक समृद्धि की तरफ भी कदम बढ़ाए हैं। विशेषकर देश की करोड़ों महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, उनको भी आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया है। स्वसहायता समूहों के जरिए महिलाएं अब न सिर्फ कमा रही हैं बल्कि उद्यमी भी बन रही हैं। लखपति दीदी योजना इसमें एक मील का पत्थर साबित हुई है। मृगेन जी, आपसे सवाल है कि इसको किस प्रकार से आप देखते हैं?
2: देखिए, लखपति दीदी योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसे 15 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था
1: जी।
2: इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिला सदस्यों को अस्थायी रूप से 1,00,000 रुपए या उससे अधिक की वार्षिक घरेलू आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि हमारी बहनें पढ़ लिख के अगर घर में हैं, कहीं जा नहीं सकती, स्व सहायता समूह के माध्यम से अपना जीवन यापन की व्यवस्था कर सकें, परिवार की स्थिति कैसे बेहतर बना सकें और अपने लिए कैसे रोजगार कर सकें, इसके लिए योजना बनाई गई थी। इस पे सरकार लोन भी देती है, 1,00,000 रुपए तक का लोन देती है और उसमें बहुत सारी छूट भी हैं और ये समूह बनाकर महिलाओं को दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है, जो भी महिलाएं चाहें तो इसमें अपना लाभ ले सकती हैं इस योजना के समूह बना के। और इस योजना से महिलाओं के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हो रहा है। आप अगर गांव तरफ कहीं चले जाइए, कभी होता नहीं था गांव में ऐसा कि महिलाएं, आप देखिए घर में बैठी हैं, कोई काम नहीं है, आप देखिए किसी भी गांव में आप चले जाइए, महिलाएं कुछ न कुछ आपको काम करती हुई दिख जाएंगी, वो कभी बैठी नहीं रहेंगे, तो इससे उनको कमाई भी हो रही है। आप सोच सकते हैं कि SSG से जुड़ी महिलाएं हर महीने 10 से लेकर 20,000 रुपये महीने तक कमा रही, इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही, अपना परिवार को अच्छी तरह चला रही, बच्चे बच्चियों को पढ़ा रही। निश्चित रूप से यह योजना हमारी बहनों के लिए मील का पत्थर है।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा सर, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम किया है लखपति दीदी योजना ने। वन संपदा और पर्यावरण को लेकर भी काफी कुछ काम किया है केंद्र सरकार ने बीते 12 वर्षों में। प्रोजेक्ट चीता की अगर हम बात करें तो दशकों बाद भारत की धरती पर चीते वापस लाए गए। सुरेश जी, आपसे सवाल है कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश को चुना गया है, इस परियोजना की सफलता और भारत के वन्यजीव संरक्षण के भविष्य को किस प्रकार से देखते हैं?
0: देखिए, वन्य जीवों को लेकर प्राय ये बात उठती रही है कि भारत में इनके विकास के प्रति कोई लंबी योजना नहीं है और दूरदृष्टि से काम नहीं किया जा रहा है। तो आप इसके बारे में जब हम सोचते हैं और आज के संदर्भ में देखते हैं तो न केवल प्राइवेट सेक्टर इसको अपने साथ जोड़ करके और कार्य कर रहा है, अभी तो सरकार भी अपनी तरफ से ये कर रही है।

0: हमारे लिए अच्छी बात यह है कि जिस मध्य प्रदेश में आज हम बोल रहे हैं उसी मध्य प्रदेश के कोनों को इस चीता प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने चुना। और जिस तरह से हमने देखा कि जो प्रजनन है वो प्रजनन ये बताता है कि यहाँ चीता अनुकूलता का वातावरण है, और पर्यावरण की दृष्टि से तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि पर्यावरणीय संतुलन बनाने के लिए इस प्रकार के प्रोजेक्ट की बहुत महती आवश्यकता थी। पिछले दिनों जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो जंगली भैंसे और इस टाइप की जो और जीव जंतु या पशु पक्षी ये जो लाकर के छोड़े गए हैं, इनसे भी हमारे पर्यावरणीय संतुलन बनेगा। साथ में जो पर्यावरण की दृष्टि से यदि हम कहें तो जो हाइड्रोजन मिशन बनाए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पर काम किया जा रहा है, या सोलर रूफ टॉप जो मामला है जिसके तहत पीएम सूर्य गृह योजना जो है, घर योजना है, उसके अंतर्गत सरकार की तरफ से उसको प्रोत्साहित करने के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जा रही है। तो पर्यावरण की दृष्टि से किस प्रकार और बेहतर हम पर्यावरण को बना सकते हैं, क्योंकि जब आज हम देख रहे हैं तो जो ये भीषण गर्मी है ये पर्यावरण असंतुलन के कारण सबसे ज़्यादा है, और वृक्षों का कम हो जाना, मध्य प्रदेश ऐसा है जहाँ घने जंगलों की स्थिति है, तो उसके बावजूद भी चूंकि गर्मी है तो ये समझने की चीज़ है कि जिस तरीके से अब चीता प्रोजेक्ट आया है या अन्य पशु और पक्षियों को जंगल में छोड़ने के लिए, फिर उनके लिए पानी की व्यवस्था होगी, वृक्षों को नमी मिलती रहे, इसके लिए जो व्यवस्थाएं होंगी, तो ये पर्यावरणीय संतुलन के लिए आने वाले समय के लिए एक लंबा प्रोजेक्ट है और लंबा इसका वो रहेगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार यदि किसी एक विषय को चुनते हैं तब भी, और यदि समग्र विषयों को देखते हैं तब भी, सभी क्षेत्रों में काम करती हुई दिखाई देती है। और ये एक ऐसा चीता प्रोजेक्ट जिसका आपने उल्लेख किया, ये ऐसा विषय है जिस विषय पर सरकार व्यक्तिगत रूप से क्या सोचेगी, लेकिन इसके बावजूद भी सोचा गया। इसका अभिप्राय ये है कि समग्र दृष्टिकोण से कैसे भारत के अंदर विकास हो सके, जिसे समग्र विकास कहा जा सकता है, वो सारी चीजें इस समय दिखाई दे रही हैं।
1: जी सर, बिल्कुल ठीक कहा। और उसी समग्र दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से समृद्धि की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। वैश्विक छवि की अगर हम बात करते हैं तो पूरे देश की जो वैश्विक छवि बनी है पिछले 12 वर्षों में, वो एक अलग ही रूप में दिखाई पड़ती है। मृगेन जी, आपसे सवाल है, G20 जैसे सफल आयोजन को हमने किया, G20 की सफल अध्यक्षता, वैक्सीन डिप्लोमेसी और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों से दुनिया में भारत की साख काफी बढ़ी है, तो क्या भारत सच में एक निर्णायक वैश्विक शक्ति बन चुका है?
2: देखिए, अब ये कहने की बात नहीं कि भारत निर्णायक विश्व शक्ति बन चुका है, वो अब पूरी दुनिया मान चुकी है। अगर ये कहें कि पूरी दुनिया ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोहा मान लिया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उसके पीछे कारण, जो अब G20 की बात करें तो G20 में जो हुआ वो सबके सामने, इसके पहले कौन उसका नेतृत्व करता था, कौन सामने आते थे, कौन लोग होते थे, लेकिन भारत ने बताया कि नहीं है, और वो प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि विश्व का कोई भी देश हमें आंख नहीं दिखा सकता, हम जो चाहेंगे अपनी मर्जी से करेंगे और हम जो चाहते हैं वही होगा। अगर कोई चाहे कि हमें झुका लेगा या वो अपनी मर्जी मनवा लेगा, चाहे किसी भी G20 या किसी भी सम्मेलन में, वह अब संभव नहीं है, या उनने साफ साफ संकेत दे दिया। दूसरा, बात कर रहे हैं वैक्सीन की बात हो रही, अब कोरोना की वैक्सीन, सोचिए कि भारत ने कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों की जान बचाई। बताओ, जो वैक्सीन एक समय होता था बनाने के लिए वर्षों लग जाते थे, फैक्ट्री लग रही, ये हो रही, अनुमति रही, लेकिन बताइए 30 से 60 दिन के अंदर सब कुछ तैयार हो गया। 6 महीने के अंदर ये स्थिति हो गई कि भारत विदेशों को वैक्सीन देने लगा था, जो वैक्सीन बाहर से आती थी वो सब इंडिया से जाने लगी। अब मैं कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इसके लिए बहुत सारी देशों को, गरीब देश से जहां फैला हुआ था उन्हें मुफ्त में दिया, उन्हें एक पैसा नहीं लिया। इससे जो भारत की एक अलग छाप बनी है, निश्चित रूप से इस छाप के कारण हमारे भारत को एक डिप्लोमेसी की बात हुई है कि भारत जो कहता है करता है। अब मदद के लिए भारत कभी किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन अगर किसी ने आंख दिखाई तो उसे छोड़ता भी नहीं। इसीलिए आप बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर जो कुछ हुआ सबको मालूम है। ये बताइए, हमारी बहनों ने पाकिस्तान के जो बड़े विमान थे, बड़े बड़े वो थे, उनके जितने भी आतंकी अड्डे थे सबको समाप्त कर दिया, और देखिए कितना सटीक निशाना था कि एक भी आदमी की मौत नहीं हुई, केवल वो आतंकी अड्डे समाप्त हुए। अब सोचिए कि पाकिस्तान से हमारी बहनें लोहा ले सकती है, तो सोचिए वह भारत की आज हम कल्पना जिसने कहीं की थी, आज वो भारत हमारे सामने।
1: आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन

0: इंडिया के तहत देश में नए उद्योग और निवेश आए हैं, रोजगार और विनिर्माण के मामले में जमीनी स्तर पर किस प्रकार का सकारात्मक बदलाव नजर आता है, सुरेश जी आपसे जानना चाहेंगे।
1: देखिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी का जो गुजरात में विजन शुरू हुआ था और उन्होंने जिस तरह से गुजरात में उद्योग आमंत्रित करने के लिए योजना परियोजनाओं पर काम किया था, उसका जो है राष्ट्रीय विस्तार हुआ उन सारी योजनाओं का। और ये कहा जा सकता है कि मेक इन इंडिया के माध्यम से हमने आयात के स्थान पर अपने ही देश में निर्माण करते हुए और खरीदने की व्यवस्थाएं की, और उसका सीधा असर ये पड़ा कि जो टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं हुआ करती थी, उस टेक्नोलॉजी का भारत में प्रवेश हुआ जी। और एक ये बहुत सटीक तरीका, मैं एक आयोजन में गया था तो मुझे वहाँ ये बताया गया कि भारत में रोजगार की तरफ युवकों को भेजने का आशय ये था कि यदि उन्हें औद्योगिक परिवेश में भेजा जाएगा तो टेक्नोलॉजी इतनी कहाँ से लाई जाएगी जी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सरकार संभाली तो उन्होंने स्पष्ट रूप से हमारे वैज्ञानिकों को निर्देश दिया था कि जिस टेक्नोलॉजी से हमारा औद्योगिक परिवेश बढ़ सकता है उस टेक्नोलॉजी को आप तेजी से विकसित करिए। और आज मुझे कहने में संकोच नहीं है, और मैं इसलिए भी ये बात कहने का अधिकारी हूं कि आरआर कैट इंदौर के अंदर जब मैं एक कार्यक्रम में शामिल हुआ तो उसमें जो परमाणु ऊर्जा विभाग का है केंद्र सरकार का, उसमें जब मैं शामिल हुआ तो मुझे ये जानकारी देख करके बड़ा हर्ष हुआ कि हमारे यहाँ न केवल उत्पादों को, न केवल प्रोडक्ट को अन्य क्षेत्रों में भेजने को लेकर के, या हमारे यहाँ जिस तरीके से टेक्नोलॉजी से फास्ट उत्पादन किया जा सकता हो, आप देखिए आत्मनिर्भरता की स्थिति आज हम यहाँ तक हैं कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं तो हमारे हथियारों से हम ऑपरेशन सिंदूर की विजय प्राप्त करते हैं। और आज भारत ऐसा देश हो गया है जो हथियार विदेशों को निर्यात कर रहा है
0: जी।
1: इसका सीधे अभिप्राय यह है कि जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भारत की सरकार ने लागू किया था उसकी सफलता है ये, और हमारे उद्योगों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से लबरेज बना करके उनके माध्यम से जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों के कारण आज हम ये कह सकते हैं कि भारत न केवल निर्माण के क्षेत्र में, न केवल निर्यात के क्षेत्र में, न केवल कृषि के की आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, न केवल अन्य प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा। और इस आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा असर जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जिसकी वैश्विक शक्ति दिखाई दे रही है, उसमें परिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है।
0: बिल्कुल ठीक कहा सर, कहीं ना कहीं अब हम वैश्विक आर्थिक शक्ति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और अगला सवाल भी मेरा आर्थिक सुधारों की तरफ से ही है। मृगेन जी आपसे है, नोटबंदी और जीएसटी के तहत जो सुधार किए गए और नोटबंदी शुरुआती दौर में लागू की गई, आर्थिक सुधार की दिशा में बड़े कदम माना जाता है इन्हें। एक पत्रकार के नजरिए से देखें तो 12 साल बाद इन फैसलों ने अर्थव्यवस्था को कितना पारदर्शी और मजबूत बनाया है।
2: 8 नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी और 9 नवंबर 2016 से लागू, मतलब 8 नवंबर को उन्होंने घोषणा की, 9 नवंबर से लागू, उसमें थे 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। इससे जो काला धन था
0: जी
2: वो देश में समाप्त हो गया था, क्योंकि आप देखते बड़े बड़े लोग होते थे जो नंबर दो के काम करने वाले, पता चला कि उनके घर में 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ हैं रखे, किसी के गद्दे के नीचे हैं, किसी की तकिया के नीचे पड़े हुए हैं, बहुत लोग अपने बड़े बड़े घर में ड्रम में नोट भरे रहते थे, वो पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। और उससे भ्रष्टाचार पर एक बहुत बड़ा अंकुश लगा था, चीज और भी हुआ था, महंगाई, विशेषकर जो नंबर दो के पैसे लोग लगाते थे जमीन वगैरह के लिए, उससे महंगाई भी काफी कम हुई थी, जमीनों के रेट काफी गिरे थे। उसके बाद से जो एक भ्रष्टाचार के लगाम के साथ ही जो पैसों का ये था कि नकदीकरण वो बहुत कम हुआ है, और धीरे धीरे जो आप पहले ही बात कर चुके डिजिटलाइजेशन जो हुआ उसके बहुत ज्यादा उसमें फायदा हुआ है। और देखिए उसके बाद जो आर्थिक सुधार जीएसटी निश्चित रूप से देश के लिए एक बड़ा कदम था। शुरू में लगा कि इससे आय कम हो जाएगी, कई राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया, विशेषकर जो कांग्रेस शासित या भाजपा के अलावा एनडीए से अलग दल थे, सबने विरोध किया, लेकिन अंत में जब उसके फायदा देखा लोगों ने, उसको माना, और उससे जो जीएसटी से ऑनलाइन जो टैक्स भरना शुरू हुआ उससे बढ़ा भी जो टैक्स बढ़ा, चोरी कम हुई, और साथ ही जब चोरी कम होगी देश के पास टैक्स ज़्यादा आएगा तो आखिर टैक्स कहाँ जाएगा, जनता की लिए जाएगा, विकास कामों के लिए होगा, चाहे स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, हमारी

0: और जो आप करें अधोसंरचना अच्छा होगा, परिवहन सेवाएं सुविधाएं, ये सब इसी के लिए। तो जीएसटी ने एक बड़ा ऐसी चीज किया जिससे अच्छा, दूसरा इससे फायदा ये है आप कोई भी चीज कहीं भी खरीद सकते हो। अभी तक ये था कि पता चला हर सरकार अपने कहीं 5% टैक्स, कहीं 7%, कहीं 15%, जिससे टैक्स एक जो बात कर रही एक देश एक टैक्स
1: जी
0: का, उससे काफी फायदा हुआ है। और पूरे देश में आप कहीं भी बैठे कोई भी सामान खरीद से सब आपको एक रेट पर मिलेगा। ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है देश के लिए और इससे आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है। कोई भी आदमी आज ये नहीं कह सकता कि मुझे 2 जून की रोटी नहीं मिली है, और ये सब आर्थिक सुधारों के कारण ही संभव हुआ है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर। और देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की अभी बात हुई, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी ही हो रही है पिछले कुछ वर्षों से, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कई सारे विदेश दूसरे देशों के लोग, जो पड़ोसी देश हैं, वहां के लोग भी हमारे देश में इलाज कराने आ रहे हैं। एक सस्ता और बहुत ही सुलभ इलाज यहाँ पर मिलता है। सुरेश जी, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से तीसरे स्थान की तरफ बढ़ रहा है। इस आर्थिक यात्रा को आप किस प्रकार से देखते हैं?
2: मुझे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक जो मेरे साथ साक्षात्कार में कहा गया शब्द याद आता है। मैंने उनसे पूछा था कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था को और सशक्त करने के लिए आपके पास कोई प्रोग्राम है, जब आप संसार के सबसे माने हुए अर्थशास्त्रियों में से एक हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, भारत की जो पॉलिटिकल स्थिति है वो ये है कि यहाँ कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो विरोध ज्यादा होता है, समर्थन कम होता है। भारत की अर्थव्यवस्था तभी सुधर सकती है जब कोई ऐसा राजनेता आएगा जिसे वोटों की चिंता की बजाय देश की चिंता होगी। और मुझे ये गुण नरेंद्र मोदी जी में दिखाई दिए, जिन्होंने वोट पॉलिटिक्स की बजाय भारत की पॉलिटिक्स पर विशेष ध्यान दिया और आर्थिक सुधारों के साथ और जो थोड़ा महंगाई का जोखिम उठाते हुए भी जिन्होंने अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें नंबर पर लाने जैसी ताकत दिखाई। और आप ये देखिए कि थोड़ी सी जब महंगाई होती है तो हमारे टैक्सेशन के माध्यम से सरकारों के पास पैसे की आमदनी बढ़ती है
1: जी।
2: आप अन्य व्यवस्थाओं को देख लीजिए, रेलवे स्टेशन को देख लीजिए, एयर व्यवस्थाओं को देख लीजिए, वाल्वो बसों को देख लीजिए, ये परिवहन की दृष्टि से। और फिर आप जो है जो ये आजकल एक्सप्रेस वे बने हैं, इनके माध्यम से जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो। फिर आप हमारे जो उत्पादन है, उन उत्पादन के आड़ में हमारा निर्यात जो है वो बढ़ रहा है, आयात कम हो रहा है, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने में एक बड़ा सहयोग दिया है। तो आज हम ये जो देख रहे हैं, फिर आप ये देखिए कि जहां हमारे लिए नुकसान हो सकता है, जिसको आर्थिक बोझ कह सकते हैं, उन बोझ को हमने टाला है। और गरीबी की रेखा के साथ जो संतुलन है, आपकी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है लेकिन गरीबी की रेखा के का प्रतिशत आपके 5वीं अर्थव्यवस्था से मेल नहीं खाता, इसलिए 80 लाख लोगों को लगातार 5 साल तक निशुल्क अनाज दे करके आने वाले समय में ये 80 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आमदनी और मुफ्त अन्न का जो सांख्यिकी समीकरण है वो आपको इनको गरीबी की रेखा से बाहर कर देगा। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में भारत का गरीबी रेखा का संतुलन और अर्थव्यवस्था के ग्रोथ का संतुलन बराबर होगा। फिर आप ये देखिए कि जिस क्षेत्र में जिस वस्तु का उत्पादन हो करके, आप ये हर एक जिले में एक प्रोडक्ट, लोकल फॉर वोकल, मुझे ये लगता है कि एक बड़े समग्र सोच के साथ, और इतनी समग्र सोच जिसका ये कह सकते हैं कि बाद में यदि प्रतिफल आ रहा है तो विजन 2047 2047 जो विजन आया है वो इसी अर्थव्यवस्था के संतुलन वाले मामले के कारण आया है। क्योंकि जब हम 12 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में बूम देख सकते हैं, किसी भी परेशानी को झेलने की ताकत देख सकते हैं, जब टैरिफ का वार आया भारत नहीं ला, जब आपने हमारे सामने पेट्रोल का संकट आया तब हमारे सामने ये सारी चीजें आई, तो आप देख लीजिए कि भारत न केवल वैश्विक शक्तियों से लड़ने की स्थिति में है अपितु उनका सामना करके आगे निकलने की स्थिति में है। तो मुझे ये लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक संसार की ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में है। जीडीपी को देखिए आप, बराबर आपको संकेत देता होगा, जहां दूसरे देशों की जीडीपी में गिरावट और हलचल दिखाई दे रही है, भारत उसमें स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये जो पेट्रोलियम मामलों में थोड़ा बहुत जो दिक्कत आ रही है आपूर्ति की, जिसके कारण मूल्य परिवर्तन दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में शीघ्रता से मुझे लगता है हमारी अर्थव्यवस्था इसको सामान्य रूप से आगे गति दे देगी।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। आपने विकसित भारत 2047 की बात की, अगले 10 वर्षों में हम अपने उस लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे और विकसित भारत

0: 2047 का स्वप्न साकार करेंगे। एक बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद मृगेन जी और सुरेश जी, आपने बेहद संतुलित, बेबाक और बारीक विश्लेषण से हमारे श्रोताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार के कार्यकाल की पिछले 12 वर्षों की यात्रा के हर पहलू को समझने में मदद की। निश्चित ही श्रोताओं को इससे काफी मदद मिलेगी। आज के इस विशेष संवाद में बस इतना ही। देश और समाज से जुड़े ऐसे ही गंभीर मुद्दों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: शुभम, अभी आप सुन रहे थे प्रदेश की सुर्खियों में क्षेत्रीय समाचार एकांश। ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख है विनोद आर्य का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार के।
0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख विनोद आर्य का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सागर जिले में गर्मी के मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है। इधर जिला प्रशासन और नगर निगम ने बारिश से पहले एहतियात के तौर पर कई आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिए हैं, ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिले के केसली से लाडली बहना की राशि अंतरित की। इस अवसर पर उन्होंने देवरी क्षेत्र के लिए कई विकास कार्यों की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री ने 190 करोड़ रुपए की लागत के 53 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। डॉ. यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड की धरती ने अपने अंदर गौरवशाली अतीत को संजोकर रखा है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति की सहभागिता और नेतृत्व के माध्यम से आज मध्य प्रदेश विकास पथ पर आगे बढ़ता हुआ भारत को विकसित भारत बनाने में अपना सहयोग दे रहा है। वर्ष 2026 को प्रदेश सरकार कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। कृषक कल्याण वर्ष में सरकार किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था कर रही है। सिंचाई के मामले में मध्य प्रदेश में 44 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचित रकबा पहुंच गया है और सरकार का लक्ष्य इसे 100 लाख हेक्टेयर करने का है। वहीं दुग्ध उत्पादन एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज जरूरतमंदों को आवास, स्वास्थ्य सहित समस्त सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। कार्यक्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और दमोह सांसद राहुल सिंह तथा स्थानीय विधायक ब्रज बिहारी पटेलिया ने भी अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर कई जन सरोकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें वृक्षारोपण, योग दिवस की तैयारियां और जन कल्याण शिविरों का आयोजन शामिल है। इनमें प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों की भागीदारी हो रही है। सागर जिले में 12 जून से 18 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने सागर संभाग के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की विभागीय समीक्षा बैठक जिला सहकारी बैंक के सभागार में बीते दिनों आयोजित की। बैठक में उन्होंने प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में सदस्यता वृद्धि अभियान तथा खरीफ के लिए किसानों को ऋण वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री यादव ने कहा किसानों को कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र की योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश्य से अपेक्स बैंक के द्वारा 14 अप्रैल से 30 जून तक 10 लाख किसानों को सहकारिता से जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों से 500 रुपए अंश पूंजी तथा 100 रुपए सदस्यता शुल्क प्राप्त कर उन्हें सहकारी संस्थाओं का सदस्य बनाया जाए, जिससे वे 0% ब्याज सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने समिति प्रबंधकों को सदस्यता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने तथा जिला बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इसकी सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर बीते दिनों कलेक्टर प्रतिभा पाल ने समीक्षा बैठक की। कलेक्टर ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने और परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। नीट परीक्षा के सिटी कोऑर्डिनेटर मनीष गुप्ता ने बताया कि सागर शहर में कुल 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें सभी तरह के सुरक्षा इंतजामों और मापदंडों के साथ परीक्षा संपन्न करवाई जाएगी। पुलिस प्रशिक्षण शाला मकरोनिया सागर में संचालित 15वें नव आरक्षक बुनियादी सत्र 2025-26 का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रशिक्षणार्थियों का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस दीक्षांत समारोह में नर्मदापुरम जोन के पुलिस महानिरीक्षक मिथिलेश शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में 302 प्रशिक्षणार्थियों की परेड संपन्न हुई। सागर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन।

0: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। आज बुधवार का दिन है, अपने निश्चित और निर्धारित समय पर हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं भोपाल के सुविख्यात डायबिटीज थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावार जी। सर नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर। बहुत सारे छोटे छोटे छोटे सवाल हैं और यूं कह सकते हैं कि लोगों की जिज्ञासाएं हैं, तो मैं वही कुछ सवाल आपसे आज पूछना चाहता हूं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि डायबिटीज ज्यादा खतरनाक है या डायबिटीज के कारण होने वाला हार्ट अटैक।
1: बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। मैं हमेशा कहता हूं कि मधुमेह को आप अवसर माने अवसाद ना माने। तो मधुमेह, अगर आप मधुमेह को स्वीकार करते हैं, डॉक्टर की सलाह में रहते हैं, नियमित संयमित भोजन, नियमित व्यायाम, 6-8 घंटे की नींद, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, टेंशन तनाव कम करते हैं, तो आपको हृदय रोग होने की संभावना कम हो जाती है। तो मधुमेह कहीं ना कहीं आपको हृदय रोग से बचा रहा है, अगर उसको सही दिशा में आप लेते हो। विपरीत दिशा में अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे लोगों को मधुमेह के साथ साथ हृदय रोग की गति बढ़ जाती है। हृदय रोग होता है तो छाती का दर्द महसूस नहीं होता, और कई बार हम जब इन मरीजों की एंजियोग्राफी करते हैं तो प्लास्टिक करने लायक आर्टरी या वेसल बचते ही नहीं, हर जगह छितरा छितरा रुकावट रहता है। तब डॉक्टर बोल देता है भाई बाईपास करवाओ। तो ये परिस्थिति केवल यहाँ नहीं होती, ये पैरों में भी होती है, दिमाग की नसों में भी होती है, गुर्दे की नसों में भी होती है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये जो परिणति है, जो लापरवाही के कारण है, ये ज्यादा खतरनाक है।
0: सर ये वाकई जो साइलेंट अटैक होता है वो डायबिटिक व्यक्ति को ज्यादा होता है, क्या यही कारण है?
1: देखिए हाँ, क्योंकि आपके शरीर में अगर छाती में दर्द हो रहा है तो कम से कम आप डॉक्टर के पास तुरंत जाओगे, चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग करोगे, उनसे मदद लोगे। पर अगर डिसऑटोनोमिया, उन्हें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जो कि डायबिटीज में होता है, तो आपको ये लक्षण पता ही नहीं चलेंगे। अगर ये लक्षण पता नहीं चले तो आप इलाज कैसे करवाओगे?
0: सर यहाँ एक सवाल और सबके मन में आता होगा कि अगर हम डायबिटिक हो गए हैं तो निश्चित ही क्या हम हार्ट पेशेंट होंगे या हमारा ब्लड प्रेशर असंतुलित रहेगा?
1: ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा ना, आप कैसे देखते हैं, फिर से बात वही आती है, आप अवसर की तरह देखते हैं कि अवसाद की तरह देखते हैं। तो अगर आप रन रेट से गेम खेलते हैं, खाली पेट 100 के करीब रखते हैं, भरे पेट 180 के अंदर रखते हैं, 3 महीने का एवरेज 7% के आसपास रखते हैं, तो जीत तो निश्चित है, चिर यौवन और चिरायु जीवन भी मिलेगा आपको। पर अगर आप लापरवाह हैं, परेशान होते हैं, हर रिश्तेदार से कहते हैं अरे मुझे तो डायबिटीज है, कोई ना कोई आपको टोकता रहता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी नेतृत्व क्षमता ही, जीवन के नेतृत्व की क्षमता कम हो जाती है। तो उद्देश्यहीन जीवन में तो असफलताएं ही आएंगी, तो फिर हृदय रोग भी आएगा, लकवा भी आएगा, किडनी रोग भी आएगा, ऐसा मेरा सोचना है।
0: सर किसी व्यक्ति को हार्ट की परेशानी हो चुकी है, उसने जैसा कि बाईपास की है या ओपन हार्ट हुआ है, अब डायबिटिक तो है व्यक्ति, उसे फिर जीवन कैसा जीना चाहिए?
1: देखिए, आपको हृदय रोग हो गया है तो भी इसका ये मतलब थोड़ा है कि आपको छाती पे हाथ रख के बैठना है। आप एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करवाते हैं, आपके लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन अच्छे हैं, तो आप जिस आदमी की एंजियोग्राफी नहीं हुई है उससे तो ज्यादा सुरक्षित हो गए। आपको मालूम है कि आपकी धमनियों में रुकावट नहीं है, जैसे हमने आपने नहीं करवाई अपनी एंजियोग्राफी, हमें नहीं मालूम अभी वर्तमान स्थिति क्या है।
0: बिल्कुल सच है।
1: तो फिर वो दृष्टिकोण का अंतर वहां भी आ जाता है। बाईपास सर्जरी कराइए, हार्ट फंक्शन अच्छे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन अच्छे हैं, हार्ट फेलियर नहीं है, तो मुस्तैदी से जीना चाहिए। मेरे घर के आसपास मेरे रिश्तेदारों में भी ऐसे लोग हैं जो आज मुस्तैदी से फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं।
0: वाकई मित्रों, ये एक ऐसी समस्या है जो हम सबसे जुड़ी हुई है, क्योंकि आज डायबिटीज दिन ब दिन हमारे घर में चुपके से आ रही है और हमें नुकसान पहुंचा रही है। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो अपना इलाज और अपनी समय समय पर जो नियमित जांच है वह जरूर करवाते रहिए। अभी हम बात कर रहे थे भोपाल के सुविख्यात डायबिटीज थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावार जी से। आप अपने विचार अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 8878112343। नंबर

एक बार फिर सुन लीजिए 8887811 2343। अब मिलते हैं अगले बुधवार, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मनोज सक्सेना का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ मन। हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10:10 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। शुरुआत करते हैं अनूप जलोटा के गाए इस भजन के साथ।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के,

आकाशवाणी रीवा और न्यूज़ॉन एआईआर एप्लीकेशंस पर इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए अब पेश है रामशंकर का गाया ये नगमा।

0: चितो
1: इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजने को है हमारा अगला कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने।
2: जन्म जन्म के साथी हैं हम, रूठेंगे तो मिल लेंगे, यह कहकर आवारा बादल धरती को बहलाता है। बेमौसम का ये सावन भी कितना भोला भाला है, फेंक कर सागर में कंकड़ अब खुद ही शोर मचाता है। श्रोताओं नमस्ते, मैं हूं नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूं आज का फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने। हमारे इस कार्यक्रम में डायल करना होता है फोन नंबर 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे पहले श्रोता के साथ।
3: नमस्ते नमस्ते मैम, मैं रानी दलिये छतरपुर से रशीद अहमद खान बात कर रहा हूँ सर।
2: जी जी, कैसे हैं?
3: एकदम सही मैम, सब आप लोगों का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, एकदम सही। आप लोग कैसे हैं? पूरी टीम आकाशवाणी भोपाल की सब अच्छी
2: जी
3: है?
2: हम सभी बहुत अच्छे हैं और जो गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है उससे बहुत खुश हैं। और
3: जी बिल्कुल
2: हाँ, तो ऐसे सुहाने मौसम में अहमद खान साहब आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
3: गीत तो बहुत सारे हैं, एक गीत चॉइस करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन एक थोड़ा सा अलग तरह का गीत है, वो गाना सुनना चाहते हो मैं। नई उम्र की नई फसल फिल्म का नाम है।
2: जी जी जी, नई उम्र की नई फसल का कौन सा गीत?
3: स्वप्न झरे फूल से, नींद चुभे सूल से।
2: जी जी जी जी,
3: लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे।
2: जी, नीरज जी का लिखा हुआ ये बहुत ही शानदार गीत है।
3: अच्छा गीत है, इसके मतलब इबारत इसकी बहुत अच्छी, शब्दों का जो विन्यास है
2: जी जी जी
3: बहुत शानदार है इसका, मतलब इतनी अच्छी है नीरज साहब ने लिखा है, बहुत अच्छा गीत है।
2: जी जी जी, उनकी कालजयी रचनाओं में से एक है ये।
3: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।

0: हेलो, कौन बोल रहे हैं आप?
1: परम माधुरी दीदी, इशारा सा प्रेम, प्यार से नमस्कार।
0: जी
1: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आधुनिक दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी नमस्कार, कैसे हैं शारदा जी?
1: दीदी मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, आपका आशीर्वाद, बांके बिहारी कृपा से घर परिवार में सब लोग आनंद मंगल से रहते हुए
0: जी
1: आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो मथुरा तो है, तो वहाँ का तो सुरीला सा मौसम होता है, वहाँ का वातावरण ही बहुत अच्छा है।
1: जी इस वक्त दीदी मंद मंद हवाएं चल रही हैं और खिली खिली धूप है और तापमान भी गिरकर लगभग 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है और
0: हाँ,
1: रात में यही तापमान 30 के आसपास बनता है।
0: मौसम जो है वो कुछ खुशनुमा हो चुका है।
1: संदेह बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम है, मंद मंद पवन प्रवाहित हो रही है।
0: हाँ, और जब कभी छींटे पड़ते हैं बारिश के तो और भी ज़्यादा आनंद आता है, और हम इंतज़ार भी कर रहे हैं बेसब्री से कि मानसून आ जाए, मसावन हो। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: बस बरसात की और मानसून की बातें चल रही हैं
0: हाँ,
1: तो एक ऐसा ही गीत है जीवन मृत्यु में।
0: जीवन मृत्यु।
1: जी
0: जी, कौन सा?
1: लता और रफी ने गीत को गाया है।

0: हम पप्पू बोलते हैं, पप्पू सिंह बोलते हैं। बढ़िया दीदी।
1: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? आपका पूरा परिचय तो दीजिए।
0: जिला बांदा, तहसील नरेनी से बोलते हैं।
1: जी जी जी कैसे हैं?
0: बढ़िया है दीदी जी।
1: अच्छा,
0: नीतका जी नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: आपसे पहली बार बात हो रही है दीदी जी।
1: अच्छा हाँ, मुझे भी ऐसा लगा पप्पू सिंह जी, और नाम से भी कई बार हम लोग लोगों को पहचानने की कोशिश कर लेते हैं कि हाँ, हमारी शायद बात हुई है ना।
0: जी,
1: कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज?
0: हीरो फिल्म का गीत सुना दीजिए।
1: जी, कौन सा?
0: लोगों से सुना, किताबों में लिखा, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं।
1: जी जी जी
0: और दीदी जी, हमारे साथ प्रेमदास बाबा हैं, सुन रहे हैं, फूल चंपाल भी सुन रहे हैं।
1: बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया पप्पू सिंह जी। नमस्ते।

0: नमस्ते मैडम
1: जी, आपका परिचय बताइए।
0: जी। दमो से बोल रहे हैं, गिरधारी से। कैसे
1: जी कैसे हैं?
0: हैं आप? ठीक है मैडम
1: जी हम तो बहुत अच्छे हैं।
0: जी। जी मैडम जी।
1: आज फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: मैडम जी, हमको गाना सुनना है ये नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम, वो शेरा वाली ऊंचे डेरा वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम।

0: नमस्कार मैम, नमस्कार। अमित का चौक टेगर वार्ड खड़ाई से आपका दोस्त राम सखी परमानंद
1: जी। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं?
0: मैम ठीक है, हम बढ़िया हैं
1: जी। चलिए परमानंद जी, आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: मैंने प्यार किया का
1: कौन सा
0: टाइटल सॉन्ग?

0: अग्रवाल
1: जी कैसे हैं अरविंद अग्रवाल जी?
0: बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? शहर का नाम?
0: श्रीनगर जिला महोबा उत्तर प्रदेश।
1: जी।
0: जी, आज किन मैम से बात हो रही है?
1: आज मैं नीतिका वर्मा हूँ। तो अरविंद अग्रवाल जी, आज आपने फोन किया है, फोन करें गीत सुने में, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज?
0: जी, फिल्म का नाम रहेगा यार आना छू कर मेरे मन को।

0: बद्री प्रसाद कुशवाहा, ग्राम हथेड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ मैम।
1: जी कैसे हैं बद्री प्रसाद जी?
0: बढ़िया हूँ मैम
1: जी। क्या कुछ कर रहे हैं इन दिनों?
0: इस समय खेती की तैयारी हो रही है मैडम।
1: अच्छा, क्या कुछ लगाएंगे?
0: जी धान।
1: चलिए, तो उसके लिए तो आपको बारिश का इंतजार होगा, कब झमझम पानी बरसे।
0: जी जी जी
1: अच्छा, कार्यक्रम में आपके गीत की कौन सी फरमाइश है?
0: मोहरा का सुना दीजिए मैम, ना कजरे की धार।
1: जी

0: हरदयाल जाटव, जिला क्षेत्री,
1: जी
0: क्षेत्री जिला से।
1: कैसे हैं?
0: बढ़िया मैडम जी, आप कैसी हो?
1: हम बहुत अच्छे हैं।
0: हमको बढ़िया गाना सुना दीजिए।
1: हाँ बिल्कुल, आज तो आपका ही पसंद का गीत है जो वो आएगा, तो आपका अनुरोध किस गीत के लिए है?
0: हमें सुना दीजिए जुड़वा फिल्म का, दुनिया में आई हो तो लगा कर लो, थोड़ा थोड़ा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: जी जी जी बिल्कुल, ये गीत आपके रेडियो सेट पर लीजिए।

0: हेलो
1: जी मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते। हाँ
1: मैं सोमत सिंह बात कर रहा हूँ, एमपी धार से। जी
0: सोमत
1: मैं
0: सिंह,
1: बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं खैरियत से हूँ जी। हाँ कौन मैडम बात कर रही हैं?
0: मैं नीतिका वर्मा। जी जी कैसे हैं?
1: जी, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। आप बताइए क्या हाल चाल है।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। आज कौन सी पसंद का गीत है आपका?
1: आज मुझे आप सुनवा दीजिए, सीमा फिल्म का गीत है तू प्यार का सागर है।

0: मैं कविता कंदारी सतना से।
1: जी कविता जी, कैसी हैं?
0: बढ़िया।
1: और आज आपका कौन सा अनुरोध है, किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: सत्यम श्याम सुंदरम का
1: कौन सा गीत?
0: ईश्वर सत्य है।
1: टाइटल ट्रैक।
0: हाँ
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका ये गीत, हम आपके रेडियो सेट पर जरूर भेज रहे हैं। और क्या कुछ करती हैं कविता जी?
0: मैं घर में काम करती हूँ
1: और रेडियो हमारे सुनते हैं कि नहीं?
0: बहुत। मैं बचपन से सुनती हूँ,
1: तभी तो हम कह रहे हैं, तो फिर रेडियो भी सुनती हैं आप, बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत दीवानी हूँ मैं रेडियो की।
1: तो ये इसकी दीवानगी ऐसी है ना कि अगर डिस्टरबेंस हो गया किसी दिन, या किसी दिन लाइट नहीं है, या किसी दिन बैटरी खत्म हो गई है, तो फिर आदमी झंझला जाता है कि आज हमें कब मिलेगा सुनने को, है ना?
0: मेरे को मतलब जैसे खाना जरूरी है ना, वैसे रेडियो जरूरी है।
1: चलिए, आपकी ये दीवानगी हमें बड़ी अच्छी लगी। शुक्रिया
0: सवेरे से ही चालू कर देती हूँ।
1: आपने फोन किया, आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का गीत सत्यम शिवम सुंदरम का।

0: याद उसे भी एक अधूरा अफसाना तो होगा, कल रस्ते में उसने हमको पहचाना तो होगा। कुछ बातों के मतलब हैं और कुछ मतलब की बातें, जो ये फर्क समझ लेगा वो दीवाना तो होगा। तो श्रोताओं, आपके रेडियो के लिए ये समर्पण, आपकी दीवानगी हमें बहुत अच्छी लगती है। फ़ोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में। आज बस इतने ही फ़ोन कॉल हम ले पाए।
1: अभी सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर और ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कूनो अभयारण्य भी जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। यह सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इस 5 दिवसीय सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, साथ ही कुछ विधेयक भी सदन पर प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए संकेत दिए कि समान नागरिक संहिता संबंधी प्रस्ताव विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको लेकर उच्च स्तरीय समिति नागरिकों से सुझाव लेकर जल्द ही इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। भारत महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला कल सुबह उरुग्वे के साथ होगा और ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ये मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है घंटाघर चौक खंडवासी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। दूसरी फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं सारनी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि और संदीप पाटिल। आप सबने सुनना चाहा है लम्हे फिल्म का ये नगमा, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और ए हरिहरन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत बाजीगर फिल्म से विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजें हैं, गुहर कानपुरी का गीत और अनु मलिक का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान और नवीद खान। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

अगली फरमाइश भेजी है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेत और नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। आप सबने सुनना चाहा है कोयला फिल्म का ये गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक साथी साथियों की आवाजें हैं और इंदिवर का गीत, राजेश शोषण का संगीत।

1942 आई लव स्टोरी लीजिए, सुनिए इस फिल्म का नगमा जिसे आवाज दी है कुमार सानू ने, जावेद अख्तर का गीत और आरडी बर्मन का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और विनोद आर्य ने। कोटवा नारायणपुर से बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अनिल कुमार रॉय, हैप्पी रॉय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय ने। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

मीडियम वेव 254.45 मीटर यानी 1189 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242। सुनो ना।
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
2: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
3: हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12:30 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक जंग लगी तलवार की 12वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असम

मियां उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने।

हड़ताल जारी रहती है। बसुमती नारायणी से मुंशीगंज वालों द्वारा अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना सुनाती है। रोटी के लिए लड़ रहे जानवरों से हड़ताली मजदूर का एक भूखा बच्चा रोटी छीनने जाता है तो जानवर उस पर हमला करके उसे मार डालते हैं। इससे दलितों की बैठक में दहशत फैल जाती है। यूनियन का सचिव कालूराम नारायणी से मिलता है और उसे ठाकुर साहब के कपड़े धोने के काम पर वापस आने के लिए कहता है। नारायणी सोचकर जवाब देने की बात कहकर उसे टाल देती है। हड़ताली मजदूरों का जुलूस नारे लगाते हुए आगे बढ़ता है। यशवंत को रोता हुआ भृगु मिलता है। भृगु बताता है कि उसकी लड़की पार्वती भाग गई है। ये सुनकर यशवंत चौंक जाता है। अब आगे

0: देख रघु, चुप हो जा और सारी बात मुझे तू साफ साफ बता, शायद मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं। भृगु,
1: मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे यशवंत, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं।
0: अरे धैर्य रख, हिम्मत से काम ले भृगु, हिम्मत से काम ले।
1: मेरा धैर्य टूट चुका है, हिम्मत जवाब दे चुकी है।
0: हाँ?
1: जिसके घर की आबरू चली जाए, घर की जवान लड़की किसी गैर के साथ भाग जाए, वो क्या मुंह लेकर जिएगा, क्या मुंह लेकर।
0: लेकिन फिर
1: मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, साई नदी में कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगा, जान दे दूंगा मैं अपनी।
0: रुक जा भृगु, भृगु रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा भृगु, भगवान के लिए रुक जा।
1: मैं साई नदी की गोद में समाने जा रहा हूँ, तू वापस लौट जा यशवंत।
0: तुझे तेरी माँ बसुमती काकी की सौगंध भृगु, माँ विंध्यवासिनी की कसम, रुक जा भृगु, रुक जा। रुक जा भृगु, रुक जा। देख, मुझ पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। पहले पहले तू ये बता कि ये सब हुआ कब।
1: कल शाम को।
0: किसके साथ गई?
1: पेट की भूख मिटाने के लिए पीस वर्करों के पास जाया करती थी।
0: हाँ?
1: उनसे खाना मांगती थी, मगर मगर कल शाम को
0: क्यों? पीस वर्करों के पास जाती थी? अब क्या कोई पीस वर्कर भी फरार है?
1: राजा राम नाम का एक वर्कर भी कल शाम से दिखाई नहीं पड़ रहा। साइट पर जाकर पूछा तो पता लगा कि राजा राम और पार्वती को आखिरी बार कल शाम स्टेशन पर देखा गया था।
0: इसका मतलब दोनों कल शाम वाली पैसेंजर ट्रेन से निकल गए। अब भृगु, तूने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई क्या?
1: नहीं भाई।
0: मुझे तो लगता है कि वर्क साइट पर गश्त लगाने वाले कांस्टेबलों का भी इसमें हाथ होगा। पुलिस चौकी में जाकर रिपोर्ट लिखानी होगी। पुलिस पार्वती को जरूर ढूंढ निकालेगी और इस राजा राम का अपराध साबित होगा और उसे सजा जरूर मिलेगी। भृगु,
1: अपराध राजा राम का नहीं, तुम्हारी यूनियन का है।
0: हाँ?
1: यूनियन के नेताओं का है।
0: ये तू क्या कह रहा है भृगु? अरे होश में तो है तू?
1: नहीं हूं मैं होश में। तुम्हारे नारे सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तुम लोग हड़ताल करते हो, घर में औरतें और बच्चे भूखे हैं, और तुम्हारी यूनियन।
0: लेकिन भृगु,
1: यूनियन के नेता खलासी लंगर पर बैठकर नशा करते हैं और नशा करके सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा महान काम कर रहे हैं। अरे तुम्हारी यूनियन के किसी नेता में त्याग की भावना नहीं है।
0: अरे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती भृगु, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। देख, सब इंसान एक जैसे नहीं होते।
1: बिल्कुल ठीक कहा तूने, सब इंसान एक जैसे नहीं होते। हम लोग सारी जिंदगी कंपनी का काम करते करते बिता देते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा दूसरों की जूठन खाने वाले जानवरों की तरह दुत्कार दिए जाते हैं।
0: अब
1: और अंत में परमानेंट होने की आस लिए इस दुनिया से विदा हो जाते हैं।
0: अरे भृगु, हमारी हड़ताल का मकसद यही है कि हम लोगों के साथ ये भेदभाव खत्म हो, इंसान बराबर हो,

0: कानून सबके लिए समान हो, लेकिन भृगु ऐसा तब होगा जब हम सब मिलकर यूनियन का साथ देंगे, अपनी एकता को मजबूत करेंगे, मिलजुल कर एक नई क्रांति को जन्म देंगे तब।
1: खामोश यशवंत खामोश, तुम्हारी यूनियन की वजह से हमारे घर की लड़की भाग गई। आने वाले दिनों में और खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगी।
0: अरे भृगु,
1: तुम लोगों की देह में वीर भगत सिंह जैसा खून नहीं है। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते।

0: जी, ये ठाकुर साहब बीमार क्या हुए, हमारा पीना पिलाना मौज मस्ती का काम सब रुक गया।
1: ये बोतल का इंतजाम तो मैंने कर लिया।
2: अरे बाप मेरे भाई, क्या बात है, पर तू इसे लाया कहाँ से?
1: अरे वो कंपनी का पुराना टायर बेचकर इंतजाम किया इस बोतल का।
2: लेकिन बाबू भैया, बोतल के साथ जब तक अच्छा खाने का सामान ना हो, तब तक पीने का मजा नहीं आता।
1: कह तो तू ठीक रहा है रामू, पर अब खाने का इंतजाम कहाँ से करें? अरे जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची।
2: अरे एक रास्ता है बाबू, एक रास्ता है मेरे भाई।
1: तो बता ना जल्दी से वो रास्ता।
2: क्यों ना हम कंपनी के भंडार में रखी हुई जिलेटिन की छड़ों की चोरी करें, हैं? और उन छड़ों का विस्फोट हम साई नदी में करें, बहुत सी मछलियां मर जाएंगी और उन्हें भूनकर खाने का मजा आ जाएगा।
1: अरे वाह! पर रामू, अगर चोरी करते हुए पकड़े गए तो?
2: अरे उसकी चिंता मत कर, स्टोर कीपर मेरी जान पहचान का है।
1: अच्छा,
2: अरे पैग दो पैग उसे भी पिला दे।
1: अरे ये तो ठीक रहेगा। चल चल चल चल चल चल चल चल।
3: अरे भाई सुनो, ठाकुर साहब से कहो कि राधे श्याम उनसे मिलना चाहता है।
4: कौन राधे श्याम?
3: लेबर इंस्पेक्टर का सहायक।
4: अच्छा अच्छा, आप अंदर जा सकते हैं, ठाकुर साहब आपका ही इंतजार कर रहे हैं।
3: नमस्कार ठाकुर साहब।
5: नमस्कार।
3: कैसी तबीयत है ठाकुर साहब?
5: पहले से बेहतर है, आओ बैठो।
3: माफ करना, मैं जरा जल्दी में हूँ, आपका आदेश मिला तो आपके दर्शन करने चला आया।
5: अच्छा।
3: रामू मामू कह रहे थे कि आपको मुझसे जरूरी काम है।
5: अरे भाई तुम तो जानते ही हो कि कंपनी के मजदूरों की एक महीने से हड़ताल चल रही है।
3: सुना है इस हड़ताल की चर्चा लखनऊ होते हुए दिल्ली तक पहुँच चुकी है।
5: भाई यही तो समस्या है, कंपनी पर लगातार दबाव आ रहा है कि मजदूरों के साथ जल्दी से जल्दी समझौता किया जाए। तुम लेबर इंस्पेक्टर के सहायक हो, घुटे हुए हो, तुम ही बताओ कि क्या किया जा सकता है।
3: मजदूरों की यूनियन का सरपरस्त लोकल लीडर शास्त्री है ना?
5: उसका नाम ललो मेरे सामने। उसी की वजह से तो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा।
3: मेरी मानो तो उस शास्त्री को खरीद लो, समझो कि हड़ताल की समस्या से छुटकारा मिल गया।
5: अरे राधे श्याम, वो बिकने वाला नहीं है, नहीं तो कंपनी उसे कब का खरीद चुकी होती।
3: ठाकुर साहब, पीतल के भाव सोना बिकते हुए देखा है कभी?
5: नहीं तो।
3: लेकिन आपने यही करने की कोशिश की है, आप थैली का मुंह खोलिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए।
5: क्या तुम शास्त्री को रुपये के सामने झुका सकते हो?
3: ला ठपकाते दौड़ा आएगा शास्त्री। हाँ, मेरी कमीशन देना मत भूलना।
5: अरे भाई तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी कमीशन तुम्हें पहले ही मिल जाएगी।
3: ठीक है ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अभी बहुत से काम करने हैं मुझे।
5: हाँ ठीक।

0: अरे जगन्नाथ, मेरा मेरा राजा बेटा। देख बेटा, दलितों की बैरक में 20 दिनों से किसी ने भी अन्न का स्वाद नहीं चखा है। बेटा, लोग तो जंगली फल और पेड़ के पत्ते चबा चबा कर पेट भर रहे हैं। एक बेटा तू है जो साई पर जाकर मछलियां पकड़ लाता है, नहीं तो जगन्नाथ हम भी पत्ते चबाने पर विवश हो जाते। बेटा
1: नहीं बापू, आज तो मैं रोटी या भात ही खाऊंगा।
0: नहीं नहीं, देख जगन्नाथ बेटा, जिद नहीं करते।
1: नहीं बापू, मछली खा खा कर मेरा पेट खराब हो गया है।
0: जगन्नाथ जगन्नाथ, तू तो मेरा राजा बेटा है। देख बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे कल साग रोटी जरूर खिलाऊंगा।
1: सच बापू?
0: हाँ बिल्कुल सच।
1: वादा?
0: अरे वादा है बेटा।
1: तो बापू हाँ, मैं मछली पकड़ने जाऊँ?
0: हाँ हाँ, जा बेटा जा।
1: कल साग रोटी खाने को मिलेगी, कल साग रोटी खाने को मिलेगी, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
2: भैया बामू।
3: हाँ रामू।
2: साई नदी के तट पर तो हम आ गए। हाँ। अब हमें पानी में जिलेटिन की छड़का विस्फोट कर देना चाहिए। हाँ,
3: पर रुक रुक रुक रुक। पहले चारों तरफ देख ली।
2: हाँ।
3: कोई आसपास है तो नहीं?
2: हाँ देखता हूँ।
3: हाँ, देखते देखते। हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि हम धरे जाएं और जिलेटिन चुराने के आरोप में हमें जेल की हवा खानी पड़े।
2: अरे कोई नहीं है, चल फटाफट कर दे विस्फोट।
3: कर दो?
2: ले ले ले, कर
3: ये, ये, ये किया मैंने विस्फोट।
2: भैया बाबू भाग, मैंने किसी बच्चे की चीख सुनी है, भाग ले भैया।
3: तो मैंने भी सुनी है।
2: पुलिस भी आ रही है।

0: क्या हुआ? ये विस्फोट कैसा था?
1: मैंने भी किसी बच्चे की चीख सुनी थी। किसका बच्चा होगा वो?
2: हाँ, जरूर ये हड़तालियों की कारस्तानी होगी।
3: हाँ हाँ, उन्हीं का काम होगा ये। अरे अरे देखो तो, अरे यहाँ तो जगन्नाथ की लाश पड़ी है। तो क्या वो चीख इसी की थी? अरे अरे बेटा जगन्नाथ, तू तो चला गया पर अपने बाप लीचू को जीते जी मार गया तू बेटा।

0: लिचू, लिचू।
1: क्या बात है काका?
0: अरे जल्दी कर, मेरे पीछे आ।
1: माफ करना काका, आज मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लगी हुई है, अभी मैं कहीं नहीं चल सकता।
2: अरे सिद्ध ना कर लिचू, तू इसी वक्त हमारे साथ चल।
1: क्या बात है यशवंत, तुम लोगों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों है?
2: अरे तू हमारे साथ चल, रास्ते में हम तुझे सब बता देंगे।
1: लगता है कोई गंभीर बात है। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलता हूँ।
0: अपना जी कड़ा कर ले लीचू, अपना जी कड़ा कर ले।
1: अरे बात क्या है काका, आप लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं है?
2: अरे धीरज रख लीचू भाई, थोड़ी देर में तेरी समझ में सब आ जाएगा, बस तू हमारे साथ चल।
1: चल चल चल चल चल चल।

0: जगन्नाथ मेरे बेटे, अरे क्या हुआ तुझे? ये झुलस कैसे गया? अरे कोई बोलता क्यों नहीं बोलता? मेरे जगन्नाथ को क्या हुआ है? अरे क्या हुआ जगन्नाथ?
1: अरे तेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा लिचू, नहीं
0: रहा। तू झूठ बोलता है, झूठ बोलता है।

0: अरे मेरा बेटा मर नहीं सकता, मर नहीं सकता, नहीं मर सकता मेरा बेटा। अरे मेरा बेटा तो साग सब्जी खाएगा। उठ उठ बेटा उठ, चल चल चल चल घर चल घर चल।
1: बिशू
0: मैं तुझे साग रोटी खिलाऊंगा, दाल भात खिलाऊंगा।
2: अपने
1: आप को संभाल लिचू, अपने आप को संभाल, अपने आप को संभाल
2: लिचू। क्या हो गया रे लिचू, लिचू हिम्मत से काम ले लिचू,
1: अपने आप को संभाल लिचू, अपने आप

0: सुनो जी, कैसी तबीयत है आपकी?
1: नारायण, जिंदगी से निराश हो चुका हूं मैं। अब तो भगवान से यही दुआ मांगता हूँ कि वो मुझे
0: बस बस, आप ज्यादा ना बोलिए, बोलने से आपको तकलीफ होती है, खांसी भी आती है। जरा हिम्मत करके मुन्ने का ख्याल रखना, मैं भी आती हूँ।
1: नारायणी, तू कहीं जा रही है?
0: जी, बड़ी मेहनतों के बाद अस्पताल में सफाई का काम मिला है। अब मुन्ना दूध के लिए नहीं रोएगा, आपका इलाज भी हो जाएगा।
1: नारायणी, नारायणी तू कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है तू। अरे भगवान तेरी जैसी पत्नी सभी को दे, सभी को दे।
0: आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी। आप, मैं जा रही हूँ, मुन्ने का ख्याल रखना।
2: दरोगा जी आपसे मिलने आए हैं।
3: दरोगा जी मिलने आए?
2: जी।
3: उन्होंने ये नहीं बताया कि काम क्या है?
2: जी नहीं।
3: ठीक है, अंदर भेज दो।
2: जी बहुत अच्छा। दरोगा जी, ठाकुर साहब आपको बुला रहे हैं।
4: अरे यार, रास्ता दे।
3: आइए आइए दरोगा जी, कैसे आना हुआ?
4: ठाकुर, साई नदी में जिलेटिन का विस्फोट करते हुए पुलिस ने कंपनी के दो मजदूरों को गिरफ्तार किया है।
3: क्या क्या नाम है उन दो मजदूरों का?
4: एक का नाम रामू है और दूसरे का बामू।
3: रामू बामू, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं?
4: उन दोनों का कहना है कि वो आपके आदमी हैं, आप उनकी जमानत लेंगे?
3: मैं उनकी जमानत लूंगा? देखिए दरोगा जी, कंपनी के 4,000 मजदूर यहाँ काम करते हैं, क्या उन सबका ठेका मैंने ले रखा है?
4: यानी आप उन दोनों की जमानत देने से इनकार कर रहे हैं, यही ना?
3: जी बिल्कुल ठीक समझा आपने।
4: ठाकुर साहब, पुलिस ने कंपनी की वर्कसाइट की भी तलाशी ली है।
3: पुलिस ने वर्कसाइट की तलाशी ली?
4: जी हाँ।
3: लेकिन वो किस लिए?
4: इसलिए कि रामू और बामू का बयान है कि विस्फोटक जिलेटिन की चोरी उन्होंने वहीं से की थी।
3: वो झूठ बोलते हैं दोनों।
4: झूठ वो नहीं, आप बोल रहे हैं ठाकुर साहब।
3: देखिए, मुझ पर किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं?
4: आरोप? ठाकुर साहब, पुलिस ने जिलेटिन का सारा भंडार खोजकर सारी विस्फोटक सामग्री अपने कब्जे में ले ली है। वर्क साइट पर भी गैर कानूनी ढंग से विस्फोटक का ढेर लगाने और विस्फोटक की अलग व्यवस्था ना करने के अपराध में कंपनी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और सुनो, जुर्माना ना भरने की स्थिति में आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
3: क्या?
5: शास्त्री जी, कुछ हड़ताली मजदूरों ने विद्रोह कर दिया है। वो लोग हमें जगह जगह तलाश कर रहे हैं, हमें छिप कर रहना पड़ रहा है।
6: तो मैं क्या करूं?
5: आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कंपनी के अधिकारियों से बात कीजिए, इस समस्या का कोई तो समाधान निकालिए।
7: हाँ शास्त्री जी, मजदूरों को अब विश्वास होने लगा है कि हम लोग कंपनी के समझौता पत्र के खिलाफ नहीं जा सकते। मजदूरों ने कसम खाई है कि वो हम यूनियन वालों को साई के बालू में जिंदा दफना देंगे।
6: तो मुझसे क्या चाहते हो तुम?
5: पिछली बार हम लोग आपके साथ कंपनी के अधिकारियों से नहीं मिले थे, लेकिन

0: लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, हमें अधिकारियों से मिलना पड़ेगा।
1: सौरभ, तुम लोगों को नेता समझना शर्म की बात है।
0: क्या?
1: शर्म की बात। अरे भले ही हड्डियां चूर चूर हो जाएं, देह से मांस सड़कर गिर जाए, लेकिन मजदूरों को दिया हुआ वचन पूरा करना होगा। हड़ताल जारी रखो, समझे तुम?
2: लेकिन शास्त्री जी, अब हमारा मजदूरों के बीच जाना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, अगर उनके हक में हमारे पास कोई फैसला हो तो अलग बात है।
1: हाँ, देखो मैं कुछ दिन के लिए मुंशीगंज से बाहर रहूंगा।
2: जी
1: भाई, तुम लोग तो जानते ही हो कि दूर दूर से उधर डालमऊ की तरफ से भी लोग मुझसे मिलने, सलाह लेने आते रहते हैं।
0: हाँ, हाँ। हम लोगों का मार्गदर्शन कीजिए शास्त्री जी, अब हम लोग क्या करें?
1: एक काम करो
2: जी,
1: इस बार तुम लोग खुद मिलने जाओ।
0: हम लोग?
1: हाँ हाँ भाई, तुम लोग।
2: ठीक है शास्त्री जी,
0: हम लोग
2: मिलने जाएंगे। चलो बलबीर।
3: माँ,
4: हाँ बेटा,
3: आज मैंने भरपेट खाया।
4: क्या खाया बेटा?
3: कच्चा मांस।
4: क्या?
3: बहुत दिनों का भूखा था ना, इसलिए।
4: क्या कच्चा मांस?
3: हाँ माँ।
4: कहाँ मिला?
3: वो मुंशीगंज के कसाई है ना।
4: हाँ?
3: वो ही फेंक कर गए थे।
4: बेटा थोड़ा मांस मेरे लिए भी ले आता तो मेरा भी पेट भर जाता।
3: क्या करता माँ, वहाँ इतने सारे भूखे लड़के थे कि पल भर में मिट्टी में सना मांस चट कर गए।
4: बेटा कल तू बाकी लड़कों से पहले पहुँच जाना। हाँ, और जितना भी मिले सब उठा लाना, कम से कम दो एक दिन के खाने का तो इंतजाम हो जाएगा।
3: हाँ,
4: आगे भगवान मालिक है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे तू उल्टी क्यों हो रही है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? बेटा बेटा बोल ना, बोल बेटा। तू चुटके हो गया है। हे भगवान, अरे इसके तो हाथ पैर भी नहीं हिल रहे। हे भगवान,
2: अरे क्या हुआ?
4: मैं
2: ये लड़का जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है?
4: देखिए यशवंत बाबू, मेरे बेटे को जाने क्या हो गया है।
2: एक मिनट।
4: देखिए,
2: है? अरे इसकी तो धड़कन रुक गई है। इसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी
4: है। नहीं नहीं, ऐसा लग गए ये नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरा बेटा।
2: देखिए, देखो रोने से अब कोई लाभ नहीं, अब इसे जलाने का इंतजाम करो।
4: नहीं,
2: लेकिन जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत होगी। लकड़ी के लिए पैसे कहाँ से हैं? ऐसा करो, इसे साई नदी में ही बहा दो।

0: तू आ गई नारायणी?
1: जी।
0: क्या बात है, आज बड़ी देर लगा दी आने में?
1: डॉक्टर साहब, मेरे पति की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई।
0: ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा कर, मेरे साथ आ।
1: जी।
0: आज बहुत काम है तेरे लिए, सारे अस्पताल की अच्छी तरह सफाई करनी है तुझे, समझ गई तू?
1: जी जी।
0: चल आ इधर।
1: जी, चलिए। ये क्या डॉक्टर साहब, इतने सारे बीमार बच्चे? ये सारे बच्चे तो दलित बैरक के हैं ना?
0: हाँ, इन बच्चों ने कसाईयों द्वारा फेंका गया सड़ा कच्चा मांस खा लिया है, इसी से इनकी ये हालत हुई है।
1: ओह,
0: देख नहीं रही, उल्टी कर करके सारे अस्पताल का फर्श गंदा कर दिया है। देख, ये सारे फर्श की सफाई तुझे ही करनी है।
1: डॉक्टर साहब, ये बच्चे बच तो जाएंगे ना?
0: देख नारायणी, कई तो मर चुके हैं, और जो जो बचे हैं ना, उनका मरना भी तय है।
1: क्या?
0: हाँ नारायणी।

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार की 12वीं कड़ी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कूनो अभ्यारण्य भी जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15% से अधिक है। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। यह सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इस 5 दिवसीय सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, साथ ही कुछ विधेयक भी सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए संकेत दिए कि समान संहिता संबंधी प्रस्ताव विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको लेकर उच्च स्तरीय समिति नागरिकों से सुझाव लेकर जल्द ही इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। भारत महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में भारतीय महिला टीम का मुकाबला कल सुबह उरुग्वे के साथ होगा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज ब्रिटेन में शाम 7 बजे से भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। और अंडर-17 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए पहली बार युवा लीग मुकाबले 18 जुलाई से छत्तीसगढ़ में होंगे। फाइनल मुकाबला 29 जुलाई को होगा। टूर्नामेंट में देश की 16 टीमें भाग ले रही हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

बहनों, आप और हम व्यस्त तो सभी रहते हैं, फिर चाहे वर्किंग वुमन हो या हाउस मेकर। खुशी की बात तो ये है कि इसी व्यस्तता के बीच समय निकालकर आप हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं। तो सभी श्रोता सखियों को अपनी दोस्त वंदना शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। घर परिवार, दोस्त पड़ोसी, रिश्तेदार और हमारा कार्यस्थल, इन सभी से जुड़ी जिम्मेदारियों का प्रतिबिंब होता है हमारा डेली रूटीन। उसी के अनुसार हम अपने काम पूरे करते हैं। यूं तो हमें इन

कामों में मजा भी आता है, पर कभी कभी ये ख्याल भी आता है कि क्या हमारा सारा जीवन इसी प्रकार चलता रहेगा। घड़ी की चलती सुइयों के साथ हम सबके लिए काम करते हैं, पर इसके बीच में हमारा निजी समय कहाँ है? दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों के बीच जब हम दब से जाते हैं तो लगता है कि हमारा क्या व्यक्तित्व है, हम क्या ढूंढ रहे हैं, किसमें हमारी खुशी है। तब अपनी खुशियों के लिए हम जो समय निकालते हैं वो मी टाइम कहलाता है। मी टाइम यानी हमारा वो निजी समय जिसमें हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। ये हमारे वो निजी पल हैं जिन्हें हम स्वयं निर्धारित करते हैं, ये कब होने चाहिए और किसके साथ। सखियों, मी टाइम केवल समय बिताना ही नहीं है बल्कि इसके कई फायदे भी हैं जो हमें समझने चाहिए। इसके द्वारा हम अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को रिचार्ज करते हैं, यानी ये दिल और दिमाग दोनों को स्वस्थ रखने में सहायक है। नई नई चीज़ों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, यानी खुद को अपग्रेड करते हैं। हम रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि इस समय हम शांत भाव से हर पल को जीते हैं। बाहरी चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर स्वयं पर ही केंद्रित करते हैं, ना सिर्फ अपनी खूबियों को तलाशते हैं बल्कि अपनी खामियां भी ढूंढते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। कहने का अभिप्राय है कि खुद से ही खुद को मिलवाते हैं। मी टाइम स्पेंड करने के सभी के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने विचार हैं। कई महिलाओं ने अपने ग्रुप बना लिए हैं, फिर चाहे वो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हों, एडल्ट वुमन या 50+, वे सभी मिल बैठती हैं, कुछ गेम खेलती हैं, चाय कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ ना सिर्फ निजी बातें शेयर करती हैं बल्कि हर टॉपिक पर खुलकर चर्चा होती है। अब तो मिलने का स्थान केवल घर या पार्क ही नहीं रहा, कॉफ़ी हाउस, रेस्टोरेंट, बोटिंग क्लब भी आज बहनों की गपशप से गुलजार दिखाई देते हैं। सखियों, आप अपना मी टाइम कैसे गुजारती हैं? यकीनन कुछ नया करती होंगी या फिर कुछ ऐसा जो दिल को सुकून दे, क्योंकि खुद से खुद की मुलाकात भी ज़रूरी है, वरना एक दिन आईना पूछेगा, बता तेरा नाम पता। अपने निजी लम्हों में हम इस कदर डूब जाएं कि दिल फिर कोई ख्वाहिश कर बैठे।

0: बहनों, भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। कितने ही तीज त्योहार, पर्व, तिथि, मेले, समारोह आदि हम सब मिलजुल कर मनाते हैं। भले ही हम किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के हों, उच्च वर्ग या निम्न स्तर के हों, महिला हों, पुरुष हों या अन्य, सभी में कहीं ना कहीं प्रेम भाव तो रहता ही है। यही प्रेम और विश्वास हमारे देश की परंपरा है, भारत की पहचान है। इसी सार्वभौमिक सोच पर आधारित वार्ता आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। वार्ता का शीर्षक है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा और मानव एकजुटता। आलेख श्री जवाहर प्रजापति का है। वाचन कर रही हैं आभा गुप्ता। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: उपनिषद में कहा गया है, इकट्ठे चलें, एक जैसा बोलें और हम सबके मन एक जैसे हो जाएं। ये भावना प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इसलिए यहाँ राजा और रंक सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। यहाँ के तत्व चिंतकों ने बिना किसी भेदभाव के मानव मात्र अथा च प्राणी मात्र के कल्याण की कामना की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात संसार में सब सुखी रहें, सब निरोग या स्वस्थ रहें, सब भद्र दिखें और विश्व में कोई दुखी ना हो। वसुधैव कुटुंबकम एक व्यापक मानव मूल्य है। व्यक्ति से लेकर विश्व तक इसकी व्याप्ति है। गरज ये कि संपूर्ण विश्व इसकी परिधि में समाहित है। ये वैयक्तिक मूल्य भी है और सामाजिक मूल्य भी, राष्ट्रीय मूल्य भी है और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भी, राजनीतिक मूल्य भी है और नैतिक मूल्य भी, धार्मिक भी है और प्रगतिशील मूल्य भी। और यदि इन सब का एक शब्द में समाहार करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये मानवीय मूल्य है। इस मूल्य को सच्चे मन से अपनाए बिना मानवता अधूरी है, मनुष्य अधूरा है, धर्म और संस्कृति अधूरे हैं तथा राष्ट्र और विश्व भी अधूरा और पंगु है। यह मनुष्य की, मानव समाज की, राष्ट्र की अनिवार्यता है। यदि हम विश्व को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो हमें विश्व बंधुत्व की भावना को आत्मसात करना ही होगा। वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र द्वारा भारतीय मनीषियों ने जिस उदार मानवतावाद का सूत्रपात किया उसमें सार्वभौमिक कल्याण की भावना है। यह देश कालातीत अवधारणा है और पारस्परिक सद्भाव, अंतः विश्वास एवं एकात्मवाद पर टिकी है। स्व और पर के बीच की खाई को पाट कर ये अवधारणा स्व का पर तक विस्तार कर उसमें अभेद की स्थापना का स्तुत्य प्रयास करती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को राष्ट्रवाद का विरोधी मानने की भूल की जाती रही है। जिस प्रकार उदार मानवतावाद का राष्ट्रवाद से कोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार वसुधैव कुटुंबकम की भावना का भी राष्ट्रवाद से कोई विरोध नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा शाश्वत तो है ही, यह व्यापक एवं उदार नैतिक मानवीय मूल्यों पर आधारित भी है। इसमें किसी प्रकार की संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है। सहिष्णुता इसकी अनिवार्य शर्त है। निश्चय ही आत्मप्रसार, स्व का पर तक विस्तार स्वयं को और जग को सुखी बनाने का साधन है। वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप समय और दूरी के कम हो जाने से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के प्रसार की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। किसी देश की छोटी बड़ी हलचल का प्रभाव आज संसार के सभी देशों पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है। फलतः समस्त देश अब ये अनुभव करने लगे हैं कि पारस्परिक सहयोग, स्नेह, सद्भाव, सांस्कृतिक आदान प्रदान और भाईचारे के बिना उनका काम नहीं चलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, निर्गुण शिखर सम्मेलन, दक्षेश, G15 आदि वसुधैव कुटुंबकम के ही रूपांतरित नाम हैं। इन राजनीतिक संगठनों से ये तो प्रमाणित होता ही है कि विश्व के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे राष्ट्र पारस्परिकता और सह अस्तित्व की आवश्यकता अनुभव करते हैं, तथा इन अवधारणाओं के बीच वसुधैव कुटुंबकम में निश्चय ही विद्यमान थे। यजुर्वेद के एक मंत्र का सार है कि व्यक्ति द्वारा ये कामना की गई है कि संसार के सभी लोग मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मैं भी सभी को मित्र की दृष्टि से देखूं, हम सब एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से ही देखें। सच तो ये है कि संसार को देखने की हमारी मूल सोच और दृष्टि यही रही है। व्यक्ति, समाज और देश भी इसी दृष्टि के अनुसार व्यवहार करता रहा है। इसलिए हम विश्व बंधुत्व में विश्वास करते हैं। हमारे जीवन दर्शन के चंद आधारभूत सूत्रों में ये एक महत्वपूर्ण सूत्र रहा है। इस तथ्य को साहित्य और दर्शन में भिन्न भिन्न भावों और भाषाओं में व्यक्त किया जाता रहा है और इसे हम अपने व्यवहार में ढालते रहे हैं। आज पूरा विश्व जिन परिस्थितियों से दोचार हो रहा है उसमें हमारी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा सर्वाधिक उपयोगी प्रतीत होती है। तकनीक ने फासलों को कम किया है, लेकिन दिलों के फासले तकनीक कम नहीं कर सकती। उसके लिए आवश्यकता है कि भावनात्मक रूप से, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे को समझने और निकट आने की। ये निकटता समय के साथ गहरी होती है और एकजुटता में परिवर्तित हो जाती है। हमारी भावनाएं साझा होने लगती हैं, हमारे सुख दुख एक लगने लगते हैं, हमारी जरूरतें एक दूसरे की हो जाती हैं। इस तरह जो दुनिया बनती है वह ऐसी दुनिया होती है जिसे हम आने वाली पीढ़ी को सौंपते हुए संतुष्ट भी होते हैं और गर्वित भी। एक ऐसी दुनिया जिसमें एक दूसरे के प्रति द्वेष, घृणा, क्रोध और शत्रुता का भाव शून्य हो। ये पूछा जा सकता है कि ऐसी दुनिया व्यवहार के धरातल पर कैसे संभव है। प्राणी अपने स्वाभाविक गुणों के कारण प्रेम के साथ द्वेष, प्रगति के साथ ईर्ष्या और संयम के साथ क्रोध को भी अपना ही लेता है। ये ठीक भी है क्योंकि ये तो मानव के स्वाभाविक गुण हैं। तो भी उनका परिमाण इतना अल्प होगा कि समाज पर उसका प्रभाव दिखाई नहीं देगा। आमतौर पर मानव समाज में जो भावना, जो अंतर संबंध होंगे वो प्रेम और सद्भाव के ही होंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक सुंदर, कल्याणकारी और श्रेष्ठ संसार की रचना के लिए मानव एकजुटता समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
0: अभी आप सुन रही थी वार्ता, वाचन स्वर था आभा गुप्ता का और आलेख था श्री जवाहर प्रजापति का। सखियों, हमें आशा है कि ये वार्ता आपको पसंद आई होगी। तो अब कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। सखियों, अभी बात चल रही थी कि मी टाइम को हम कैसे स्पेंड करते हैं। ये तो सबकी व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है। अगर आपकी रुचि योगा करने में है तो यकीनन आप स्वयं को तनाव रहित एवं हल्का महसूस करती होंगी, साथ ही ऊर्जावान भी। ये हम सभी जानते हैं कि योग की शुरुआत हमारे देश भारत से ही हुई थी। ये हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा है और उनकी लंबी आयु, तन मन, चमकती त्वचा का राज।

आज भी है। योगा प्राचीन काल से किया जाने वाला वो अभ्यास है जो शरीर का लचीलापन बढ़ाता है, तनाव और चिंता को कम करता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। बहनों, अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त निकालकर सभी को योगा करने की आदत डालनी चाहिए। भले ही शुरुआत 10 मिनट से करें और निरंतरता कायम रखते हुए इस समय को बढ़ा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि योग करने के कितने ही फायदे हैं, बस आलस कर जाते हैं। योग से रक्तचाप सुधरता है, यानी दिल मजबूत होता है, मांसपेशियों के लचीलेपन को बढ़ाता है, यानी पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। बस रेगुलर यदि हम योगा करें तो फिर शादी और पार्टी में बढ़िया सा डांस भी कर सकती हैं। छोटी छोटी शारीरिक समस्याओं को दूर करने में भी योग बहुत ही हेल्पफुल है। तभी तो हमें रोज थोड़ा सा समय इसके लिए जरूर निकालना चाहिए। योगा करने से हमारी एकाग्रता में भी सुधार आता है। प्राणायाम और ध्यान से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, परिणाम स्वरूप याददाश्त और फोकस बेहतर होते हैं। तो प्रॉमिस कीजिए कि डेली योगा करेंगी। अगर पहले से ही कर रही हैं तो आप बधाई की पात्र हैं, समझदार हैं, अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। अगर हमें सुबह टाइम नहीं मिलता, हम शाम का समय फिक्स कर सकते हैं। और आजकल गर्मियों में तो हर पार्क में आपको योगा करते हुए, हंसते खिलखिलाते हुए लोग समूहों में दिख जाएंगे, तो फिर हम भी उन्हीं में शामिल होते हैं। योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं। निरोगी रहकर अपने वजन को नियंत्रित करते हुए कमनीय काया के मालिक बनकर खुशी से इतराइए और अपनी तारीफ सुनिए।

बहनों, गर्मी के तेवर तो आप देख ही रही हैं। ऐसे में जब वातावरण का तापमान बढ़ता है तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को काम करने के लिए अब अधिक पानी की जरूरत होती है। तो हमें गर्मियों में भरपूर पानी पीना चाहिए। बहनों, गर्मियों में हमें अपने खान पान का ख्याल रखना चाहिए। गर्मी में यदि हमारा खान पान गलत हो जाता है तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है और इसका नतीजा होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए हमें हरी सब्जियां, पालक, चौलाई आदि का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। इनमें पानी तो होता ही है, साथ ही होता है आयरन और कई सारे विटामिन। बहनों, लौकी में भी पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। डिहाइड्रेशन के लक्षणों को अनदेखा ना करें। डिहाइड्रेशन के लक्षण हो सकते हैं जैसे हल्का सिर दर्द होना, जुबान का सूखना, आँखों में भारीपन होना, पेशाब में जलन होना या कभी कभी इसका रंग गहरा पीला हो जाना, उल्टी जैसा मन करना, ये सभी डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं। तो इन्हें पहचानें और खूब पानी पिएं। और हम ठंडा दूध पी सकते हैं, छाछ का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी शरीर को किसी भी तरह पानी की पर्याप्त मात्रा दें। प्यास लगने का इंतजार न करें, हर एक घंटे में एक गिलास पानी पीना है। साथ ही हमें 20 किलोग्राम वजन पर एक लीटर पानी पीना चाहिए। इसके साथ ही नींबू पानी, नारियल पानी या ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का हम सेवन कर सकते हैं। ये शरीर के पानी की आपूर्ति तो करते ही हैं, साथ ही कोशिकाओं के इलेक्ट्रोलाइट स्तर को भी बैलेंस रखते हैं। बहनों, ये भी समझते हैं कि तरल पदार्थों के साथ साथ कुछ ऐसे ठोस भोज्य पदार्थ भी हैं जो हमें डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, जैसे खीरा, इसमें पानी के साथ साथ सिलिका भी होता है। तरबूज, इसमें पानी तो भरपूर होता ही है, साथ ही इसमें पोटेशियम भी रहता है। आप कच्चा नारियल खा सकती हैं, कच्चे आम का पना बनाकर पी सकती हैं। बाहर की प्रिजर्वेटिव डले हुए चीज़ों को अवॉइड ही करें। अल्टीमेटली अपने आप

स्वस्थ रखें, खूब पानी पिएं, योगा करें, मी टाइम में स्वयं को और बेहतर बनाने की कोशिश करें, और ऐसे ही सुनते रहिए गीत संगीत और रोचक जानकारियों व मजेदार बातों से भरपूर आपका और हमारा अपना कार्यक्रम महिला सभा। सखियों, कार्यक्रम के समापन का समय हो चला है, तो लेते हैं आपसे विदा। अपनी सखी वंदना को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। वक्त है अंतराल का।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ, मनोरंजन समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है, जिसमें आप सुनेंगे निरंजन कुमार शर्मा के गाए लोकगीत। पहला हास्य गीत गारी और फिर लोक भजन।

0: रंजन कुमार शर्मा के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आज आप सुनेंगे पीयूष झा की गाई कुछ गजलें।

पीयूष झा की गाइस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार
1: फिल्म संगीत। पहला गीत मोहब्बत फिल्म से, आवाज किशोर कुमार और साथियों की, इंदिवर का गीत और संगीत बप्पी लहरी का।

0: या किसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम?
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। वह यहां 22 जून तक बैतूल, ओंकारेश्वर और जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी और श्योपुर के प्रसिद्ध कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल ओंकारेश्वर पहुंचेंगी, जहां वे भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन व आरती करेंगी। इसके बाद वे रात्रि विश्राम NHDC गेस्ट हाउस में करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति बैतूल में ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में शामिल होंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति अगले दिन 19 जून को ओंकारेश्वर से सुबह अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति 20 जून को शाम में जबलपुर एयरपोर्ट आएंगी। राष्ट्रपति 21 जून को प्रातः जबलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम के पश्चात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें कॉन्क्लेव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। मायगांव की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश नाथ काटजू की जयंती आज श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधायक भगवान दास सबनानी, विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों के साथ स्वर्गीय काटजू के परिजन भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश नाथ काटजू केवल एक राजनेता नहीं बल्कि देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले समर्पित सेनानी थे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी काटजू ने विभिन्न संवैधानिक और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश और समाज की सेवा में अभूतपूर्व योगदान दिया। डॉक्टर यादव ने यहां मीडिया से बात करते हुए नीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ लगातार समन्वय में काम कर रही है, ताकि पिछली बार जैसी कोई स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।
1: के नीट के समय 11 बजे से जो बच्चे आएंगे उनके रोल नंबर, उनके फॉर्म का वेरिफिकेशन, ऐसे कई काम करेंगे। जहां शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवागमन की थोड़ी कठिनाई है, तो वहां बसें बड़े महानगरों में लगा देंगे। साथ ही साथ वहां रिफ्रेशमेंट का सेंटर चालू करने के लिए भी हमने कहा, पीने का पानी, छाया का इंतजाम, ऐसे सारे प्रबंधन सरकार के माध्यम से किए गए हैं। भारत सरकार इस बात के लिए कृतसंकल्पित है कि बच्चों के एग्जाम निर्विघ्न सम्पन्न हो जाए।
0: प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से ठहरा हुआ है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है।

0: मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्व चीफ जस्टिस की खंडपीठ के समक्ष हुई आंशिक सुनवाई को आधार नहीं बनाया जा सकता। आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव को कल साप्ताहिक जनसुनवाई में 137 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने मौके पर ही निराकरण योग्य प्रकरणों का संबंधित अधिकारियों से समाधान करवाया। पन्ना जिले में भी आज महाराणा प्रताप और बुंदेल केशरी महाराज छत्रसाल जयंती गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
2: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेश

0: और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओज के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
2: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
3: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने

0: जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
1: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
2: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
1: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता
3: से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैन्य कार्रवाई खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000

0: करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है आदर्श नगर मलोट राज से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, बलहरी बड़खेरा से संतोष ठाकुर, काशी तिवारी, सुमेरू पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल, मुन्ना खान एवं ग्राम पहुरुआ से राम कुमार लोधी, गोविंद यादव और उनके सभी साथियों ने इन्होंने सुनना चाहा है फर्स्ट लव लेटर फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, अनजान का गीत और बप्पी लहरी का संगीत।

करियादंड हट्टा जिला बालाघाट से हुलास राम कटारे, नानेश्वरी कटारे, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर रही, मेराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मिन और प्रयागराज भट्ट। आप सबने सुनना चाहा है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ कभी कभी फिल्म का ये नगमा। साहिर के लिखे गीत की धुन बनाई है खय्याम ने।

अगले गीत की फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूरा श्रीमाली, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं समस्त राजावत परिवार। आप सबने पसंद किया है चांदनी फिल्म का ये गीत, आवाज़ें श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की, गीत आनंद बख्शी का और संगीत शिव हरी का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। अगली फरमाइश भेजी है गोलाघाट बक्सर से विजय केसरी, गौरीशंकर केसरी, शंभू केसरी, नया बाजार बक्सर से राजेश केसरी, पंकज केसरी, रोहन केसरी, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमती पंचोलिया। आप सबने पसंद किया है राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत, आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की है। समीर के लिखे गीत को शुरू में ढाला है नदीम शवण ने।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियों में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कूनो अभ्यारण्य भी जाएंगी। ओबीसी आरक्षण की सुनवाई जबलपुर उच्च न्यायालय में नए सिरे से होगी। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस भगवती प्रसाद शर्मा की नई डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्व चीफ जस्टिस की खंडपीठ के समक्ष हुई आंशिक सुनवाई को आधार नहीं बनाया जा सकता। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए संकेत दिए कि समान संहिता संबंधी प्रस्ताव विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अब ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी गई है। प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से ठहरा हुआ है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। और ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज ब्रिटेन में शाम 7 बजे से भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 88.32 मीटर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6 बजे। ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के मध्य लीड्स में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हम आपको 7:21 पर आकाशवाणी दिल्ली से सुनवाएंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:33 पर और रात 11:15। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शाम की सभा में कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 88.32 मीटर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है लोकम सुगम संगीत, जिसमें आप सुगम लोक संगीत में आप सुनेंगे निरंजन कुमार शर्मा के गाए गीत और सुगम संगीत में पीयूष झा की गाई गजलें।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे निरंजन कुमार शर्मा को। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान था। और सुगम संगीत में आप सुनिए पीयूष झा की गाई गजलें। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

पीयूष झा की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान था। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल।

0: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत चाइना गेट फिल्म से, आवाज सपना अवस्थी और अनु मलिक की, समीर का गीत और अनु मलिक का संगीत।

इजाज़त लीजिए, सुनिए इस फिल्म का नगमा आशा भोंसले की आवाज़ में, गुलजार का लिखा गीत और संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन का।

बप्पी लहरी और एस जानकी की आवाज़ों में सुनिए साहेब फिल्म का ये नगमा। अनजान के लिखे गीत की धुन बनाई है बप्पी लहरी ने।

अगला गीत खलनायक फिल्म से मनहर उदास, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें हैं। आनंद बख्शी का गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा ईश्वर फिल्म के इस गीत से नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें हैं। अनजान का गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इसके साथ ही चित्रपट संगीत संपन्न हुआ। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। 3:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियां में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की

0: संभावना है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रपति कूनो अभ्यारण्य भी जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में मीडिया से बात करते हुए नीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ लगातार समन्वय में काम कर रही है ताकि पिछली बार जैसी कोई स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। ओबीसी आरक्षण की सुनवाई जबलपुर उच्च न्यायालय में नए सिरे से होगी। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस भगवती प्रसाद शर्मा की नई डिवीजन बेंच ने यह स्पष्ट किया है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अब ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, छतरपुर समेत 34 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। और अंडर 17 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए पहली बार युवा लीग मुकाबले 18 जुलाई से छत्तीसगढ़ में होंगे। फाइनल मुकाबला 29 जुलाई को होगा। टूर्नामेंट में देश की 16 टीमें भाग ले रही हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। लीजिए सुनिए उर्दू प्रोग्राम कहकशां। ये कार्यक्रम गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम आबशारी गजल।

दोस्तों, अभी आप गुलूकार गणेश दत्त जोशी की जादुई आवाज में गजल समात फरमा रहे थे और कलाम था बहादुर शाह जफर का। सामेन, अंग्रेजों से मुहायदा हो जाने के कुछ ही दिनों बाद 1857 का हंगामा बरपा हो गया, जिसकी कयादत दिल्ली में शहजादा मुगल ने की। अंग्रेजों ने बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली में हंगामा कर रहे बागियों का साथ देने और आजादी की तहरीक की हिमायत करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। 19 मार्च 1858 को अदालत ने बहादुर शाह को उनके तमाम जराइम का कसूरवार ठहराया। 7 अक्टूबर 1858 को साबिक शहंशाह बहादुर शाह जफर ने दिल्ली को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया और रंगून में जिला वतनी के दिन गुजारते हुए 7 नवंबर 1862 को सुबह 5 बजे इस दारे फानी को अलविदा कहा। एक शेर में वो कहते हैं, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। बहादुर शाह जफर सिर्फ आखिरी मुगल बादशाह ही नहीं थे, बल्कि वो उर्दू शायरी में दाखली एहसासात, दर्द कुर्ब और तसव्वुफ के एक इंतहाई मोतबर और बुलंद पाया शायर थे। उनकी शायराना अजमत का असल राज उनके लहजे की सच्चाई, बेसाख्तगी और दर्द की वो शिद्दत है जो आज भी पढ़ने वालों की आंखें नम कर देती है। क्योंकि जफर की शायरी महज तखय्युलाती नहीं, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी के तल्ख हकायक और बर्रे सगीर की तहजीबी शिकस्त का नूहा है। वो अपने कलाम में दुख, हसरत, बेबसी और महरूमी को इस सादगी और असर आफरीनी के साथ पेश करते हैं कि कारी बराहे रास्त उनके जज्बात से जुड़ जाता है। उनकी गजलों में दाखली एहसासात की गहराई उनको अपने हम असरों में नुमाया करती है। उनका ये शेर उनके दर्द की पहचान बन चुका है। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ।

दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। जफर की शायरी में अफसरदगी के असबाब खारजी हालात में तलाश किए जा सकते हैं। उनकी शायरी से एक ऐसा किरदार उभरता है जिसकी हर सांस में गम की लहरें पोशीदा हैं। वो कहते हैं, शमा जलती है पर इस तरह कहाँ जलती है, शमा जलती है पर इस तरह कहाँ जलती है, हड्डी हड्डी मेरी ए सोज़े नेहा जलती है। जफर की शायरी का दूसरा अहम हिस्सा हुस्न व इश्क के मौजूआत पर मबनी है। जफर ने गजल की मुस्तहकम रिवायत को नहायत सलीके और फनकारी के साथ बरता है। उनकी इश्किया शायरी में तगज़ुल की चाशनी भी जगह जगह मौजूद है। वो कहते हैं, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र व करार, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र व करार, बेकरारी तुझे ए दिल कभी ऐसी तो न थी,

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम कहकशां। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।
1: कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल
2: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
0: डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। संग्रहालय के अंतर्गत अब हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक जंग लगी तलवार की 12वीं कड़ी।
3: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना बलबीर स्वामी शास्त्री जी को अवगत कराता है कि जल्द ही अगर कुछ न किया गया तो मजदूर हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। शास्त्री जी हड़ताली मजदूरों का पक्ष लेकर ठाकुर साहब से बात करते हैं लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल पाता। हड़ताल जारी रहती है। बसुमती नारायणी से मुंशीगंज वालों द्वारा अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना सुनाती है। रोटी के लिए लड़ रहे जानवरों से हड़ताली मजदूर का एक भूखा बच्चा रोटी छीनने जाता है तो जानवर उस पर हमला करके उसे मार डालते हैं। इससे दलितों की बैठक में दहशत फैल जाती है। यूनियन का सचिव कालूराम नारायणी से मिलता है और उसे ठाकुर साहब के कपड़े धोने के काम पर वापस आने के लिए कहता है। नारायणी सोचकर जवाब देने की बात कहकर उसे टाल देती है। हड़ताली मजदूरों का जुलूस नारे लगाते हुए आगे बढ़ता है। यशवंत को रोता हुआ भृगु मिलता है। भृगु बताता है कि उसकी लड़की पार्वती भाग गई है। ये सुनकर यशवंत चौंक जाता है। अब

0: देख प्रभु, चुप हो जा और सारी बात मुझे तू साफ साफ बता, शायद मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं। भृगु,
1: मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे यशवंत, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं।
0: अरे धैर्य रख, हिम्मत से काम ले भृगु, हिम्मत से काम ले।
1: मेरा धैर्य टूट चुका है, हिम्मत जवाब दे चुकी है।
0: हाँ?
1: जिसके घर की आबरू चली जाए, घर की जवान लड़की किसी गैर के साथ भाग जाए, वो क्या मुंह लेकर जिएगा, क्या मुंह लेकर।
0: लेकिन
1: मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। साई नदी में कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगा, जान दे दूंगा मैं अपनी।
2: रुक जा भृगु, भृगु रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा भृगु, भगवान के लिए रुक जा।
1: मैं साई नदी की गोद में समाने जा रहा हूँ, तू वापस लौट जा यशवंत।
2: तुझे तेरी माँ वसुमती काकी की सौगंध भृगु, माँ विंध्यवासिनी की कसम, रुक जा भृगु, रुक जा।
0: रुक जा भृगु, रुक जा। देख

0: मुझ पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। पहले पहले तो ये बता कि ये सब हुआ कब?
1: कल शाम को।
0: किसके साथ गई?
1: पेट की भूख मिटाने के लिए पीस वर्करों के पास जाया करती थी।
0: हाँ,
1: उनसे खाना मांगती थी, मगर कल शाम को

0: पूछा तो पता लगा कि राजा राम और पार्वती को आखिरी बार कल शाम स्टेशन पर देखा गया था।
1: इसका मतलब दोनों कल शाम वाली पैसेंजर ट्रेन से निकल गए। अब भृगु, तूने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई क्या?
0: नहीं भाई।
1: मुझे तो लगता है कि वर्क साइट पर गश्त लगाने वाले कांस्टेबलों का भी इसमें हाथ होगा। पुलिस चौकी में जाकर रिपोर्ट लिखानी होगी। पुलिस पार्वती को जरूर ढूंढ निकालेगी और इस राजा राम का अपराध साबित होगा और उसे सजा जरूर मिलेगी। भिगू,
0: अपराध राजा राम का नहीं, तुम्हारी यूनियन का है। हा? यूनियन के नेताओं का है।
1: ये तू क्या कह रहा है भिगू? अरे होश में तो है तू?
0: नहीं हूं मैं होश में। तुम्हारे नारे सुन सुनकर मेरे कान पड़ गए हैं। तुम लोग हड़ताल करते हो, घर में औरतें और बच्चे भूखे हैं, और तुम्हारी यूनियन?
1: लेकिन भृगु,
0: यूनियन के नेता खलासी लंगर पर बैठकर नशा करते हैं और नशा करके सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा महान काम कर रहे हैं। अरे तुम्हारी यूनियन के किसी नेता में त्याग की भावना नहीं है।
1: अरे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती भृगु, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। देख, सब इंसान एक जैसे नहीं होते।
0: बिल्कुल ठीक कहा तूने, सब इंसान एक जैसे नहीं होते। हम लोग सारी जिंदगी कंपनी का काम करते करते बिता देते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा दूसरों की चूठन खाने वाले जानवरों की तरह दुत्कार दिए जाते हैं।
1: अब
0: और अंत में परमानेंट होने की आस लिए इस दुनिया से विदा हो जाते हैं।
1: अरे भृगु, हमारी हड़ताल का मकसद यही है कि हम लोगों के साथ ये भेदभाव खत्म हो, इंसान बराबर हो, कानून सबके लिए समान हो। लेकिन भृगु, ऐसा तब होगा जब हम सब मिलकर यूनियन का साथ देंगे, अपनी एकता को मजबूत करेंगे, मिलजुल कर एक नई क्रांति को जन्म देंगे तब।
0: खामोश यशवंत खामोश, तुम्हारी यूनियन की वजह से हमारे घर की लड़की भाग गई। आने वाले दिनों में और खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगी।
1: अरे भृगु,
0: तुम लोगों की देह में वीर भगत सिंह जैसा खून नहीं है। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते।

0: ठाकुर साहब बीमार क्या हुए, हमारा पीना पिलाना मौज मस्ती का काम सब रुक गया।
1: बोतल का इंतजाम तो मैंने कर लिया।
0: अरे बाप मेरे भाई, क्या बात है, पर तू इसे लाया कहाँ से?
1: अरे वो कंपनी का पुराना टायर बेचकर इंतजाम किया इस बोतल का।
0: लेकिन बाबू भैया, बोतल के साथ जब तक अच्छा खाने का सामान न हो, तब तक पीने का मजा नहीं आता।
1: कह तो तू ठीक रहा है रामू, पर अब खाने का इंतजाम कहाँ से करें? अरे जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची।
0: अरे एक रास्ता है बाबू, एक रास्ता है मेरे भाई।
1: तो बता ना जल्दी से वो रास्ता।
0: क्यों ना हम कंपनी के भंडार में रखी हुई जिलेटिन की छड़ों की चोरी करें, है? और उन छड़ों का विस्फोट हम साई नदी में करें, बहुत सी मछलियां मर जाएंगी और उन्हें भून कर खाने का मजा आ जाएगा।
1: रामू, अगर चोरी करते हुए पकड़े गए तो?
0: अरे उसकी चिंता मत कर, स्टोर कीपर मेरी जान पहचान का है।
1: अच्छा,
0: अरे पैग दो पैग उसे भी पिला दे।
2: अरे भाई सुनो, ठाकुर साहब से कहो कि राधे श्याम उनसे मिलना चाहता है।
3: कौन राधे श्याम?
2: लेबर इंस्पेक्टर का सहायक।
3: अच्छा अच्छा, आप अंदर जा सकते हैं, ठाकुर साहब आपका ही इंतजार कर रहे हैं।
2: नमस्कार ठाकुर साहब।
4: नमस्कार।
2: कैसी तबीयत है ठाकुर साहब?
4: पहले से बेहतर है, आओ बैठो।
2: माफ करना, मैं जरा जल्दी में हूँ, आपका आदेश मिल

0: आपके दर्शन करने चला आया।
1: अच्छा,
0: रामू मामू कह रहे थे कि आपको मुझसे जरूरी काम है।
2: अरे भाई, तुम तो जानते ही हो कि कंपनी के मजदूरों की एक महीने से हड़ताल चल रही है।
0: और सुना है इस हड़ताल की चर्चा लखनऊ होते हुए दिल्ली तक पहुंच चुकी है।
2: भाई यही तो समस्या है, कंपनी पर लगातार दबाव आ रहा है कि मजदूरों के साथ जल्दी से जल्दी समझौता किया जाए। तुम लेबर इंस्पेक्टर के सहायक हो, घुटे हुए हो, तुम ही बताओ कि क्या किया जा सकता।
0: मजदूरों की यूनियन का सरपरस्त लोकल लीडर शास्त्री है ना,
2: उसका नाम ललो मेरे सामने। उसी की वजह से तो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा।
0: मेरी मानो तो उस शास्त्री को खरीद लो, समझो कि हड़ताल की समस्या से छुटकारा मिल गया।
2: अरे राधे श्याम, वो बिकने वाला नहीं है, नहीं तो कंपनी उसे कब का खरीद चुकी होती।
0: ठाकुर साहब, पीतल के भाव सोना बिकते हुए देखा है कभी?
2: नहीं तो।
0: लेकिन आपने यही करने की कोशिश की है, आप थैली का मुंह खोलिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए।
2: क्या तुम शास्त्री को रुपये के सामने झुका सकते हो?
0: लाठ ठपकाते दौड़ा आएगा शास्त्री। हाँ, मेरी कमीशन देना मत भूलना।
2: अरे भाई तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी कमीशन तुम्हें पहले ही मिल जाएगी।
0: ठीक है ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अभी बहुत से काम करने हैं मुझे।
2: हाँ।

0: बेटा?
1: बापू, मछली खा खा कर मन ऊब गया है, आज तो साग रोटी खाने का मन कर रहा है।
0: अरे जगन्नाथ, मेरा मेरा राजा बेटा। देख बेटा, दलितों की बैरक में 20 दिनों से किसी ने भी अन्न का स्वाद नहीं चखा है। बेटा, लोग तो जंगली फल और पेड़ के पत्ते चबा चबा कर पेट भर रहे हैं। एक बेटा तू है जो साई पर जाकर मछलियां पकड़ लाता है, नहीं तो जगन्नाथ हम भी पत्ते चबाने पर विवश हो जाते। बेटा
1: नहीं बापू, आज तो मैं रोटी या भात ही खाऊंगा।
0: नहीं नहीं नहीं जगन्नाथ, बेटा जिद नहीं करते।
1: नहीं बापू, मछली खा खा कर मेरा पेट खराब हो गया है।
0: जगन्नाथ जगन्नाथ, तू तो मेरा राजा बेटा है। देख बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे कल साग रोटी जरूर खिलाऊंगा।
1: सच बापू?
0: हाँ बिल्कुल सच।
1: वादा?
0: अरे वादा है बेटा।
1: तो बापू, मैं मछली पकड़ने जाऊं?
0: हाँ हाँ जा बेटा जा।
1: कल साग रोटी खाने को मिलेगी, कल साग

0: या बामू।
1: हाँ रामू।
0: साई नदी के तट पर तो हम आ गए। अब हमें पानी में जिलेटिन की छड़का विस्फोट कर देना चाहिए।
1: रुक। हमने चारों तरफ देख लिए। कोई आसपास है तो नहीं?
0: हाँ देखता हूँ।
1: कहीं ऐसा नहीं हो कि हम डर जाए और जिलेटिन चुराने के आरोप में हमें जेल की हवा खानी पड़े।
0: अरे कोई नहीं है, चल फटाफट कर दे विस्फोट।
1: कर दो।
0: भैया बाबू भाई, मैंने किसी बच्चे की चीख सुनी है भाई।

0: क्या हुआ क्या हुआ, ये विस्फोट कैसा था?
1: मैंने भी किसी बच्चे की चीख सुनी थी, किसका बच्चा होगा वो?
2: हाँ, जरूर ये हड़तालियों की कारस्तानी होगी।
3: हाँ, हाँ, उन्हीं का काम होगा ये। अरे अरे देखो तो, अरे यहाँ तो जगन्नाथ की लाश पड़ी है। तो क्या वो चीख इसी की थी? अरे बेटा जगन्नाथ।

0: लीजू, लीजू।
1: क्या बात है काका?
0: अरे जल्दी कर, मेरे पीछे आ।
1: माफ करना काका, आज मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लगी हुई है, अभी मैं कहीं नहीं चल सकता।
2: अरे सिद्ध ना कर लीजू, तो इसी वक्त हमारे साथ चल।
1: क्या बात है यशवंत, तुम लोगों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों है?
2: अरे तू हमारे साथ चल, रास्ते में हम तुझे सब बता देंगे।
1: लगता है कोई कोई गंभीर बात है। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलता हूँ।
2: अपना जी कड़ा कर ले लीचू, अपना जी कड़ा कर ले।
1: अरे बात क्या है काका, आप लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं है?
2: अरे धीरज रख लीचू भाई, थोड़ी देर में तेरी समझ में सब आ जाएगा, बस तू हमारे साथ चल।
1: चल चल चल चल चल।

0: अरे कोई बोलता क्यों नहीं बोलता है मेरी जगन्नाथ को क्या हुआ है? अरे क्या हुआ जगन्नाथ?
1: अरे तेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा लिचू में।
0: तू झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अरे मेरा बेटा मर नहीं सकता, मर नहीं सकता, नहीं मर सकता मेरा बेटा। मेरा बेटा तो साग सब्जी खाएगा। उठ उठ बेटा उठ, चल चल चल चल घर चल घर चल। मैं तुझे साग रोटी खिलाऊंगा, दाल भात
2: खिलाऊंगा।
1: अपने आप को
2: क्या हो गया रे लिचू? हिम्मत से काम ले लिचू,
1: अपने आप को संभाल लिचू।

0: सुना जी, कैसी तबीयत है आपकी?
1: नारायण, जिंदगी से निराश हो चुका हूं मैं। अब तो भगवान से यही दुआ मांगता हूँ कि वो मुझे
0: बस बस मत ज्यादा बोलिए, बोलने से आपको तकलीफ होती है, खांसी भी आती है। जरा हिम्मत करके मुन्ने का ख्याल रखना, मैं भी आती हूँ।
1: नारायणी, तो कहीं जा रही है?
0: जी, मेरी मन्नतों के बाद अस्पताल में सफाई का काम मिला है। अब मुन्ना दूध के लिए नहीं रोएगा, आपका इलाज भी हो जाएगा।
1: नारायणी, तो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है तू। अरे भगवान तेरी जैसी पत्नी सभी को दे, सभी को दे।
0: अगर हम पूछे, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी। मैं जा रही हूँ, मुन्ना का ख्याल रखना।
2: दरोगा जी आपसे मिलने आए हैं।
3: दरोगा जी मिलने आए?
2: जी।
3: उन्होंने ये नहीं बताया कि काम क्या है?
2: जी नहीं।
3: ठीक है, अंदर भेज दो।
2: जी बहुत अच्छा। दरोगा जी, ठाकुर साहब आपको बुला रहे हैं।
4: अरे यार, रास्ता दे।
3: आइए आइए दरोगा जी, कैसे आना हुआ?
4: ठाकुर, साई नदी में जिलेटिन का विस्फोट करते हुए पुलिस ने कंपनी के दो मजदूरों को गिरफ्तार किया है।
3: क्या क्या नाम है उन दो मजदूरों का?
4: एक का नाम रामू है और दूसरे का बामू।
3: रामू बामू।

0: तो आप मुझसे क्या चाहते हैं?
1: उन दोनों का कहना है कि वो आपके आदमी हैं, आप उनकी जमानत लेंगे?
0: मैं उनकी जमानत दूंगा? देखिए दरोगा जी, कंपनी के 4,000 मजदूर यहाँ काम करते हैं, क्या उन सबका ठेका मैंने ले रखा है?
1: यानी आप उन दोनों की जमानत देने से इनकार कर रहे हैं, यही ना?
0: जी बिल्कुल ठीक समझा आपने।
1: ठाकुर साहब, पुलिस ने कंपनी की वर्कसाइट की भी तलाशी ली है।
0: पुलिस ने वर्कसाइट की तलाशी ली?
1: जी हाँ।
0: लेकिन वो किस लिए?
1: इसलिए कि रामू और बामू का बयान है कि विस्फोटक गिलेटिन की चोरी उन्होंने वहीं से की थी।
0: वो झूठ बोलते हैं दोनों।
1: झूठ वो नहीं, आप बोल रहे हैं ठाकुर साहब।
0: देखिए मुझ पर किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं?
1: आरोप? ठाकुर साहब, पुलिस ने गिलेटिन का सारा भंडार खोजकर सारी विस्फोटक सामग्री अपने कब्जे में ले ली है। वर्क साइट पर भी गैर कानूनी ढंग से विस्फोटक का ढेर लगाने और विस्फोटक की अलग व्यवस्था ना करने के अपराध में कंपनी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और सुनो, जुर्माना ना भरने की स्थिति में आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
0: क्या?
2: शास्त्री जी, कुछ हड़ताली मजदूरों ने विद्रोह कर दिया है। वो लोग हमें जगह जगह तलाश कर रहे हैं, हमें छिप कर रहना पड़ रहा है।
3: तो मैं क्या करूं?
2: आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कंपनी के अधिकारियों से बात कीजिए, इस समस्या का कोई तो समाधान निकालिए।
4: हाँ शास्त्री जी, मजदूरों को अब विश्वास होने लगा है कि हम लोग कंपनी के समझौता पत्र के खिलाफ नहीं जा सकते। मजदूरों ने कसम खाई है कि वो हम यूनियन वालों को साई के बालू में जिंदा दफना देंगे।
3: तो मुझसे क्या चाहते हो तुम?
2: पिछली बार हम लोग आपके साथ कंपनी के अधिकारियों से नहीं मिले थे, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, हमें अधिकारियों से मिलना पड़ेगा।
5: सुनो, तुम लोगों को नेता समझना शर्म की बात है।
2: शर्म की बात?
5: अरे भले ही हड्डियां चूर चूर हो जाएं, देह से मांस सड़कर गिर जाए, लेकिन मजदूरों को दिया हुआ वचन पूरा करना होगा। हड़ताल जारी रखो, समझे तुम?
4: लेकिन शास्त्री जी, अब हमारा मजदूरों के बीच जाना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, अगर उनके हक में हमारे पास कोई फैसला हो तो अलग बात है।
3: हाँ, देखो मैं कुछ दिन के लिए मुंशीगंज से बाहर रहूंगा।
4: जी
3: भाई, तुम लोग तो जानते ही हो कि दूर दूर से उधर डालमऊ की तरफ से भी लोग मुझसे मिलने सलाह लेने आते रहते हैं।
2: हाँ, हाँ। हम लोगों का मार्गदर्शन कीजिए शास्त्री जी, अब हम लोग क्या करें?
3: हाँ, एक काम करो
4: जी,
3: इस बार तुम लोग खुद मिलने जाओ।
2: हम लोग?
3: हाँ हाँ भाई, तुम लोग।
4: ठीक है शास्त्री जी,
2: हम लोग
4: मिलने जाएंगे। चलो बलबीर।
6: माँ,
7: हाँ बेटा,
6: आज मैंने भरपेट खाया।
7: क्या खाया बेटा?
6: कच्चा मांस।
7: क्या?
6: बहुत दिनों का भूखा था ना, इसलिए।
7: क्या कच्चा मांस?
6: हाँ माँ।
7: कहाँ मिला?
6: वो मुंशीगंज के कसाई है ना।
7: हाँ?
6: वो ही फेंक कर गए थे।
7: बेटा थोड़ा मांस मेरे लिए भी ले आता तो मेरा भी पेट भर जाता।
6: क्या करता माँ, वहाँ इतने सारे भूखे लड़के थे कि पल भर में मिट्टी में सना मांस चट कर गए।
7: बेटा कल तू बाकी लड़कों से पहले पहुँच जाना। हाँ, और जितना भी मिले सब उठा लाना, कम से कम 2-1 दिन के खाने का तो इंतजाम हो जाएगा।
6: हाँ,
7: आगे भगवान मालिक है।

0: बोला, बोल बेटा, तो चुटकी हो गया है। हे भगवान, अरे इसके तो हाथ पैर भी नहीं हिल रहे। हे भगवान,
1: अरे क्या हुआ? ये लड़का जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है?
0: देखिए यशवंत बाबू, मेरे बेटे को जाने क्या हो गया है।
1: एक मिनट, अब अरे इसकी तो धड़कन रुक गई है। इसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी
0: है। नहीं नहीं, ऐसा लग गए ये नहीं हो सकता। अब बच्चा
1: देखो, रोने से अब कोई लाभ नहीं। अब इसे जलाने का इंतजाम करो।
0: नहीं,
1: लेकिन जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत होगी। लकड़ी के लिए पैसे कहाँ से हैं? ऐसा करो, इसे साई नदी में ही बहा दो।

0: तू आ गई नारायणी
1: जी।
0: क्या बात है, आज बड़ी देर लगा दी आने में।
1: डॉक्टर साहब, मेरे पति की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई।
0: ठीक है कोई बात नहीं, तो ऐसा कर मेरे साथ आ
1: जी।
0: आज बहुत काम है तेरे लिए, सारे अस्पताल की अच्छी तरह सफाई करनी है तुझे, समझ गई तू?
1: जी जी।
0: चल आ इधर आ।
1: जी चलिए। ये क्या डॉक्टर साहब, इतने सारे बीमार बच्चे, ये सारे बच्चे तो दलित बैरक के हैं ना?
0: हाँ, इन बच्चों ने कसाईयों द्वारा फेंका गया सड़ा कच्चा मांस खा लिया है, इसी से इनकी ये हालत हुई है।
1: ओह,
0: देख नहीं रही, उल्टी कर करके सारे अस्पताल का फर्श गंदा कर दिया है। देख, ये सारे फर्श की सफाई तुझे ही करनी है।
1: डॉक्टर साहब, ये बच्चे बच तो जाएंगे ना?
0: देख नारायणी, कई तो मर चुके हैं, और जो जो बचे हैं ना,
1: हाँ।
0: उनका मरना भी तय है।
1: क्या?
0: हाँ नारायणी।

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से, इसके अंतर्गत आज आपने सुना जंग लगी तलवार। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण।

करीब 188.32 मीटर अर्थात 1513 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन EIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब मीडियम वे पर हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक 5 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, खंडवा जिले के श्री ओंकारेश्वर मंदिर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बदायूं और गुजरात के वडोदरा ग्रामीण में हुई अलग अलग दुर्घटनाओं में जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनकी सहानुभूति उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोकसभा सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने राज्यसभा सांसद संजय राउत के साथ आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। यह मुलाकात पार्टी के कुछ सांसदों के पार्टी बदलने की राजनीतिक अटकलों के बीच हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 के भव्य और दिव्य आयोजन के लिए हजारों करोड़ के विकास कार्य तेजी से पूर्ण किए जा रहे हैं। उज्जैन, इंदौर और आसपास के सभी जिलों में विकास को गति मिल रही है। ओबीसी आरक्षण की सुनवाई जबलपुर उच्च न्यायालय में नए सिरे से होगी। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस भगवती प्रसाद शर्मा की नई डिवीजन बेंच ने यह स्पष्ट किया है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, छतरपुर समेत 34 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। और अंडर 17 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए पहली बार युवा लीग मुकाबले 18 जुलाई से छत्तीसगढ़ में होंगे। फाइनल मुकाबला 29 जुलाई को होगा। टूर्नामेंट में देश की 16 टीमें भाग ले रही हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जो इस समय आपके पास भी है, मेरे पास भी है और दुनिया के हर इंसान के पास है। लेकिन अजीब बात यह है कि हम और आप उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। उसे बचाने के लिए कोई तिजोरी नहीं बनती, न उसे खरीदने के लिए कोई बाजार होता और ना ही उसे कमाने के लिए कोई नौकरी मिलती। और सबसे बड़ी बात, एक बार वह हमसे दूर चली जाए तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी उसे वापस नहीं ला सकता। और यही कारण है कि जीवन की सबसे महंगी चीजें अक्सर वे नहीं होती जिन्हें हम खरीदते हैं, बल्कि वे होती हैं जिन्हें हम सहजता से पाकर उनकी कीमत भूल जाते हैं। तो आइए आज कुछ मिनट इसी विषय पर विचार करें, जीवन में सबसे महंगी चीज क्या है जिसे हम अक्सर मुफ्त समझ लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे समय, कुछ कहेंगे स्वास्थ्य, कुछ कहेंगे प्यार, विश्वास या रिश्ते, लेकिन सच तो यह है कि सभी अनमोल हैं।

लेकिन इन सब के पीछे भी एक और चीज छिपी है जो इन्हें अर्थ देती है, और वह है किसी का ध्यान और उपस्थिति। श्रोताओं, कहते हैं कि समय, रिश्ते और अपनों की मौजूदगी की कीमत तब समझ आती है जब वे हमारे पास नहीं रहते। तो दोस्तों, आज ही इसी चर्चा को शुरू करने से पहले एक ऐसे गीत को सुने जो हमें याद दिलाता है कि जीवन का हर पल कितना अनमोल है।

तो श्रोताओं, अब बात करते हैं आज के विषय की। आज के युग में हम पैसे की कीमत जानते हैं, इसलिए खर्च करने से पहले सोचते हैं। लेकिन किसी का समय, किसी का विश्वास या किसी का ध्यान हम बिना सोचे समझे ही खर्च कर देते हैं। ज़रा सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपको ध्यान से सुनता है, आपकी बातें समझने की कोशिश करता है, आपके सुख दुख में शामिल होता है, तो वह वास्तव में आपको अपने जीवन का एक हिस्सा दे रहा होता है। वह अपने जीवन के वे क्षण आपको सौंप रहा होता है जो कभी लौट कर नहीं आएंगे। एक बूढ़े पिता अपने बेटे का घंटों इंतज़ार करते हैं। बेटा सोचता है कि उसने अपने पिता के लिए बहुत कुछ किया है, अच्छा घर दिया, सुविधाएं दी, पैसे दिए, लेकिन पिता को शायद केवल आधा घंटा ही चाहिए था, जिसमें बेटा बिना मोबाइल देखे उनके साथ बैठकर बातें करता। वह आधा घंटा किसी भी महंगे उपहार से अधिक मूल्यवान था। इसी तरह हम अक्सर अपने दोस्तों, परिवारों और प्रियजनों को यह कहकर टाल देते हैं कि अभी समय नहीं है। हमें लगता है कि वो तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सच यह भी है कि कोई भी हमेशा नहीं रहता। समय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह हमें हर दिन बराबर मात्रा में मिलता है, लेकिन उसकी कीमत हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। एक विद्यार्थी के लिए परीक्षा से पहले का वह आधा घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक मरीज के लिए जीवन का एक दिन अनमोल होता है, और किसी माँ के लिए अपने बच्चे के बचपन का एक पल पूरी दुनिया से अधिक कीमती होता है। हम अक्सर स्वास्थ्य को कभी मुफ्त समझ लेते हैं। जब तक शरीर स्वस्थ रहता है, हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। देर रात तक जागना, गलत खान पान, तनाव और लापरवाही को सामान्य मान लेते हैं। लेकिन जब स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, तब समझ आता है कि अस्पताल के एक बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति के लिए स्वस्थ जीवन कितना बड़ा धन है। इसी प्रकार विश्वास भी जीवन की सबसे महंगी चीजों में से एक है। विश्वास बनने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन टूटने में केवल कुछ क्षण। फिर भी लोग अक्सर झूठ, स्वार्थ और अहंकार के कारण उसे खो देते हैं। बाद में उन्हें एहसास होता है कि खोया हुआ विश्वास वापस पाना कितना कठिन है। श्रोताओं, एक और चीज है जिसे हम अक्सर मुफ्त समझ लेते हैं, और वह है अपने प्रिय लोगों की मौजूदगी। हम सोचते हैं कि माँ हमेशा रहेंगी, पिता हमेशा रहेंगे, दोस्त हमेशा मिलेंगे, लेकिन जीवन का नियम है परिवर्तन। एक दिन ऐसा आता है जब फोन की संपर्क सूची में नंबर तो रहते हैं, लेकिन उन नंबरों से आवाज़ नहीं आती। तब समझ में आता है कि सबसे बड़ी संपत्ति बैंक बैलेंस नहीं थी, बल्कि वे लोग थे जो हमारे जीवन में मौजूद थे। और इसी एहसास को बहुत खूबसूरती से बयां करती हुई कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। वक्त की कीमत क्या है, ये वक्त ही सिखाता है। जो पल बीत जाता है, वो लौट कर कहाँ आता है। हम समझते रहे उसे मुफ्त की सौगात, मगर वही तो था जीवन का सबसे बड़ा साथ। और इसलिए जीवन हमें बार बार एक ही पाठ सिखाता है कि जिस चीज़ को हम हमेशा सामान्य समझ लेते हैं, वही सबसे असाधारण होती है। अब मैं अपनी ही बात को एक अलग और शायद थोड़ी असहज लगने वाली कल्पना के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। कल्पना कीजिए कि आज रात सोने से पहले आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे। दरवाज़ा खोलने पर सामने जीवन खड़ा हो और कहे, मैं तुम्हें कल सुबह फिर से वही सब दूंगा जिसके

लिए तुम आज आभारी हो। अब सोचिए कल सुबह आपके पास क्या बचेगा, क्या आपका परिवार रहेगा, क्या आपका स्वास्थ्य रहेगा, क्या आपके दोस्त रहेंगे या क्या आपका समय रहेगा, या फिर केवल वही चीजें बचेंगी जिनके लिए आपने आज धन्यवाद कहा था। यदि यह सच हो जाए तो शायद आज रात हम अपने फोन पर कम और अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताएंगे। शायद हम शिकायतें कम और कृतज्ञता अधिक व्यक्त करेंगे। शायद हम यह समझ पाएंगे कि जीवन की सबसे महंगी चीजें कभी खरीदी नहीं जाती, वे केवल महसूस की जाती हैं। तो श्रोताओं, अब समय है एक छोटे से संगीत विराम का। सुनिए यह गीत और फिर हम लौटते हैं अपनी बातचीत के साथ।

गीत के इस छोटे से विराम के बाद फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे थे उस कला की जो रिश्तों को मजबूत बनाती है। अक्सर दोस्तों, जब हम जीवन की सबसे महंगी चीजों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में धन, संपत्ति या कीमती वस्तुओं का विचार आता है। लेकिन सच तो यह है कि जीवन की कुछ सबसे अनमोल चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम बिना किसी मूल्य के प्राप्त करते हैं और इसलिए उनकी कीमत भी अक्सर नहीं समझ पाते। समय, विश्वास, रिश्ते और अपनापन, ये सब ऐसे खजाने हैं जिन्हें हम कई बार मुफ्त समझ लेते हैं। इन्हीं अनमोल उपहारों में एक और चीज है जो आज के दौर में धीरे धीरे दुर्लभ होती जा रही है और वह है किसी को सुनना। सुनना केवल कानों से शब्द ग्रहण करना नहीं बल्कि सामने वाले की भावनाओं, अनुभवों और विचारों को समझना भी है। शायद यही कारण है कि कहा जाता है हर जवाब से पहले एक सुनवाई जरूरी है। तो आइए आज बात करते हैं सुनने की उस कला की जो न केवल रिश्तों को मजबूत बल्कि जीवन को भी अधिक संवेदनशील और सुंदर बनाती है। जरा कल्पना कीजिए, आप किसी से अपने मन की बात कह रहे हैं। शायद आप किसी परेशानी में हैं या फिर बस चाहते हैं कि कोई आपको समझे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपकी बात पूरी होने से पहले ही सलाह देने लगे, अपनी कहानी सुनाने लगे या फिर मोबाइल में व्यस्त हो जाए। ऐसे में आपको कैसा लगेगा? शायद यही कि आपकी बात सुनी नहीं गई, केवल शब्दों को सुना गया। आज के समय में बोलने वालों की कमी नहीं है। हर किसी के पास अपनी राय है, अपने तर्क हैं, अपने अनुभव हैं। लेकिन जो चीज धीरे धीरे दुर्लभ होती जा रही है वह है सुनने की कला। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। बातचीत शुरू होते ही हमारा मन जवाब तैयार करने लगता है। सामने वाला क्या कह रहा है उससे ज्यादा हमें इस बात की चिंता रहती है कि हम क्या कहेंगे। परिणाम यह होता है कि शब्द सुनाई देते हैं लेकिन भावनाएं अनसुनी रह जाती हैं। एक दिलचस्प बात है, प्रकृति ने भी हमें दो कान और एक मुंह दिया है। शायद यह संकेत है कि हमें बोलने से दो गुना ज्यादा सुनना चाहिए। लेकिन व्यवहार में अक्सर इसका उल्टा हो जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को सलाह की नहीं केवल एक श्रोता की आवश्यकता होती है। जब कोई अपना दुख बांटता है तो वह हमेशा समाधान नहीं मांग रहा होता। कई बार वह केवल यह चाहता है कि कोई उसकी भावनाओं को समझे। और सच मानिए, किसी को ध्यान से सुन लेना भी एक प्रकार की मदद है। दोस्तों, आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ जिसने मुझे भी सुनने का असली मतलब समझाया। एक दिन कॉलेज में हमारी क्लास चल रही थी, सर ने एक सवाल पूछा और मुझे लगा कि इसका जवाब तो मुझे अच्छी तरह पता है। मैंने तुरंत हाथ उठा दिया, लेकिन जैसे ही मैं बोलने लगी सर मुस्कुराए और बोले, प्रश्न पूरा तो सुन लो। पूरी क्लास हंसने लगी और मैं भी थोड़ा संकोच में पड़ गई। दरअसल मैंने सवाल का आधा हिस्सा ही सुना था और जवाब देने की इतनी जल्दी थी कि बाकी बात सुनने का धैर्य ही नहीं रखा। उस दिन की बात तो वही खत्म हो गई, लेकिन सर की एक बात मेरे मन में रह गई। उन्होंने कहा, बहुत से लोग इसलिए गलत नहीं होते क्योंकि उन्हें जानकारी कम होती है, बल्कि इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि वे सुनते कम हैं। उसके बाद मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। मुझे महसूस हुआ कि कई बार घर में, दोस्तों के बीच या कॉलेज में भी सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही मैं अपनी राय बताने लगती थी। यानी मैं सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुन रही थी। मुझे धीरे धीरे समझ आया कि सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है, यह धैर्य का काम है, सम्मान का काम है। जब हम किसी को पूरा सुनते हैं तो हम उसे यह एहसास दिलाते हैं कि उसकी बात हमारे लिए कितनी मायने रखती है। और तभी मुझे लगने लगा कि जीवन में अच्छे जवाब देने से पहले अच्छी सुनवाई करना सीखना ज्यादा जरूरी है। इसलिए जवाब देने से पहले सुनिए और सुनने से पहले समझिए। और दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, समय की रफ्तार तो कभी नहीं रुकती, लेकिन उसके बीच बिताए गए प्यार, विश्वास और अपनत्व के पल ही जीवन को अर्थ देते हैं। हमारे अपने कार्यक्रम युववाणी के माध्यम से आपके साथ हमारा भी कुछ ऐसा ही प्यारा सा रिश्ता बन गया है, और यह रिश्ता यूं ही खूबसूरत बना रहे इसका प्रयास हम लोग हमेशा करते रहेंगे। दोस्तों, आज का हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और अब वक्त हो गया है लेने का आपसे विदा। कल नई बातों के साथ और नए गीतों के साथ फिर होगी आपकी हमारी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी प्रगति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आशिक फिल्म का नगमा, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत समीर का है।

दिन संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं ये दिल आशिकाना फिल्म का नगमा। आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं। गीतकार हैं समीर और तर्ज बनाई नदीम श्रवण ने।

ये दिल आशिकाना सिंगा नगमा अभी आप सुन रहे थे। आइए आपको सुनवाते हैं दिल चाहता है फिल्म का नगमा। आवाज है शंकर महादेवन की, गीतकार है जावेद अख्तर, तस बनाई शंकर महादेवन ने। तो आइए सुनते हैं दिल चाहता है फिल्म का ये नगमा।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं दिल फिल्म का ये नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। गीतकार हैं समीर और तर्ज बनाई आनंद मिलंद ने।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक 5 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, खंडवा जिले के श्री ओंकारेश्वर मंदिर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियां में G7 सम्मेलन के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ 2028 के भव्य और दिव्य आयोजन के लिए हजारों करोड़ के विकास कार्य तेजी से पूर्ण किए जा रहे हैं। उज्जैन, इंदौर और आसपास के सभी जिलों में विकास को गति मिल रही है। प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से ठहरा हुआ है। इंडिया ए ने ट्राई नेशन सीरीज के करो या मरो मैच में अफगानिस्तान ए को 101 रन से हरा दिया है। दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में 320 रन का टारगेट चेज कर रही अफगानिस्तान ए 36 ओवर 5 गेंद में 218 रन पर ऑल आउट हो गई। और भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे

0: में पहले बल्लेबाजी करते हुए 403 रन का विशाल लक्ष्य तय किया है। भारत की ओर से शुभमन गिल ने 154 और ईशांत किशन ने 125 रन बनाए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूं। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से

0: सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभदेव से जोड़ा जाता है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है। जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी, आजादी, आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
2: मंगल पांडे।
3: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: बता दीजिए, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी, खुद करनी होगी, खुद करनी होगी, सही कहे।
0: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
2: उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
5: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
4: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
5: नहीं। भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
1: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
5: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
1: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
6: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
7: मंगल पांडे
8: जिंदाबाद,
7: मंगल पांडे
8: जिंदाबाद,
7: इंकलाब
8: जिंदाबाद,
7: इंकलाब
8: जिंदाबाद।
1: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
9: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
1: सारी छावनी में खलबली मच गई।
0: उसके बाद क्या हुआ दादी?
1: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
6: अरेस्ट करो,
9: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे,
4: नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, कोई और करेगा।
0: दादी जी, फिर क्या हुआ?
1: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: उसके बाद क्या हुआ?
1: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
2: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
0: क्या कोई कार्रवाई हुई?
1: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
3: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
1: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
3: इसके बाद क्या हुआ दादी?
1: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
3: अच्छा।
1: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
4: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भइल, जननी के भेंट परान भइल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भइल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
3: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
1: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
3: अच्छा।
1: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तानकर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
6: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
7: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
8: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
7: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
8: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे,

0: देवेंदर को तो आ जाने दो।
1: अच्छा ठीक है, देवेंदर आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
0: अच्छा माँ।
2: माँ
0: लो देवेंदर भी आ गया।
2: दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
1: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
0: ठीक है माँ।
2: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
0: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
2: ये देखो दीदी, ये मारा।
0: देवेंदर चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
2: अरे ये मारा।
0: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
2: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
0: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
2: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
1: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
0: अच्छा माँ, कौन आप लोग? कौन कहिए, किससे मिलना है? अरे
3: हमें अंदर आने दो।
0: अरे क्यों?
4: ए लड़की रास्ते से हट जा।
0: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
3: लड़की ये चाकू देख रही है ना?
4: ज्यादा होशियारी मत दिखा,
0: अरे
4: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
0: हट
4: रास्ते से।
0: क्या हुआ? देखो जल्दी आओ। ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
3: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
0: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
3: ये चाकू देख रही है ना?
0: छोड़ दो, मुझे मत मारो, कुछ मत करो।
5: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
3: जल्दी,
5: याद नहीं कहाँ रखी है, छोड़ दो।
4: बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
5: अरे, अरे मेरे बात को छोड़ो,
0: मेरी माँ को छोड़ो।
3: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
4: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
5: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
0: देवेंदर।
2: हाँ दीदी।
0: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
2: अच्छा, हाँ।
0: पापा को फोन करती हूँ। देवेंदर तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
2: अच्छा।
0: हेलो।
6: हाँ बेटा बोलो।
0: पापा पापा।
6: हाँ बोलो बेटा।
0: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
6: कौन घुसा है?
0: माँ को बहुत मार रहे हैं।
6: अच्छा तुम घबराओ नहीं, नहीं नहीं, तुम ऐसा करो पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
0: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
2: अच्छा।
0: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुसा है, बचाओ।
7: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
8: अरे कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को।
9: वाह वाह वाह,
8: कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
1: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
8: देखो ना सबकी जान
1: बहादुर है मेरी बच्ची।
7: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
10: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
9: नमस्कार। उमंग, उमंग,
7: उमंग। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के मध्य लॉर्ड्स में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल।
11: आकाशवाणी, we now bring you the ball-by-ball commentary of the T20 cricket match to be played between India and Netherlands of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
12: First Ball 20.
13: Having registered a comprehensive 64-run win against Pakistan in their tournament opener, India would be now up against the Netherlands, who gave Bangladesh a run for their money. Hello and welcome to First Ball 20. I am Megha, and joining me in studio as my co-host is Suhas Vedam. As experts, we have former cricketers Colonel Bhup Raj Singh, Vaishali Mathur, and sports journalist Soumitra Bose. Welcome to the show.
14: Thank you.
15: Hello, hi, good evening.
16: Hello, everybody. Yes, as we dive further into this, we'll start with Soumitra Bose, sir. It's been a while since we've seen India so dominant once again. Yes, we had the World Cup already, but dominant in foreign shores, the perfect start for the India campaign?
14: Yes, definitely. A win against Pakistan is always something that gives your morale a huge boost, but it's a World Cup. It's an opportunity, and there are two World Cups happening on either side of the Atlantic.
16: Right.
14: The one on the western side can inspire the one on the eastern side. And when I say that, I think Netherlands have everything to play for, and they can take heart from a country, a small little African country called Cape Verde. So no favorites in this match. World Cup, there are no favorites. I think we should look forward to a great match.
13: Absolutely, and considering the fact that they work so hard to qualify, there's so much really to win as far as the stage is concerned. We're not too far away from the toss, and we've got the two captains in the center, Leeds and Harmanpreet Kaur. We head straight to the toss.
17: And Chandray Fritz is still here with a second game today. Thank you very much. Who has the coin? Harmanpreet's got it.
18: Heads.
17: Better just push you back to this marker here so they can get a nice clean shot at you. What are you going to do and why?
18: We're gonna have a ball first. I think we all we'll get something out of the wicket hopefully, and then chase down their total.
17: A lot of compliments to your team in that first game, pushing Bangladesh really, really close. The first time you're coming up against India, a third ranked team in the world. How are the team feeling?
18: We're super excited for this opportunity. I think playing India is a dream coming true, especially here in Leeds. We're super excited. A little bit nervous, but more excitement.
17: And you've got at least one member of your team who has played domestic cricket in the UK here. What sort of information up here in Headingley have you gleaned from Callis?
18: Yeah, it's good to have her playing domestic cricket here. She gave us a little bit of insights about the pitch, the stadium, and obviously it's her home ground, so we were hoping to see her shine later with the bat.
17: From that first game, have you made any changes?
18: Yeah, we made one change. Mirta is coming in for Sonia.
17: Any reasons behind that change?
18: We're playing an extra pacer and drops a batter.
17: All right, go very, very well today. Great to see your team here.
18: Thank you so much.
17: Harmanpreet, putting runs on the board, how critical is that going to be?
19: I think it's a very great opportunity for us to bat first because it's a little hard condition because of the overcast conditions. But I think we are batting first, and we wanted to challenge ourselves.
17: Coming out of that first game, a convincing win for you. What other things are you looking to better? Because you've got a couple of games against South Africa and Australia following this one, but eyes on the prize today.
19: I think the power play with bat and ball, I think that is something we are really looking forward and hopefully

0: Yeah, they are the one, you know, who is improving every single game, and hopefully, you know, we play our best cricket.
1: Yeah, I saw you guys practicing hard yesterday. All the very best to your team today.
0: Thank you so much.
1: Right, just a reminder of what has happened out here. The Netherlands, under gloomy skies, have won the toss, and they will be bowling first.
2: लीड्स में द नेदरलैंड्स की कप्तान बेबेटा दे लीड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया।
3: जी हाँ बिल्कुल, और क्या ये सही फैसला हो सकता है, क्योंकि सिर्फ सरफेस को नहीं स्काई को भी देखा गया है। हमें बताएंगी मिस माथुर वैशाली, व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ गुड डिसीजन टू बोल फर्स्ट अगेंस्ट इंडिया?
4: मुझे ऐसा लगता है क्योंकि नीदरलैंड के पास उतने अच्छे स्पिनर्स नहीं हैं, एंड देखा गया कि हालांकि इस पिच पे सबसे ज़्यादा विकेट स्पिनर्स को ही मिली हैं, एंड उन्होंने जो चेंज किया है वो है मीडियम पेसर का। एंड अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों पे पहले ही इस पिच के ऊपर वुमेन्स टी ट्वेंटी ब्लास्ट 2026 में अभी हुआ है रिसेंटली, एंड इसमें 26 स्पिनर्स पे बोल्ड विकेट्स मिली है एंड 17 फास्ट बॉलर्स को मिली है। तो मुझे लगता है कि स्पिनर्स को खिलाना ज़्यादा बेटर था, बट यहाँ पे चेंज हुआ है तो बेटर हमारी इंडियन टीम के लिए बहुत बेटर है ये, और हमारी शेफाली वर्मा के लिए एक महत्वपूर्ण चांस है क्योंकि वो मीडियम पेसर को जैसे हिट करती है हम सब बखूबी जानते हैं। एंड उसके बाद जब हमारी जेनिमा आती है तो वो किसी को टिकने नहीं देती है बॉलर को, और वहाँ उसके बाद जो बारी संभालती है हमारी हरमनप्रीत कौर, तो वहाँ तक नौबत आनी नहीं चाहिए भारतीय टीम की, क्योंकि ऊपर के ही बैटर आज इस लाइनअप को खत्म करके आ सकते हैं। और इस पिच पे खासियत और है, यहाँ का जो स्कोर अगर हम देखें तो 150 तक गया है।
3: राइट, बट वुड दैट बी इनफ इज अ बिगर क्वेश्चन नाउ दैट इंडिया बैटिंग फर्स्ट। कर्नल भूपराज जी, India has also made a change, but that's in the bowling department. Arundhati Reddy is giving way to Nandini Sharma to be in the side. The young Nandini Sharma getting World Cup experience would be absolutely magnificent to watch. Having said that, India batting first. Do you also have a number in mind looking at that surface?
5: Actually, the last match we won very easily. But there were two concerns, you know. The first, as far as the batting is concerned, Shefali didn't score runs, nor did Jemima.
3: Right.
5: So it is good that we are batting first. At least both of them will get a good hit and get some confidence back before the next match against South Africa,
3: which is the bigger one.
5: Yeah, that is the main, you know, sort of knockout match. Whosoever wins that match goes into the semi-final. That's where things stand now. Now, as far as the change in the bowling is concerned, a second concern in the last match was that the fast bowlers did not bowl well. So there is a change in the fast bowlers, but I would have expected three fast bowlers to play in this match, keeping the wicket in mind.
2: Absolutely. और इस बीच हमारे साथ हमारे श्रोता भी जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 011-2342-1084-2342-1085। और इसके साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार। जी एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए। एक तो तब्दीली हो चुकी है, नंदिनी आई है, WPL में काफी प्रभावित किया था। उसके अलावा शेफाली का ये जो साल रहा है, पिछले साल बहुत कंसिस्टेंट थी T20s में, लेकिन इस साल कंसिस्टेंसी मिसिंग रही है।
6: ठीक है, बट शी इज अ प्रूवन कस्टमर, काफी रन्स बना चुकी है तो, एंड शी इज गॉट क्रेडिबिलिटी और बैकग्राउंड उनका जो है। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता कि आप एक सीजन रन नहीं किया कि उसको बिठा दो, और ऐसा नहीं होता। सो कंसिस्टेंसी, द सिलेक्टर्स हैव शोन कंसिस्टेंसी, टीम मैनेजमेंट ने कंसिस्टेंसी दिखाई, एंड देयर आर सो मेनी मैचेस और क्रिकेटर्स नीड टू बी बैक्ड, स्पेशली समबडी लाइक शेफाली। दैट्स व्हाई द टॉस इज इंपॉर्टेंट, इंडिया गोइंग टू बैट, बिग टेस्ट, बट अगेन एज हरमनप्रीत सेड, यू हैव टू स्टिक टू योर विकेट एंड प्ले टू द कंडीशंस।
3: Absolutely. And coming back to Vaishali here, now Nandini Sharma will be seeing the ball in hand a little later. You mentioned 150, and you also mentioned that the spinners are the ones who are doing the talking here. So gone are the days where if you talk about England, it's the pacers who raise their collar up?
4: Maybe, but I can say ki यहाँ पे सबसे मेन है दोनों टीमें आज पहला मुकाबला खेल रही है T20 का, एंड इस मुकाबले को हम सेकंड मैच की तरह नहीं, एक जीत के

0: मुकाबले की तरफ देखते हुए नजर देख सकते हैं, क्योंकि हम दोनों टीमें एक दूसरे के प्लेयर्स को नहीं जानती हैं, ओडीआई में खेला है उन्होंने, बट ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जितना स्कोर हमारे बैटर और पार्टनरशिप बनेगी वो हमारे आगे आने वाले मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो साउथ अफ्रीका टीम के साथ आने वाला है। तो यहाँ की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, शेफाली वर्मा का बल्ला चलना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जहमीमा का भी बल्ला चलना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अभी स्मृति का चल रहा है, क्योंकि पार्टनरशिप अगर बनती है तो ही रन आगे हमारे बढ़ते हैं और स्कोरबोर्ड पर दिखते हैं। तो ये अगर नंदिनी शर्मा की बात करें तो नंदिनी एक बहुत अच्छा चांस मिला है उनको खेलने का और रेड्डी की जगह पे उनकी अगर उनकी लास्ट मैच की अगर फील्डिंग की बात करें और बॉलिंग की बात करें तो वो उतनी खास रही नहीं एज कम्पेयर टू आप इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड नंदिनी उस जगह को उस स्थान को बखूबी निभाएंगी। और आज जिस तरह की पिच है तो देखा जाता है कि स्किट भी होता है इस पिच पे, तो वो चीज़ देखने को भी मिल सकती है नंदिनी शर्मा से एंड उसके साथ हमारी जो स्पिनर्स है वो लाइनअप जो है हमारे स्पिनर्स का वो काफ़ी अच्छा है, बॉलिंग स्ट्रेंथ हमारी बहुत अच्छी है, तो ये एक बेनिफिट है हमारी इंडियन टीम के लिए।
1: शेफाली ने पिछले मुकाबले में शुरुआत एक छक्के के साथ की थी, 3 डॉट बॉल खेला और उसके बाद अपना विकेट गवा दिया। हरमनप्रीत ने टॉस पे कहा था कि विकेट ऐसा है कि वक्त दे सकते हैं, विकेट को समझ के बड़े शॉट्स फिर खेलने की कोशिश कर सकते हैं। क्या शेफाली की तरफ से वो अप्रोच आप देखते हैं?
2: देखिए शेफाली की गेम ऐसी है कि वो हर बॉल पे बड़ा शॉट मारने की कोशिश करती है, लेकिन अगर थोड़ा टिक के खेले तो शी कैन गेट अ वेरी बिग स्कोर टुडे।
1: जी बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं, तो जल्दी ही बात करते हैं लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं एंड वी टॉक्ड अबाउट स्मृति मानधना। इनफैक्ट इन द बिल्डअप टू द टूर्नामेंट सौमित्रो, स्मृति लुक लाइक स्ट्रगलिंग बट स्मृति इज नेवर एक्चुअली स्ट्रगलिंग बिकॉज व्हेनेवर इट्स बिग गेम्स स्मृति ब्रिंग्स हर ए गेम।
3: 100 most influential sportspersons of the world, only 2 cricketers to find their place in Time magazine, Smriti Mandana can never go wrong, right? Abhi abhi RCB ko usne tournament champion kiya, ek baar nahi do baar kiya, 17 centuries, you never question her credibility, right? Pedigree, credibility and even last match she got runs, right? It's not that she's out of form. क्योंकि she's the perfect batsman to take the innings forward। और देखिए शेफाली वर्मा को तो हम बात कर रहे हैं कि उनकी ज़रूरत है उनको रन बनाना, conditions को फेस करना, जैसे कर्नल said you can't hit a 6 in every ball, you have to play the ball to its merit। और देखिए I think the Dutch have done the right thing by choosing an extra pacer, so it is they're going to be tested and it's good for us, good for India, because before you need these kind of tests, you need this kind of competition to play the bigger matches.
4: Indeed. And Mr. Bhupendra, Colonel Bhupendra, we were mentioning that Yastika is also in now. The fact that Yastika is in as a batter, even though Richa might be seen with the gloves rather than Yastika behind the wickets, does it also tell you that India is looking at the next opponent too, which is South Africa, and want to be better prepared for that? Because Bharti Fulmali got just one opportunity but wasn't enough on that particular occasion. Little harsh on her, or you feel Yastika is the right move ahead because of more experience, given that there are bigger games coming up?
2: Look, if you compare Bharti and Yastika, what you have to see is what position they are going to play. Yastika is playing at number 3. And if you feel that she can fit into number 3, then it is a good idea to play Yastika Bhatia, because she has these shots to play in the power play to hit over right. The fielders, and she can get the runs. But if she has to play at number 5 or number 6, it is better to play Bharti, because she is actually tuned to play at 5 and 6.
4: Right, so it depends completely on India's approach.
2: As to where the position they are going to play.
4: Dekhte hain, and waqt ho chuka hai ek aur caller lene ka jo intezar kar rahe hain. Ji haan. नमस्कार, बताइए विपिन जी। अगर शेफाली वर्मा चल जाए तो पहले पहले बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए एंड बहुत ही सही सवाल था। अगर शेफाली वर्मा चल जाए तो मिस माथुर आप बताइए,

0: अगर बात करूं उनकी दूसरी विकेट की, तो उन्होंने जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट मैच में उन्होंने स्वीप स्क्वायर लेग रखा था और वहां पे स्मृति मंदाना ने कैच किया था. दैट वाज मतलब जो एक थॉट होता है वो उनका वो कंप्लीट हुआ वहां पे. एंड वो माइंड में जो सोचती है वैसा वो अकॉर्डिंग टू फील्ड लगाती है और वही बॉल डालती है. ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर की खासियत है जो हमने लास्ट मैच में देखा भी है. और मैं होप करूंगी कि आज के मैच में भी पांच नहीं उससे ज्यादा विकेट ले. एंड उसके साथ साथ उनकी अगर बैटिंग की बात करें, उनका जो हमने इंटरव्यू सुना तो उसमें उन्होंने बोला कि हमारे जो कोच हैं उन्होंने बोला कि आपके लिए फिफ्थ नंबर ही अलाउ है बैटिंग का. एंड शी सेड मैं वहां पे रेडी हूँ, फिट हूँ वहां पे मैं खेलने के लिए. एंड उन्होंने वो शो भी किया.
1: शुरुआत की थी गुलफिरोजा के विकेट के साथ रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश उनके तरफ से, और उसके बाद आलिया को भी आउट किया था अपने अगले ही ओवर में. टॉकिंग अबाउट वॉकिंग दी टॉक, हरमनप्रीत कौर पिछले मुकाबले में जब पारी थोड़ी लड़खड़ाती भी नजर आ रही थी, दो जल्दी विकेट गिर गए थे, तब पारी को संभाला स्मृति मंदाना के साथ. 91 रन की साझेदारी हुई थी भूप वहां पर और रन बॉल ही खेल रही थी, लेकिन उनका उस वक्त पे टिकना महत्वपूर्ण था.
2: या दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक विकेट और वहां गिर जाती तो हमारी टीम को ज्यादा ही अंडर प्रेशर हो जाती. बट दोनों जोन से बिग मैच प्लेयर्स हैं और उन्होंने सिचुएशन को संभाला और अच्छा खेला. 91 रन की पार्टनरशिप और उसके बाद फिर से दो तीन विकेट जल्दी गिरे, बट ऋचा घोष ने पूरी इनिंग फिर दोबारा संभाली और हमारे को एक बड़ा टारगेट की तरफ ले गई.
3: जी, और बात करें अगर स्मृति मंदाना की तो फिर हल्की सी जो हलचल उठती है ना इधर उधर से, लोग बोलते जरूर हैं कि Maybe she gets found out when there is an off spinner in operation. क्या आप भी ऐसा देखते हैं कि Seegers हो गई Netherlands की तरफ से या फिर Overdyke हो गई, कहीं ना कहीं एक चुनौती प्रदान कर सकती हैं?
4: क्यों नहीं, anything is possible. You all you need are 10 good balls or 10 bad shots. So that, and in T20 the margin of error बहुत ही कम है.
3: जी.
4: आपको तो चाहिए एक ही बॉल आउट करने के लिए. And why not? It's good to see Indians under pressure. अगर जितना pressure डालिएगा next match के लिए उतना preparation better होगा. See, cricket is after all a mind game. You right. can't be complacent, you can't be overconfident. And you know, I always say teams like Netherlands, like the banana skin, कि केला का छिलका आप कभी भी पिसल सकते हैं. और जैसे मैंने शुरुआत में कहा है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो हम examples देख रहे हैं, कुछ भी possible है sport में.
2: Look, this wicket is slightly greenish. And when a spinner is bowling in the opening overs, the ball may not turn, it'll skid through. There is a chance that it can take a outer edge and person can get caught in the slips.
0: एंड अभी आपने बात की रॉबिन की. अभी मैंने जो देखा है रॉबिन काफी टाइम से बॉलिंग नहीं कर रही है, ऑफ स्पिन वो डालती हैं और वो काफी टाइम से बॉलिंग नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि इस मैच में भी वो ना बॉल डाले. क्योंकि एक रिदम में होना बहुत जरूरी होता है बॉलर के लिए और वो अभी तक वो रिदम दिखा नहीं रहा है क्योंकि वो काफी लॉन्ग टाइम से बॉलिंग में नहीं है.
1: और यहाँ से पावर प्ले में क्या रणनीति निकल कर उतर सकती है भारत की टीम भूप, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, ग्रीन विकेट है, कप्तान ने कह दिया है कि थोड़ा संभल के समझ के खेलना होगा.
2: वी हैव टू बी केयरफुल इन द फर्स्ट वन और टू ओवर्स एंड नॉट गो टोटली डिफेंसिव, ट्राई टू स्कोर रन्स एंड पुट अप अ बिग स्कोर इन द पावर प्ले.
3: एंड डू यू हैव अ नंबर इन माइंड द बिग स्कोर?
2: या इट विल बी ओवर 60.
3: ओवर 60.
2: या.
3: And this is Shefali going bang bang from the word go.
2: Both players will score, and even if a wicket falls, Gee. The number three batsman will also go for runs, and it's going to be a bigger score. It will be much more than 60.
4: So you don't need to go bang bang.
3: Okay.
4: What is 10? When you say 60, is 10 per over?
3: 10 over.
4: You need two boundaries and two singles. Then do we have to go bang bang? No. And it's not necessary ki pehla over se aap 10-12. See, the Dutch will come with the plan. When they select an additional fast bowler, obviously they'll have a plan. Or don't forget they're good fielders.
3: Correct.
4: Right? And fielding does matter. क्यों आपको पता है कि अगर जैसे मैंने पहले बोला कि 10 गेंद चाहिए और 10 बैड शॉट्स चाहिए, तो I think pedigree, application, experience, जैसे आपने बोला कि हरमनप्रीत कैसे पकड़ के खेला, कैसे if they don't do, a person is going to play 200 matches, international matches. If that person is not going to apply or herself as a skipper, then who will?
3: Right. You want to lead from the front.
4: Yes. So application has to be the

0: buzzword, the keyword, and the Dutch will definitely come out with the plan.
1: और इस ग्राउंड में अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो कैलिस उनके तरफ से कई मैचेस खेल चुके हैं इसी ग्राउंड पे. शी वुड अंडरस्टैंड द एंगल्स बेटर. आपको लगता है उसमें जरूर मदद करेंगे वो कप्तान की कि फील्डर को यहाँ प्लेस कीजिएगा, यहाँ रन्स भी बच सकते हैं, कैचेस भी बन सकते हैं.
0: डेफिनेटली सी इंग्लिश कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन कंडीशंस और एल्सवेयर. बॉल विल स्विंग एंड इट्स ओवरकास्ट. इट्स टिपिकली समर इंग्लिश कंडीशंस. एंड कैलिस, आई मीन से कैलिस, इट रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर कैलिस who used to never was not expressly fast. Mm-hmm. He would just bowl to the line on length and let the batsman make all the mistakes. That's why, as you said, I'm sure with her inputs, her captain Babbitt would definitely put the fielders at the right places.
2: And we've seen Babbitt at the lead being very inspirational throughout this journey of the Netherlands team. वापस भारतीय टीम पर आते हैं और जो बल्लेबाजी का क्रम है वो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यस्तिका भाटिया वापस आ गई हैं टीम में भारती फुलमल्ली के जगह पे और दीप्ति शर्मा को कहा गया है कि पांचवें नंबर पर वो जनरली बल्लेबाजी करेंगी, तो क्या तब्दीलियां होंगी क्रम में?
3: मुझे लगता है जहां पर अभी देखा गया है कि जैमी फर्स्ट ही डाउन आएगी एंड सेकंड उसके बाद हरमनप्रीत कौर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आती है. अगर जैमी की पहले विकेट अगर गिर जाती है तो उसके बाद हरमन आएगी, अदरवाइज हमारे मुझे लगता है कि यस्तिका भाटिया आएगी. और अगर ओवर्स कम होंगे तो डेफिनेटली ऋचा घोष वहां पे आएंगी बैटिंग करने, क्योंकि वो टीम का एक्स फैक्टर है और वहां पर वो अगर जहां भी आती है वहां से वो रन कैलकुलेट करते हैं, तो वो सिंगल को डबल में कैलकुलेट करते हैं और डबल से वो फोर में कैलकुलेट होता है. तो ये एक बेनिफिट मिलेगा लास्ट के 4-5 ओवर्स में ऋचा घोष से हमें.
2: जी, और क्या यही बल्लेबाजी का क्रम आप भी देखते हैं?
4: लुक, इफ यू आर गोइंग टू प्ले जस्टिका भाटिया एट नंबर 5 और नंबर 6, आई थिंक वी आर वेस्टिंग हर टैलेंट. इफ शी हैज टू प्ले, शी हैज टू प्ले नंबर 3.
2: बिल्कुल. और इसके साथ ही हम यहां पर अपनी चर्चा की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुकाबले की शुरुआत होने ही वाली है. तो जाने से पहले जल्दी से प्रेडिक्शंस लेते हुए चलते हैं. सौमित्रो, आपसे शुरुआत करते हैं.
0: 170,
2: नॉट टू डिसिमिलर फ्रॉम द लास्ट गेम.
4: Oh yes, it will be, score will be over 170.
3: नीदरलैंड के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास बनाने के लिए बहुत कुछ है. तो I'm thinking 180.
2: So it's broadly around 175 if you try and draw an average over here. Thanks a lot to each one of you for your analysis. And we shall now turn our attention to live action as the two Indian openers, Smriti Mandhana and Shefali Verma, are heading out into the middle. Would it be 170 or 180? We try and find that out over the next an hour and a half.
4: Thank you.
5: First ball, 20.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: नमस्कार, हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम लीड्स लंदन में इस समय T20 विश्व कप महिला विश्व कप के तहत भारत और नीदरलैंड्स के बीच मैच शुरू होने जा रहा है। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज या बैटर्स जिनको हम कहते हैं बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, सैफ अली वर्मा, स्मृति मंधना। दोनों ही बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही हैं। स्मृति मंधना ने पिछले मैच में एक शानदार अर्धशतक जमाया था और भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध जीत में मदद मिली थी। जहां तक नीदरलैंड्स का सवाल है, नीदरलैंड्स की कप्तान ने आज बेवेट डिलीड जो विकेटकीपर भी हैं उन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने के बजाय उन्होंने सोचा कि वो एक टारगेट को चेज करेंगी और उन्होंने पहले भारत को मौका दिया है कि आइए आप बल्लेबाजी कीजिए, हम आपके विरुद्ध जो टारगेट है उसे पूरा करेंगे। नेपाल में जो क्वालिफायर्स खेला गया था महिला विश्व कप के लिए उसमें इन्होंने पहले किया आयरिस ज्वेलिंग जो 24 साल की हैं और दाएं हाथ की मध्यम गति की तेज गेंदबाजी करती हैं। 101 विकेट वो अब तक ले चुकी हैं।

0: ज्वेलिंग बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही है। हालांकि नीदरलैंड्स का ये पहला विश्व कप है, इससे पहले बांग्लादेश के विरुद्ध इनको पराजय का सामना करना पड़ा था। देखना है भारत जैसी सशक्त टीम जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में महिलाओं की चैंपियन है, इस समय तैयार हो रही हैं नीदरलैंड की गेंदबाज और सामना करने के लिए भारत की स्मृति मानधना बाएं हाथ की। दाएं हाथ से उनकी पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और उस धीरे से पुश किया था वाइड स्मिडाउन की तरफ, लेकिन रन लेने का वहां पर कोई भी प्रयास नहीं किया। ज्वेलिंग जो मध्यम गति की तेज गेंदबाजी करती हैं इस समय तैयार हैं, और जैसे जैसे हमको मौका मिलेगा हम आपको पूरी टीम का विवरण भी देंगे। फिलहाल क्योंकि मैच शुरू हो चुका है, स्मृति मानधना तैयार हैं। एक बार फिर से उनकी गेंद लेग स्टंप के बाहर था, संभवतः वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से एक अतिरिक्त रन, तो भारत का खाता खुला एक अतिरिक्त रन के माध्यम से। वाइड के जरिए मिला है ये रन और अभी तक दोनों ही बल्लेबाज एक नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ी हैं, सैफ अली वर्मा और स्मृति मंधाना ने केवल एक गेंद अब तक खेली है और रन लेने का सिलसिला अभी उनका शुरू नहीं हुआ है। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थ्रो से पुल किया था, शॉर्ट आर्म पुल मिड विकेट बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया, लेकिन इससे पहले बल्लेबाजों के पास इतना मौका था कि वो दो रन जुटा लें। भारत का स्कोर हो गया 3 रन बगैर किसी नुकसान के। नीदरलैंड्स ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। उन श्रोताओं की जानकारी के लिए जिन्होंने किसी कारणवश अपने रेडियो सेट्स कुछ देरी से खोले हैं, हम आपको बता दें कि भारत और नीदरलैंड्स के बीच ये मैच गेंद धीरे कुछ धीमी गेंद थी, अपनी रफ्तार पर थोड़ा नियंत्रण किया और गेंद को हवा में छोड़ दिया स्विंग होने के लिए। अंदर की तरफ आ रही थी गेंद, इन स्विंग गेंद बाएं हाथ के बैटर के लिए, और स्मृति ने उसे सुरक्षात्मक तरीके से खेल दिया। नीदरलैंड और भारत के बीच T20 महिला विश्व कप का ये दूसरा मैच। ये गेंद फिर लेग स्टंप के बाहर थी और वाइड का इशारा एक बार फिर से अंपायर की तरफ से, और एक रन और भारत के खाते में जोड़ा है। भारत का स्कोर हो गया 4 रन बगैर किसी नुकसान के। हेडिंगली का ये विकेट, जहाँ पर इससे पहले भी एक मैच हो चुका है, बादल मैदान में छाए हुए हैं लेकिन पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि बल्लेबाज इसमें कुछ बह नहीं। इस बार ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया ऐसे और बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए दोनों ही बल्ले बैटर्स ने अपना छोर बदला, स्मृति के खाते में एक रन और जुड़ गया। 3 रन उनका कुल स्कोर हो गया, भारत का स्कोर हो गया 5 और बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर चल रहा है। ज्विलिंग जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज लंबे कद की खिलाड़ी हैं और पूरी तरह से प्रयास कर रही हैं कि विश्व चैंपियन भारत के विरुद्ध वो अपने आत्मविश्वास को समेटें और अच्छी नियंत्रण के साथ 94% उनकी गेंदबाजी में नियंत्रण रहता है उनका, और देखना है ज्विलिंग अपने इस अगली ओवर गेंद में क्या कुछ कर पाती हैं। दाएं हाथ के ओवर द विकेट गेंदबाजी करने वाली, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैक फुट पे गए, कट किया उसे और डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है 4 रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: ज्विलिंग की ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ जा रही थी, हवा में अपना आर्म के साथ छोड़ी थी गेंद को, टप्पा खाने के बाद उछली थी गेंद और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे कट किया था सैफ अली वर्मा ने 4 रन के लिए। एक गेंद अब तक सैफ अली ने खेली है, उसमें चौके के साथ अपना खाता खुला है। भारत का स्कोर 9। इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद थी, धीरे से इसे पुश किया था, कोई मौका नहीं लेना चाहती वैशाली सैफ अली वर्मा, क्योंकि जिस तरह से अभी तक वो बल्लेबाजी कर रही हैं पिछले जो घरेलू टूर्नामेंट है उसमें बहुत ज़्यादा असरकारी बल्लेबाजी वो नहीं कर पाई थी, लेकिन लिहाजा वो अपने आप को पूरी तरह से नियंत्रित करते हुए खेलना चाहती हैं। पहला ओवर समाप्त हुआ। विश्वनाथ,
2: वेल गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल लिसनर्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। Well, this is the first World Cup. They are the debutant Netherlands, and the last game they played against Bangladesh, it was a bit of a close encounter. And today is a very busy day. 3 headers: India playing Netherlands, and you got the other 2 games going on also. One, in fact, Bangladesh has lost to Australia by a mile, and South Africa and Pakistan make first.

0: ball is handsomely driven by Smriti Mandhana up to middle on no run. Well, it's a kind of a you know, grouping that India has, that they got two major opponents here. One is of course South Africa and Australia. So it's not an easy group to export. She draws, mistimes, drags the ball up to Whitish Midon. Wants a run. It was there actually. I said they make it in the end comfortably. So none for 10. We are in just the second over. It's Seegers. She's bowling. And Heath Seegers, she opens, in fact, the batting for Netherlands. And she's got a sister also playing the same game, isn't it? It's quite amazing. Silver Seegers. Here is Heath Seegers. Up she comes now with her off spinners. And she's getting the ball around the over the wickets to Shefali. Comes in now short, and he hits it hard off the back foot. It's going down towards the extra cover fence. The ball should win the race as that ball runs away for four. Well, that was too friendly. It was short and wide and spinning away and was easily put away by Shefali Verma. So, but I feel this is this kind of game that you can improve your batting average at times. The Indians don't take Netherlands lightly. Seegers in just a couple of paces, runs and bowls down the leg side, and it's been worked away towards a wide-ish mid-on. Runs with the straight for an easy single. And India move up to 15. Just to give you what happened with the toss, Netherlands won the toss and preferred to bat second. It was a bit surprised. I felt their weapon probably was the bowling. And it's such an inexperienced side. I'm sure we're going to talk a little bit more. Next ball is nicely tossed up. And a brilliant dive. And that can't get past her. This is running down towards the extra cover fence for four. When Smriti placed that cover drive, I think that's an absolutely very elegant offer to see that. She's a delight to watch when she placed that cover drive. And a beautiful timer of the ball. And played well against Pakistan the last game. And the Indians are not taking Netherlands so lightly. So India move up to 19. One ball to go in the second over after they've been sent in by Netherlands. If you just joined us. With Smriti on 8 and Shefali on 9. Last ball of the first over from Seegers coming in. She's going to bowl right arm round the wickets. Slower. And she has to reach for it. And then she drives beautifully. It beats cover. An extra cover. That'll be another 4. Well, that sort of a pace and spin, I'm sure the Indians are going to enjoy the bowling of the Netherlands at the moment now. So Goswami, I think, you know, would you say winning the toss and batting second was the best option for Netherlands?
1: लगता है कि भारतीय टीम जो कि विश्व चैंपियन है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, तो उनको लगा होगा ऐसा कि एक बार परखा जाए और कोई एक टारगेट जो बनाती है भारतीय टीम, एक अगर मौका देती है तो क्या कुछ कर सकते हैं वो, तो इस तरह का एक उनके दिमाग में रहा होगा कप्तान के, और उन्होंने पहले टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का मौका दिया है। और उन श्रोताओं के लिए कि आज भारत और नीदरलैंड्स के बीच में महिला विश्व कप का ये मैच चल रहा है, ज्वेलिंग आई है, अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैट फुट पर गए, मिड विकेट की तरफ गेंद को धीरे से प्लेस किया है, एक ही रन मिल पाएगा। शेफाली वर्मा का स्कोर हो गया, इसके साथ ही डबल फिगर में 10 रन 5 गेंदों का सामना किया। स्मृति मंधाना इस समय खेल रही हैं 12 रन के स्कोर पर, और भारत का स्कोर 24 रन बगैर किसी नुकसान के, 2.1 ओवर का खेल अब तक पूरा हुआ है। भारतीय टीम जो इस मैच में खेल रही है, हम आपको बहुत तेजी से बताएंगे इसके इस ओवर के बाद में। और एक बार फिर से ज्वेलिंग दाएं हाथ से ओवर द विकेट, उनकी गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैक फुट पे गई और शॉर्ट कवर्स की पोजीशन पे गेंद को फील्ड कर लिया गया, कोई मौका नहीं रन लेने का। और एक बार फिर से ज्वेलिंग हल्के हल्के कदमों से अपने गेंदबाजी कर रहा।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PMSuryaghar.gov.in पर।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 5 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा कल से होगा शुरू। इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगा समान नागरिकता संहिता UCC विधेयक। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक देश एक चुनाव, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य को विकसित भारत के आधार स्तंभ बताया। और मानसून की रफ्तार थमी, प्रदेश में अगले सप्ताह दस्तक के आसार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक 5 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, खंडवा जिले के श्री ओंकारेश्वर मंदिर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल इंदौर पहुंचेंगी, इसके बाद वह बैतूल में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही श्री ओंकारेश्वर पहुंचकर मंदिर में दर्शन एवं आरती में सम्मिलित होंगी। शुक्रवार 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। शनिवार 20 जून को श्रीमती मुर्मू जबलपुर पहुंचेंगी। 21 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके पश्चात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में सहभागिता करेंगी। सोमवार 22 जून को श्रीमती मुर्मू कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी। इसके बाद वह ग्वालियर पहुंचकर नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र में सामान्य नागरिक संहिता UCC का प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि विधेयक इसी सत्र में पारित हो जाएगा। डॉक्टर यादव ने आज विधानसभा परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू की जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि विधानसभा के आगामी सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों को लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि देश में एक समान कानून लागू करने की भावना में कुछ भी गलत नहीं है और यह समाज में समानता लाने का प्रयास है। उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों में UCC लागू किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे, उसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं।
0: मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह 5 दिवसीय सत्र 24 जुलाई तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज उज्जैन जिले की महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से कुल 207,57,00,000 रुपए की लागत वाले 19 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें करीब 188,42,00,000 रुपए की लागत के सामाकोटा बैराज के लोकार्पण सहित क्षेत्र के 13 उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवनों, महाविद्यालय एवं स्कूलों के नवीन भवनों तथा नवीन विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि सामाकोटा बैराज उज्जैन जिले में जल संरक्षण को नई ऊर्जा देगा। इससे भूजल स्तर में सुधार होगा, जिससे हमारे अन्नदाता किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल और खेतों को नई संजीवनी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियां में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत की एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के साथ ही बैठक रणनीतिक से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके राजनयिक संपर्क तथा प्रमुख मंचों पर वैश्विक नेताओं के साथ उसकी सक्रिय बातचीत को दर्शाता है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑन इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा द्वारा पटना में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व मंच पर एक मजबूत, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है।
2: 12 साल में अगर मैं 12 बड़ी उपलब्धियों की बात करूं, तो नंबर एक, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। 4 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को पक्के मकान मिले हैं। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। 3 करोड़ हमारी बहनें लखपति दीदी बनी हैं, या जीविका दीदियों के नाम से जानी जाती है। 57 करोड़ मुद्रा लोन से स्वरोजगार के क्षेत्र में क्रांति आई है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय निर्मित हुए हैं। 3,14,000 करोड़ का डिजिटल लेन देन हुआ है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू, युवाओं के लिए 120 बड़े स्टार्टअप्स, लगभग 1,60,000 करोड़ का निवेश अकेले सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो रहा है।
0: उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए समाज को कुछ उपयोग को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक नागरिक द्वारा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना समय की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
3: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से ठहरा हुआ है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का एक पौधा अपने बुजुर्गों के नाम अभियान आज से शुरू हुआ। बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल ने वृक्षारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में भव्य आम महोत्सव का आयोजन किया गया। जबलपुर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 19 जून को भंवर ताल गार्डन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुने सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

चौपाल के सुनैया सब भैया बहनी काही ससी बहनी के राम राम। देखी इतनी साहित्या किसान भैया बहनी हरे खेती किसानी के तोरा माँ बितुनियान हुई ही। खेतन केर जोताई घरे के छबाई और खाद बीज के व्यवस्था कहे से देखी कि अब धान के रोपा डारे के समय जौन है वह आएगा है और जौने खेते माँ रोपा कहीं डारे का है तो ओखा दुई बाह निकाह से जुताई करा दे काहे कि जौने खर पतवार हैं उ नष्ट हो जाए और जो चारा उजार खेते में हुई ही तो ओहू का निकाह से साफ सफाई कई के खेतन का ही तैयार कई ले का चाही। समय राहत खादी केर व्यवस्था कई ले जौने खादी के नीता बाद माही एक ओकई बिल्याय का न पड़े। देखी जौने खेते माँ धान के रोपा लगवाबे का है ता ओहू के जोताई कराए रही काहे कि कभो कभो का होता है इसे थोड़ बहुत पानी तब गिराई लाग है रोजे गिर रहा पर अबे मानसून नहीं आवा है तो कभो कभो का होता है कि पानी शुरुओं में ही इतना गिरी जात है कि खेत भरी जाते और जो ओकर जोताई कराए रहा मनई तो खेत निकाह से सड़ जाते साथ है खरपतवार जो उन्हें नष्ट हो जाते और फिर ले उभर लगावे का रह जाता है। कबो कबो देखी यह देखवे मावत है कि कुछ खेत ऐसा होते कि जो एक बेर की भर गए ता ओकर पानी खेते में ही हफ्तन भरा रह जाता है अब फिर मनई चाहू के सूखी जोताई नहीं कर पावे। एहन से देखी खेतन के जोताई जौन है पहले से कराए रही जौने परीक्षा करना पड़े। अब देखी मनई कहीं बीजों के जरूरत होती तब बीजों बेसाहत समय बीज लेत के समय यह ध्यान रखे कि बीज उन्नत किस्म के होए और 100% अंकुरण वाला होए और कितने समय में पाकी यह बात कर देखी मनई का ध्यान रखे का चाही। कहे कि जो गरुहन धान बोई तो वह खेतन में बोवा चाही जहाँ पानी के निकही व्यवस्था होए काहे कि ज़्यादा समय लागी तो पानी ज़्यादा दिना तक मनई का ओखर व्यवस्था करे का पड़ी और जौने खेती में ही सिंचाई के व्यवस्था नहीं भय तो हुआ जौन है हलुकन धान के बुवाई करे जौने समय राहत फसल तैयार हो जाए तहले यमेर से खेती किसानी के तोरा माँ किसान भैया बहनी हरे मनई सबई को लगा है। काहे कि अब देखी यह समय नैसा ना आए कि जो यह समय मनई कई लेता है तो फिर साल भर जौन है तो मनई के जीव जामा सहीन रहत है प्रसन्न रहत है मनई और जब प्रसन्न रहत है तब देखी गीत और संगीत निक लागा थी।

0: अबे मनई, रीति पांडे के गावा या गैल्हाई गीत सुनीस।
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।

0: साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: देखी जैसन कि अपना पांच सबय को जानी थैन कि आकाशवाणी के 90 बरिस पूर हो गए हैं, एहिन से संबंधित युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार से संबंधित बतकहाँ प्रशिक्षण अधिकारी राकेश कुमार तिवारी, प्रशिक्षण अधिकारी श्वेता गर्ग, शासकीय संभागी आईटीआई से रीवा और अपना से बतकहाँ चलाइन ही श्री सागर सिंह ता आई मनैया भेंटवार्ता सुनाए।
2: चौपाल के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हमारे साथ हैं शासकीय संभागी आईटीआई रीवा से प्रशिक्षण अधिकारी राकेश कुमार तिवारी जी और प्रशिक्षण अधिकारी श्वेता गर्ग जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है
3: जी। धन्यवाद सागर जी एवं चौपाल के समस्त श्रोताओं को भी सादर नमस्कार।
2: आज हम बात करेंगे रोजगार के बारे में, कौशल विकास के बारे में और स्वरोजगार के बारे में। हम जानते हैं राकेश जी से कि वर्तमान में युवाओं के कौशल विकास का महत्व कितना बढ़ गया है और आईटीआई, खासकर आईटीआई रीवा, इसमें क्या भूमिका निभा रहा है।
3: जी, आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में केवल शैक्षणिक योग्यता ही सफलता का आधार नहीं है, बल्कि व्यवहारिक कौशल, जिसे हम स्किल के नाम से भी जानते हैं, और तकनीकी ज्ञान भी एक उज्जवल कैरियर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात छात्रों के सामने कैरियर के अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं, जिसमें वो आगे की अपनी शैक्षणिक योग्यता भी प्राप्त करते हैं या रोजगार परक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं। तो इस प्रकार कौशल आधारित प्रशिक्षण यदि वह चुनते हैं तो एक सशक्त और रोजगार परक यह विकल्प है, और आईटीआई की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह कम खर्च में अल्प अवधि के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है।
2: ट्रेनिंग ऑफिसर श्वेता जी से पूछना चाहेंगे कि वर्तमान समय में कौशल विकास के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को आप किस प्रकार से देखती हैं।
4: चौपाल के समस्त श्रोताओं को नमस्कार जी। मैं बताना चाहूंगी कि आज के समय में महिलाएं केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शासकीय संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रीवा महिलाओं को विभिन्न कौशल आधारित ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। रीवा संभाग में संचालित समस्त शासकीय आईटीआई संस्थाओं के माध्यम से कौशल विकास एवं रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।
2: श्वेता जी, अगर हम बात करें आज की युवतियों के बारे में, तो आईटीआई रीवा के कौन कौन से ऐसे ट्रेड हैं जो बेहतर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं।
4: ऐसे आज के समय में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त कर रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम भी कर रही हैं, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्र हैं जिनमें महिलाएं बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकती हैं और स्वरोजगार के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। जैसे पहला है हमारा कंप्यूटर एवं आईटी क्षेत्र। गवर्नमेंट आईटीआई रीवा में संचालित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा ट्रेड के प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाएं कंप्यूटर संचालन, डेटा एंट्री, कार्यालय प्रबंधन, इंटरनेट सेवाएं एवं डिजिटल कार्यों में दक्ष बन सकती हैं। इसके माध्यम से सरकारी एवं निजी कार्यालयों, बैंकिंग सहायता सेवाओं, साइबर कैफे तथा ऑनलाइन सेवाओं में रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा है हमारा फैशन एवं परिधान क्षेत्र। रीवा आईटीआई में संचालित फैशन डिजाइन एवं टेक्नोलॉजी तथा सिलाई टेक्नोलॉजी के व्यवसाय महिलाओं को डिजाइनिंग, बुटीक संचालन, गारमेंट उद्योग एवं स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए सक्षम बनाते हैं। शासकीय महिला आईटीआई रीवा में कोपा, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी एवं स्विंग टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड भी उपलब्ध हैं। तीसरा है हमारा ब्यूटी एवं वेलनेस क्षेत्र। रीवा आईटीआई में संचालित बेसिक कॉस्मेटोलॉजी प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाएं ब्यूटी पार्लर, स्किन एवं हेयर केयर सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार एवं स्वयं का व्यवसाय भी शुरू कर सकती हैं।

इसके अतिरिक्त शासन के नियमानुसार संस्था में संचालित प्रत्येक ट्रेड में महिलाओं के लिए 35% सीटों का आरक्षण किया गया है। आजकल महिलाएं लगभग सभी ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। वर्तमान में महिलाएं इलेक्ट्रिकल, सोलर ऊर्जा, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही हैं। ITI प्रशिक्षण

0: लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
1: जी, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आईटीआई रीवा में हमारे मध्य प्रदेश कौशल विकास संचालनालय की अनुपम पहल के माध्यम से उद्यमिता विकास सेल भी कार्य करता है, जो कि रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार की दिशा में भी युवाओं को आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है। आज का दौर रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार का भी है। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आज युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है, और इसी कड़ी में हमारे कौशल विकास संचालनालय के द्वारा प्रत्येक शासकीय आईटीआई में उद्यमिता विकास सेल का गठन किया गया है। तो उद्यमिता विकास सेल में हम अपने प्रशिक्षणार्थियों को अपना उद्यम कैसे स्थापित करें, स्वरोजगार की दिशा में किस प्रकार आगे बढ़ें, उनको भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कौन सी विभिन्न योजनाएं या सहायता प्राप्त होती है, इनके बारे में प्रशिक्षण देना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना एवं मार्केट सर्वे जैसी विभिन्न चीजें सिखाई जाती हैं। साथ ही सफल उद्यमियों को भी संस्था में बुलाकर उनसे प्रशिक्षण दिलवाकर हम उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने की दिशा में प्रेरित करते हैं।
0: श्वेता जी, अगर हम बात करें छात्रवृत्ति की, तो छात्रवृत्ति के संबंध में युवाओं को या युवतियों को बताइए कि क्या क्या अवसर उनके लिए उपलब्ध हैं।
2: जी देखिए, मध्य प्रदेश में संचालित समस्त आईटीआई में प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान है। पात्र प्रशिक्षणार्थियों को शासन के नियम अनुसार छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सकता है। विभिन्न आईटीआई संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर एवं आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध रहती हैं।
0: श्वेता जी, ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं एवं युवतियों को तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण अपनाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
2: कि पारंपरिक क्षेत्र में जैसे महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती हैं, तो उनको रोजगार के अवसर बहुत जल्द नहीं मिल पाते हैं, और तकनीकी शिक्षा में यह है कि कम अवधि में बच्चे अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके सामने इस परिप्रेक्ष्य में एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगी। हमारे संस्था की एक प्रशिक्षणार्थी है, फिटर ट्रेड से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, सुश्री कल्पना प्रजापति जी, जिनका चयन भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट के पद पर हुआ है। प्रशिक्षणार्थी की घरेलू स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि एक सही निर्णय आपका जीवन परिवर्तित कर सकता है, तो इन्होंने एक सही निर्णय लिया और संभागीय आईटीआई रीवा से रीवा में प्रवेश लेकर यहाँ के प्रशिक्षण अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त किया और अपने परिश्रम एवं संघर्ष से सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार इस वर्ष संस्था के कई अन्य प्रशिक्षणार्थी भी भारतीय रेलवे सहित अन्य विभिन्न शासकीय एवं निजी संगठनों में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं।
0: श्वेता जी, रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही युवा महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
2: जी, मैं सभी युवा महिलाओं से कहना चाहूंगी कि वे अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने से ना हिचकें। आज कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हैं। वे अपनी रुचि के अनुसार कौशल प्राप्त करें, नई तकनीकों को सीखें और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। मेहनत, लगन और निरंतर सीखने की भावना आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। आत्मनिर्भर महिला न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका देती है।
0: अंत में राकेश जी, आपको बताना चाहेंगे और अपने श्रोताओं को भी कि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे कर चुका है। इस अवसर पर युवाओं के लिए, ग्रामीणों के लिए और भी हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है और आकाशवाणी की भूमिका को आप किस प्रकार देखते हैं?
1: जी सागर जी, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। यह भारतीय प्रसारण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 9 दशकों से आकाशवाणी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का विश्वसनीय माध्यम रही है। विशेष रूप से युवाओं के लिए आकाशवाणी ने रोजगार, कौशल विकास, कृषि, शिक्षा और स्वरोजगार से जुड़ी उपयोगी जानकारियां निरंतर उपलब्ध कराई हैं। आज डिजिटल युग में भी आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता और

0: जन सरोकारों के कारण प्रासंगिक बनी हुई है। दशकों से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी चौपाल जैसा कार्यक्रम आज भी लोकप्रिय बना हुआ है और हम अभी भी चौपाल नियमित रूप से सुनते हैं। और चौपाल के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रम जो आकाशवाणी रीवा से प्रसारित होते हैं आज भी हमारे कानों में मिठास घोलते हैं। तो मैं इस अवसर पर आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने सफलतापूर्वक 90 वर्ष पूर्ण करते हुए जनमानस की अनुपम सेवा की है।
1: आप लोगों ने कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभिमनई युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार से संबंधित बतकहाओं प्रशिक्षण अधिकारी राकेश कुमार तिवारी, प्रशिक्षण अधिकारी श्वेता गर्ग, शासकीय संभागीय आईटीआई रीवा से, और अपना से बतकहाँ चलाइन रहा श्री सागर सिंह तमनई सुनीस। और देखी अब सुनीत हैं एक ठे और लोकगीत बन्ना प्रमिला तिवारी के गावा।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
3: देखी भारत एक ऐसा देश है जहाँ कईक साहित्यकार, समाज सुधारक, कवि, स्वतंत्रता सेनानी पैदा भी। उन्हीं माँ एक आही पंडित गोप बंधु दास, जिनका राजु पुण्यतिथि आए। महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक पंडित गोप बंधु दास जी के जन्म 9 अक्टूबर 1877 का ओडिशा के पुरी जिला के सुआड़ो गांव में भर रहा। ऊ ओडिशा में शिक्षा, साहित्य और पत्रकारिता का बढ़ावे में ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाईन। ऊ पुरी के सत्यवाड़ी में प्रसिद्ध वन विद्यालय मुक्ताकाश विद्यालय के स्थापना कीन, जौन की प्रकृति के बीच में ही शिक्षा के नेता जाना जात है। ओडिशा में जब स्वाधीनता संग्राम और स्वाधीनता के बाद चलाई गए, ओमा गोप बंधुदास जी के नाम सबसे पहले बहुत सम्मान के साथ लीन जात है। ओडिशा के रहैया उन्हीं दरिद्र के सखा यह रूप में शुद्ध करा थे। ओडिशा के पुण्य क्षेत्र पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के उत्तरी पार्श्वमा चौक के समूहे उनकर संगमरमर के मूर्ति स्थापित थी। उन्हीं उत्कल मणि उड़ीसा के रत्न और गरीबन के दोस्त के नाव से घाल जाना जात है। तो ऐसन महान विभूति के राजू पुण्यतिथि आए जिन्ही हम पा सबको शुद्ध कई रहें। और देखी आसों ता इतनी अहिमक गर्मी पड़ी कि मनई का जीव जंतु सब है बेहाल हैं। और ओखर देखी जौन एक ठे मुख्य कारण आए वाय जंगल केर कम होब, बंजर भुइयां केर ज़्यादा होब। और इतनी साई जौन सबसे बड़ी चुनौती ही वैया है कि जौन ए हिसाब से आबादी ही वह अनुपात मा जंगल बने रहें, यह मनई का ही जौन है ध्यान दे का है। और नहीं तो देखी धीरे धीरे धरती जौन है मरुस्थल मा बदल जाई। मरुस्थलीकरण और सूखा के मुकाबला आज दुनिया के सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या आए, यह केवल रेगिस्तान भर के फैलब ना होए, बलु काया कि जौन उपजाऊ भुइयां ही ओखर उत्पादकता जौन है वह कम हो बाय। देखी सूखा तो एक प्राकृतिक आपदा आए, पै भुइयां केर क्षरण मनई के अनमास आए, जौन की मनई के गतिविधि क्रियाकलाप के कारण हो ही रहा। एहन से देखी मनई काही जागरूक करे के निता हर बरिस 17 जून काही विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनावा जात है। एकर मुख्य उद्देश्य यह है कि भुइयां का पुनर्स्थापित करब और मनई का जागरूक करब। अब देखी मनई देखत है कि कईया कैसन कारण है जैसे भुइयां मरुस्थल माही जौनही तब बदलत जाती, पेड़ पौधा जंगल केर कटाई, अतिशय पशुचारण मनई जहाँ नहीं जौने भुइयां माही जौन है तब पशुअन का चरावे लागत है, आधा धुंध भुइयां के जल केर दोहन, ई सब ऐसन कारण ही जेखर जिम्मेदार त देखी मनई खुदय है। अब कुछ प्राकृतिक कारण होते, अब जैसा देखी जलवायु परिवर्तन, वर्षा केर कमी और लगातार सूखा पड़ब, पर देखी एके बादव जो मनई सतर्क रहा है और चाहे तकैया कैसन उपाय हैं जेखा कई के मनई सूखा और मरुस्थलीकरण का रोक सकत है। एके नीता देखी मनई का चाही कि वृक्षारोपण करें, खूब पेड़ पौधा लगावें, वनीकरण, अधिक से अधिक पेड़ वृक्षा जब लगाई तो एमा से बहुत कुछ समस्यान से बचा जा सकत है। खेतन के मेड़ मा पेड़ उगावें जौन देखी माटी के कटाव का रोका थे। साथ में देखी का करें कि बरखा के पानी का रोके के उपाय करें, सिंचाई के नीता देखी टपक सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर के उपयोग करें। एहू से देखी का होता है कि पानी के बचत होती, साथ है रासायनिक खादी के स्थान में ही जैविक खादी प्राकृतिक खेती के उपयोग करें। काहे कि देखी जब मनाई लगातार रासायनिक

बरक केर जौन है उपयोग करत है तो ऐसे का होत है कि माटी के उर्वरा शक्ति कम हुई जाती। रासायनिक खादी केर ज़्यादा उपयोग करे से माटी के जल धारण और वायु धारण के क्षमता कम हो जाती, माटी बंजर हो लागा थी। तो देखी माटी का ही जो बंजर हो से बचावे का है और माटी के जल धारण वायु धारण के क्षमता का बढ़ावे का है, उर्वरा शक्ति का बढ़ावे का है। तो देखी मनई का चाहिए कि जैविक खादी के अधिकहा प्रयोग करें। जैविक खादी से कौनो मेर के प्रदूषण नहीं होए और मनई एखा घरे में बनाए सकत है। कंपोस्ट जैसे मनई बनौता है उमा निश्चित नाप के एक गड्ढा बनाए ले और उमा माल मवेशिन के गोबर मल मूत्र कूड़ा करकट या सब डारे। नमी का ही बनाए रखे के नीता थोड़ बहुत पानी के छिड़काव कर दे तो देखी कुछ महीनन में ही अना निकही गोबर के खाद तैयार हो जाती। उसे गोबर के खाद जितनी पुरान होती उतना नीक मानी जाती। एमा भरपूर पोषक तत्व रहा थे जो उनकी माटी का ही मिला थे। तो देखी मनई का ही जौन है ऐसा खादी के उपयोग करे जो उनकी उर्वरा शक्ति का बढ़ावे। एक साथ देखी मनई फसल चक्र का ही अपनावे। फसल चक्रण के मतलब होता है फसल का ही अदल बदल के बोब। एक दर की गेहूं तो दूसरे दर की दाल वाली फसल या तरकारी भाजी। फसलों चक्रण से माटी के उर्वरा शक्ति बनी रहा थी। ऐसा मैंने ही देखा था कि जो उन दलहनी पौधा होते उनके जड़ में ही नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करे वाले जीवाणु पाए जाते अजय वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन का ही नाइट्रेट में परिवर्तित करके माटी के उर्वरा शक्ति का बढ़ा देते। यह मेरे से सूखा के मुकाबला करे के नीता मोटिया अन्न के उत्पादन कई मनई का ध्यान दे चाही। मोटिया अन्न जौन है एक इस्तेमाल मनई भोजन के रूप में कई सकत है और यह सूखा में ही अच्छा उपराज देत है। तो एमा से मनई आसानी से कम पानी में एक जौन है यह फसल कहीं उगा सकत है। तो मनई देखी अब जागरूक हो जाए जैसे पर्यावरण का बचावे। देखी अब होती चले के जूना तो आज्ञा लीन जा एक पहले पता बता दे। चौपाल के चिट्ठी द्वारा उप निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा पिन कोड है 4860001। तैया पता में रही अपना पचन के पाती के परिखाओ। अब आज्ञा दे चौपाल के सुनैया सबे भैया बहनिन काही ससी बहनी के राम राम जय जवान जय किसान।

0: 209 is a par for the course. But again, I think New Zealand, Netherlands will be disappointed with the way they started, but they finished very strongly. Catches dropped, and the difference that could probably make is the 16 runs of extras that they conceded. Out of that, 14 white balls, one no ball. That means they have bowled more than 2 overs to the Indians, and the Indians capitalized in 50s by, you know, we were talking about Shefali Verma. She right. did it. And of course, Smriti Mandhana's always on song. I think it's a good total for India.
1: Right, a couple of boxes ticked, especially, Colonel, when you look at India's top order. You wanted them to come back into form before the bigger South Africa assignment arrives.
2: Oh yes, Shefali has played really well today. And so has Jemima. For the short time she was there, she scored about 20 runs. And of course, Mandhana was flawless. We had a minor hiccup in the 16th and 17th overs where we lost 3 quick wickets. But that, I suppose, was that we wanted to go in for a big score, 200 plus. And we took some chances, and that is how we lost those 3 quick wickets.
1: Right, so no complaints there whatsoever. They had to bat that way.
2: Not at all.
3: वैशाली जब ये दोनों ओपनर्स शेफाली और स्मृति सॉन्ग पे होती हैं अच्छा प्रदर्शन कर रही होती हैं तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देखने को मिलता है पावर और टाइमिंग
4: जी शेफाली पावर एंड स्मृति टाइमिंग एंड सबसे अच्छी बात ये फियरलेस बैटिंग करी आज शेफाली वर्मा ने एंड ये उनके लिए बेटर है क्योंकि उनका जो बैट का स्विंग है वो साउथ अफ्रीका के लिए मैच के अगेंस्ट उनको बेटर वे में उनको कह सकते हैं कि रन रेट उनका इक्वल कर सकता है एंड उसके साथ साथ स्मृति मन्ना हमेशा ही इतना फियरलेस खेलती हैं वो तो उसकी उनके बारे में क्या ही बात करें हम और उसके साथ अगर मैं जेमिमा की बात करूं तो जेमिमा ने काफ़ी फियरलेस बैटिंग करी है लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये लग रहा था कि उनको और बेटर पिच पे अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए था क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम जो आने वाला आपका नेक्स्ट मैच है उसके लिए आपको टीम पिच पे टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी था आज एंड यस्तिका भाटिया एज अगर हम कंपेरिजन करें भारती की और यस्तिका की तो दोनों सिमिलर है अभी दोनों एक ही जगह पर स्टैंड कर रहे हैं एंड कोई भी खेले बट हरमनप्रीत को उनकी जगह पे आना चाहिए था और बेटर हमारा रन रेट बढ़ सकता था एंड उसके साथ अगर हरमन की बात करूँ तो लास्ट मैच और इस मैच में देखें तो उनका बैट उस तरीके से चल नहीं रहा है जो साउथ अफ्रीका के लिए हमें चाहिए बैटिंग
1: राइट अगर हम बॉलिंग की बात करें नेदरलैंड्स की तो दिलांगा उन्होंने 2 विकेट चटकाए और सीगर्स ने भी 1 विकेट चटकाया उसके बावजूद अगर आप देखें तो इंडिया वर एबल टू टैकल द स्पिनर्स वेल क्या उन विकेट्स के चलते आप कह सकते हैं ये कर्नल की इस विकेट में कुछ ना कुछ तो है स्पिनर्स के लिए मदद जरूर है
2: या देयर इज स्लाइट यू नो असिस्टेंस फॉर द स्पिनर्स हालांकि विकेट थोड़ी फास्ट खेल रही है लेकिन अगर आप राइट स्पॉट पे फ्लाइट करके बॉल डालोगे तो हल्की सी टर्न भी है जिससे बैट्समैन को खेलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी
3: Soumitra, it's also about who they are up against. For example, Asset Mandhana, even if it's an off spinner in front of her, is not going to be uncomfortable.
0: Absolutely. But just to add to what Colonel said, all the 5 wickets that India, all the wickets that fell, so all were bad dismissals. Have you noticed that? Yeah. Those kind of strokes Jamie played, you know, Richa was lucky because she was dropped on 2.
1: Right.
0: I mean, imagine if Harmanpreet was also not dropped, we could have been in bigger trouble. It so happens ki ye jo hamara team hai, opposition hai, is Netherlands. Imagine, can you do this with Australia or South Africa? Answer is no. And spinners, yes, fine, but did you see if the ball turned too much? Not too much, maybe. Because the point is this, they were both trying to, that's what I said, ki in the 16th over onwards, the Dutch bowlers tried to get something back out of this game.
1: Right.
0: That's why Dilange got. But again, the wickets we gave Dilange were gifts.
1: Got it.
0: Except for the fact that Yastika stepped out, missed the line completely and was bowled and was stumped.
1: Right.
0: So the point is just how you played the match. I think it's largely because the two batsmen in the top of the order, they got the runs. And if you see the contrast of the first match, where the middle order got the runs, the top order did not. Here it was a bit of a reverse. Mm-hmm. But things are, there are lessons to be learned from this match.
1: Harping about the spinners once again then, if it's not turning as much, Vaishali, just tarike se chahal

0: कदमी की थी स्मृति ने. The fact that she was able to use her feet to the spinners, that brought a lot of runs. Do you think the opposition will borrow a leaf out of her book? वो भी वैसे ही खेलने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से स्मृति ने पेस आउट किया था अपने इनिंग्स को.
1: ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, बट मुझे लगता है कि जहां पर अभी स्पिनर, अगर हम पूरा आंकड़ा निकाल के देखें तो अभी भी स्पिनर ने ही विकेट ज्यादा ली है. एंड हमारी दीप्ति शर्मा, अगर वो जैसे उन्होंने लास्ट मैच में पकड़ के एंड स्पॉट बॉलिंग की थी, वही अगर वो उस तरीके से बॉल करती और श्री चरणी करते, तो हो सकता है आज दोनों ही बॉलर अपने नाम की विकेट्स कर सके.
2: भूप, और खास करके हमने दीप्ति के केस में देखा है कि अगर वो कोई चीज को वेरी करती है, वो होता है उनका पेस, वो होता है उनके लेंथ, लेकिन लाइन हमेशा सटीक ही रहता है.
3: देखिए, शी इज अ वेरी गुड बॉलर. हम उसको जो नेदरलैंड्स के बॉलर है उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते. शी इज अ बिग मैच प्लेयर, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा विकेट्स ले रखी हैं, तो उसकी बॉलिंग यहाँ पे इस विकेट पे बड़ी अच्छी होगी. एंड मुझे लगता है कि जो नेदरलैंड्स के बैट्समैन हैं उनको काफी ट्रबल करेंगे.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की. नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई. प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की. पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई. रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी. मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की. और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. एवियो में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया.
5: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है. मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी. एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं.
4: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की. इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की. श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की. उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया. श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया. प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें. एक रिपोर्ट.
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की दो दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही. इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था. यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी. इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है. आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया।

0: कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी

0: कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
4: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 रुपए पर बंद हुआ।
2: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता

0: और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of 3-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance to India.
2: एक्सलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
1: Earlier, Prime Minister Modi addressed a working session themed promoting balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all at the ongoing G7 summit. In his address, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. Mr. Modi also participated in a working lunch focused on ensuring safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The meeting brought together G7 member countries, partner nations and the CEOs of leading AI companies to discuss the future of digital innovation. On the margins of the G7 summit in Evian, Prime Minister Modi and German Chancellor Friedrich Merz today exchanged views on regional and global developments, including the situation in West Asia and the Russia-Ukraine conflict. The two leaders also reviewed the progress in bilateral engagements and expressed satisfaction as a renewed momentum.

0: 10. India were bowled out 402 in 49.5 overs. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa, and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence, and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chased target of 403 runs set by India in second ODI of three-match series in Lucknow. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एवियों में G7 सरबराह इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग की। मीटिंग में बहरी जहाजों के अमले की सलामती और आबनाई हुरमुज को खुला रखने के उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ भी दोतरफा मीटिंगें की। पेरिस में विवाटेक 2026 के दौरान इंडिया पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब में भारत और फ्रांस ने जिद्दत तराजी, मसनूई जहानत और तकनीकी ताउन के फरोग के अज़्म का इआदा किया। रेलवे ने कनेक्टिविटी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई प्रोजेक्टों की मंजूरी दी। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों और मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3 एक रोजा बैन अलाकवामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। फ्रांस के शहर एवियों में G7 सरबराह इजलास 2026 के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक अहम दोतरफा मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मगरबी एशिया में अमन के कयाम की कोशिशों में होने वाली पेशरफ्त पर सदर ट्रंप की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत हमेशा समंदरी रास्तों पर जहाजों की आमद रफ्त की आज़ादी की अहमियत पर जोर देता रहा है और तमाम मुल्कों को इसके तहफ्फुज़ के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ समंदरों में बहरी तिजारत के शोबे से वाबस्ता लाखों भारतीय मल्लाह अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उनकी सलामती भारत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मस्नूई जहानत AI के महफूज, तेज रफ्तार और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मौजू पर मुनक्किदा वर्किंग लंच में शिरकत की। इस इजलास में G7 के रुकन मुल्कों, शराकतदार ममालिक और मस्नूई जहानत की मारूफ कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान शरीक हुए, जहां डिजिटल इख्तरा के मुस्तकबिल पर ख्यालात का तबादला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इलाकाई और आलमी हालात वाकयात पर बातचीत की, जिसमें मगरबी एशिया की सूरत हाल और रूस यूक्रेन तनाज़ा भी शामिल था। दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लिया और भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में नई रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। इस सिलसिले में चांसलर मर्ज के भारत के कामयाब दौरे और रवां साल भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे के मुजाकरात की तकमील का भी जिक्र किया गया।

0: चांसलर मर्ज ने वजीर आजम मोदी को इस साल जर्मनी में मुनक्किद होने वाली 8वीं भारत जर्मनी बैन हुकूमती मुशावरत में शिरकत की दावत दी। वजीर आजम मोदी ने सरबराह इजलास के मौके पर यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन देर लेन और यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो द कोस्टा के साथ भी मीटिंग की। पेरिस में जारी विवाटेक 2026 में भारतीय पवेलियन के इफ्तिताह के मौके पर भारत और फ्रांस ने इख्तराम मस्नूई जहानत और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन के अपने अहद को दोहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल और फ्रांस की मस्नूई जहानत और डिजिटल उमूर से मुतालिक वजीर एमिली हेनाम्प ने दोनों ममालिक के माबैन कलीदी शराकतदारी की बढ़ती हुई अहमियत को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इख्तराकारों और स्टार्टअप से खिताब करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के जरिए भारत फ्रांस इख्तरा के साल 2026 के ऐलान के जरिए भारत और फ्रांस की शराकतदारी मजीद मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि मस्नूई जहानत एआई के दौर में भारत को कई नुमाया फवायद हासिल हैं, जिनमें नौजवान आबादी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी स्टेम के माहिरीन की बड़ी तादाद, मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा और जमहूरी तर्ज हुक्मरानी शामिल हैं। उन्होंने भारत फ्रांस इख्तरा के साल का जिक्र करते हुए कहा कि स्टार्टअप्स और तहकीकी इदारों के जरिए बढ़ता हुआ ताबुन नई राहों और मौाक़े को जन्म दे रहा है। काबिले जिक्र है कि वीवा टेक 2026 में कायम इंडिया पवेलियन कौमी सतह के सबसे बड़े पवेलियन में शुमार होता है, जहां भारत के तेजी से फरोग पाते हुए स्टार्टअप्स और इख्तराई माहौलियाती निजाम की भरपूर नुमाइश की जा रही है। पेरिस से महेश चोबड़े की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय बिरादरी के अफराद उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनके खैर मकदम के लिए तैयारियां जारी हैं। कल सुबह वजीर आजम मोदी सरकर्दा चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के साथ मीटिंगें करेंगे और तवक्को है कि यह तबादला ख्याल दोपहर तक जारी रहेगा। इसके बाद वजीर आजम मोदी विवाटेक समिट में शिरकत करेंगे, जो कि यूरोप की टेक्नोलॉजी और इख्तराअ से मुतालिक एक अहम मीटिंग है। तवक्को है कि जनाब मोदी इस मौके पर खिताब भी करेंगे। शाम में वजीर आजम एक कम्युनिटी तकरीब में शिरकत करेंगे और भारतीय बिरादरी के साथ तबादला ख्याल करेंगे। भारतीय रेलवे ने गुजरात, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और मध्य प्रदेश में रेलवे की गुंजाइश बढ़ाने, माल बर्दारी के निजाम को बेहतर बनाने, हिफाजती इंतजाम को मजबूत करने और शहरी नकलो हमल के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए से जायद मालियत के मुतादिद बुनियादी ढांचा जाती मंसूबों की मंजूरी दी है। इन मंसूबों में गुजरात के एक अहम रेलवे सेक्शन पर दोहरी लाइन बिछाने, महाराष्ट्र में मालगाड़ियों के लिए एक नई कॉर्ड लाइन तामीर करने, मशरकी रेलवे में सिग्नलिंग निजाम को जदीद बनाने और इंदौर में एक अहम रोड ओवर ब्रिज की असर नौ तामीर शामिल है। इन इकदाम से रेलवे ऑपरेशन की कारकर्दगी में इजाफा, मसरूफ रेलवे राहदारियों पर दबाव में कमी, मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी और मौशी सरगर्मियों को फरोग मिलने की तवक्को है। कच्छ के खत्ते में रेलवे रास्ते को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए मगरबी रेलवे के 49 किलोमीटर तवील आदिपुर भुज सेक्शन की दोहरी लाइन बिछाने के मंसूबे को तकरीबन 493 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है। इस मंसूबे से इलाके में मुसाफिरों और माल बर्दारी दोनों के लिए बेहतर सहूलतें फराहम होंगी। इस तरह भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र में 3.7 किलोमीटर तवील सुल्तानी चिखली कोड लाइन की तामीर की मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 172 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जदीदकारी के एक अहम इकदाम के तहत मशरकी रेलवे में 450 करोड़ रुपए के सिग्नलिंग अपग्रेडेशन मंसूबे को भी मंजूरी दी गई है। रेलवे और इत्तला तनशियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज तकरीबन 600 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से पुणे रेलवे स्टेशन की बड़े पैमाने पर तौसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा 6 प्लेटफार्मों के साथ मजीद 6 नए प्लेटफार्म तामीर किए जाएंगे, जिसके बाद प्लेटफार्मों की कुल तादाद 12 हो जाएगी। इसके अलावा कामकाज की कारकर्दगी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम की जगह जदीद इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम नस्ब किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास

0: सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए भारत ने नुमाया तरक्की की है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ और फरोग के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत ने अपनी तहजीबी विरासत के तहफ्फुज़, फरोग और उसका जश्न मनाने के लिए कई तारीखी इकदाम किए हैं, जिनसे लाखों शहरियों में फख्र का जज्बा पैदा हुआ है। अहम वाकियात में सबसे अहम वाकया जनवरी 2024 में पेश आया, जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अजीमुशान श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अंजाम दिया। ये सदियों पुरानी एक ख्वाहिश की तकमील थी। हाल ही में मंदिर का दौरा करने वाले एक अकीदतमंद पंकज जारिया ने आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अपने तजुर्बात बयान किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकाल लोक प्रोजेक्ट का पहला मरहला अक्टूबर 2022 में कौम के नाम वक्फ किया गया। ये अजीम कॉरिडोर शानदार मुजस्मों, दीवारों पर बने फन पारों और तामीरात पर मुश्तमिल है, जो भगवान शिव की जिंदगी और उनसे मंसूब रिवायात की अक्कासी करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और मस्नूई जहानत पर मबनी निगरानी के निजाम से आरास्ता महाकाल लोक विरासत और जिद्दत का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका इफ्तिताह दिसंबर 2021 में किया गया था, ने यात्रियों के सफर के तजुर्बे को यकसर बदल कर रख दिया है। ये कॉरिडोर मंदिर को बराह रास्त दरियाए गंगा से जोड़ता है। 5.5 एकड़ पर मुहित इस प्रोजेक्ट ने लोगों की रसाई को बेहतर बनाया है और भारत के सबसे मौजिज रूहानी मराकज में से एक को नई जिंदगी बख्शी है। आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वाराणसी के रहने वाले प्रियांशु सिंह ने कहा कि ये कॉरिडोर यात्रियों की आमदोरफ्त में काफी आसानी फराहम कर रहा है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये इनकलाबी इकदामात इस बात की अक्कासी करते हैं कि मुल्क अपनी सकाफती जड़ों के तहफ्फुज के साथ साथ एतमाद के साथ मुस्तकबिल की जानिब गामजन है। सकीन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: दिल्ली पुलिस के खसूसी सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मुबैना हैंडलर शहजाद भट्टी से वाबस्ता 8 रुकनी कसीर रियासती दहशतगर्दी मॉड्यूल के मजीद 5 मुलजमों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बेस्ट 2.2 के दौरान मुस्कुरा मॉड्यूल के 3 अरकान को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान को दिल्ली और पड़ोसी रियासतों में पुलिस एहलकारों को निशाना बनाने, पाकिस्तान में मौजूद रब्ताकारों की तशहीर करने और ISI की सरपरस्ती में मुबैना तौर पर कायम तंजीम तहरीक तालिबान हिंदुस्तान को फरोग देने की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 हथियार, शहजाद भट्टी नेटवर्क से मुतालिक पोस्टर्स और दीगर काबिल एतराज मवाद भी बरामद किए, जिनमें पुलिस एहलकारों को धमकियां देने वाली वीडियोज भी शामिल हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों और मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल बिहार, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के इलाकों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन के दौरान तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के मजीद कुछ इलाकों, नीज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में जनूब मगरबी मानसून की पेशकदमी के लिए हालात साजगार हैं। महकमे मौसमियात ने अगले 2 रोज के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक कल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अंडमान और निकोबार जजायर में इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। क्रिकेट में लखनऊ में 3 एकरोजा बैन अलावामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का निशाना रखा है। इससे कबल भारतीय टीम 49 ओवर्स में 5 गेंदों में 402 रन बनाकर आउट हो गई। गिल और ईशान किशन ने सेंचुरियां बनाई। गिल ने 154 रन बनाए जबकि किशन ने 125 रन स्कोर किए। इससे कबल अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अब से कुछ देर पहले तक अफगानिस्तान

और जेमिमा रॉड्रिक्स बोल्ड, दीप्ति शर्मा 15 रन। दीप्ति शर्मा जैसे ही मैदान पे आती हैं वो एक सनसनी फैलाने के लिए बॉलिंग गेंदबाजी करती हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी पाकिस्तान के विरुद्ध की, जिस तरह आधी टीम को बाहर किया था। इस बीच एक बार फिर से श्री चन्नी के गेंद को स्वीप किया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, लेकिन वहां पर खड़ी फील्डर ने उसे गेंद को फील्ड कर लिया, कोई मौका नहीं। आज एक दुर्भाग्य रहा भारत का कि श्रेयंका पाटिल अपनी ही गेंद पर गेंद को रोकते हुए गिर पड़ी थी और एंकल चोट उनको लगी है। उनको मैदान के बाहर ले जाया गया। राधा यादव उनकी जगह फील्डिंग कर रही हैं। समय नीदरलैंड्स का स्कोर 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 155 रन की आवश्यकता है, 71 गेंदों का सामना अभी करना है। डी लीट इस समय खेल रही हैं 13 रन के स्कोर पर। कालिस खेल रही हैं 4 रन के स्कोर पर। ड्राइव किया से पॉइंट की तरफ पर राधा यादव ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ गेंद को फील्ड कर लिया। अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में फील्डिंग कर रही हैं श्रेयंका पाटिल की स्थान पर। श्री चरणी जिस तरह से गेंदबाजी कर रही हैं, एक ऑफसाइड में एक दीवार से खड़ी कर रखी है कप्तान। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, स्वीप करना चाहती थी, अंपायर की तरफ देख रही हैं और वाइड का इशारा। इस मैच में जो अंपायर हैं क्लियर पोलोशेक और सूर्य डफर्न जो कर रही हैं मैदान में अंपायरिंग, लॉरेन एगेन बैग तीसरे अंपायर यानी टीवी अंपायर के रूप में गेंदबाजी कर रही हैं। इस समय नीदरलैंड का स्कोर 56 रन पर 2। लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को फिर से स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया और गेंद को फील्ड किया गया और रन लेने का जो सिलसिला है वो और आगे बढ़ता जाए। इससे पहले भारतीय खिलाड़ी बहुत मुस्तैदी के साथ फील्डिंग कर रहे हैं। किसी भी तरह की अभी तक जो फील्डिंग में एक कसावट नज़र आती है नीदरलैंड की फील्डिंग के मुकाबले, वो अभी तक भारत के लिए बहुत ही संतोषजनक बात है। 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। डी लीडे समय खेल रही है, एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव किया था सीधे कवर्स के पड़े खिलाड़ी के हाथ में। शेफाली वहां पर खड़ी थी, गेंद को फील्ड कर लिया, रन लेने का कोई प्रयास नहीं किया। श्री चरणी इस समय गेंदबाजी कर रही हैं और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करती हैं। श्री चरणी जैसे बाएं हाथ की गेंदबाज हैं और बैटर्स को कोई मौका नहीं दे रही हैं। इस बार श्री चरणी गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, स्लॉट पे पड़ी, ड्राइव किया इसे, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा कवर पर हरमनप्रीत कौर खड़ी थी, गेंद को फील्ड कर लिया और रन लेने का कोई भी मौका नहीं दिया। लीड और कैलिस इस समय दो बैट्समैन बैटर्स खेल बीच मैदान पर। बबेट डी लीड जो कप्तान हैं। इस बीच एक बार फिर से श्री चरणी की गेंद लेग स्टंप की तरफ, गेंद को टर्न किया था और देखना है गेंद पैड से टकराई या बैट से लग के गई। अब जाके फील्ड किया दीप्ति शर्मा ने और अंपायर भी देख रही हैं और बेल्स हालांकि वहां पर बिखेर दी थी, एक हाथ ऊपर करके एक हल्की सी अपील विकेट के पीछे से श्रेया घोष कर रही हैं।

0: ये लगा आभा का चौका।
1: कीर्ति गौड़ मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी उनकी और ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी। बल्लेबाज ने मौका तोड़ा और गेंद को धीरे से कट कर दिया था डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ चार रन के लिए। तो इस समय क्रांति गौड़ से बातचीत कर रही हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर, उनको समझा रही हैं कि किस तरह से उनको अपनी गेंदबाजी की दिशा बनाए रखनी है। और दोनों बैटर्स कहना होगा बहुत अच्छा खेल इस समय दिखा रही हैं। लीड खेल रही हैं 16 रन पर और कैलिश खेल रही हैं 17 पर सामना करने के लिए अगली गेंद का। इस गेंद को धीरे से पुश किया था मिड विकेट की तरफ और इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जाता एक रन और लीड ने अपने खाते में जोड़ा, उनका स्कोर कैलिश ने अपने खाते में जोड़ा 18 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया। लीड का स्कोर इस समय है 16 रन 15 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। बैबेट डी लीड कप्तान है और विकेट कीपर भी हैं और एक तरह से कहा जा सकता है कि क्रिकेट में विकेट कीपर की को आकर बहुत देर तक जमने के लिए गेंदों को देखना नहीं पड़ता। इस बीच ये गेंद को धीरे से गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ ड्राइव कट किया है और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए।
0: ये लगा आभा का चौका।
1: लेग स्टंप के बाहर थी गेंद को धीरे से उन्होंने हवा में थी, हालांकि फील्डर जो खड़ी थी शॉर्ट फाइन लेग पर उन्होंने गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया था, पुश भर किया था गेंद को अपने बल्ले से और फील्डर के हाथ में तो नहीं आई लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जरूर चली गई। लीड इसके साथ ही 20 रन पे जा पहुंची, 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसने अच्छी गेंद थी, इस बार एक कदम आगे बढ़ी, धीरे से गेंद को पैड के साथ खेली थी लेकिन और इसके साथ ही रन लेने का कोई मौका वहां पर लीड को नहीं मिला। बबेट डी लीड कप्तान हैं और इससे पहले जो बांग्लादेश के विरुद्ध मैच खेला था इस T20 विश्व कप में अपना पहला मैच खेला था, वहां पर 50 रन से अधिक उन्होंने बनाए थे, एक अर्धशतक बनाकर टीम को एक सांत्वना दी थी। हालांकि बहुत कम स्कोर पर उनकी टीम वापस पेविलियन लौट चुकी थी, ऐसे मौके पर डी लीड ने आकर अपनी पारी को संवारा था। इस बीच एक बार फिर से तैयार, 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद थी। लेग ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को खेलना चाहती थी लेकिन गेंद उनके बल्ले को छकते हुए थी विकेट कीपर घोष की ग्लव्स में जाके पहुंची। बबेट डी लीड बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं और जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रही थी बांग्लादेश के विरुद्ध एजबेस्टन में, उन्होंने बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 45 बॉल में 50 रन स्कोर किया था। लीड फिर से तैयार हो रही हैं, क्रांति गौड़ के शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, गेंद को पुल करना चाहती थी, पूरी तरह से चूकी और गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में गई और देखना है अंपायर बात कर रही हैं वहां पर कि क्या कहीं गेंद बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर एक निर्धारित ऊंचाई से ऊपर निकली है, लेकिन 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की समाप्ति पर।
2: Well, that was a good bouncer. It was a bouncer heading on straight towards her head, and she missed it completely. She had a look at the umpire, the square leg, and there was no signal from the square leg umpire, which means it was a genuine delivery. So, see, the bounce has been a bit effective in this World Cup, I've seen, because some of the tracks in England also have a bit of bounce, and there's always something there for fast and swing bowlers. 133 more needed from 54 deliveries, which is 9 overs, and the game is just getting beyond the reach. Shefali bowls a first ball and it's placed backward a square on the offside straight to Jemima, and no addition to the total, so only 77 for 2. We missed some opportunity over there finding boundaries, and this World Cup India probably will be one of the contenders. Shefali close to some bowls. Oh, she's bowled, beautifully bowled. She missed it completely, and Callis is gone bowled, and that was beautifully bowled, and I think it held its line a bit as the player was the batter was waiting for the spin, and that didn't happen. It went, or it slided on, and it broke the timbers. An amazing delivery indeed, by all means. It drifted away, I can tell you that, and then it held its line, and the batter played the wrong line completely, and the stumps are disturbed. So which means the third wicket is down for Netherlands, 77 for 3 in the 12th over.

0: And Terry Callis walks back 18 from 13 with the help of three boundaries. And probably these are the opportunities that I think batters should not lose, as a matter of fact. This is a beautiful platform to find some form and get ready for the rest of the other games. So qualifying for the semi-finals is very challenging now, because you're in a pretty strong group. And when you play teams like Australia or India or South Africa, as a matter of fact, it won't be that easy indeed. So Netherlands have lost their third wicket. Callis has gone bowled by Shefali Verma. A beautiful delivery which actually drifted away, and it held its line and got the batter playing the wrong line. 77 for 3. And it's Richke. She's the new batter in, and she's going to play Shefali Verma. She's a very tricky customer. Quicker one, flicked away on the onside, and she's off the mark. Richke of the first ball, and that brings the captain on strike. 20 from 19, and she's played beautifully in this game so far. Got a half century in the last game against Bangladesh. And Shefali all of a sudden has got the habit of breaking partnership indeed. And very effective and fast becoming a genuine all-rounder. Next ball. She's back again. Pulls it high over deep into wicket. One go for four has been patrolled by Renuka. And in comes a throw. Rather, she was the fielder. And restricts to just a single. It's 79 for three. Two more balls remaining in the 12th over, as Netherlands need 131 from 50 deliveries, and the game is just getting beyond the reach. Richke on strike. Takes card from the umpire, and she goes for the reverse sweep. We've not seen reverse sweep in the whole game. This is going down towards the third man area, and that's gone away for four. Ye laga, ab haka choka. A smart bit of cricket indeed. A lot of scoops been played, the sweep been played, and the first time was being a river sweep and plate to effect. And it fetches her four more runs, and she's up to five. And a welcome boundary here for the Netherlands. And well, cricket time is a very funny game. She's on five from two, 83 for three in the 12th over, 127 needed. Shuffle in the field from Harmanpreet Kaur. No reinforcement on the offside within the 30-yard circle. Four inside the circle. Next ball. She's up and defending. Back to the ball. A very proper defensive push. Back to the ball. It brings the over to an end. 12 is gone. It's three down for 83.
1: 12 ओवर की समाप्ति पर 83 रन के स्कोर पर पहुंच चुकी है नीदरलैंड्स की टीम. लेकिन जैसे जैसे ओवर्स बीतते जा रहे हैं, मैच भारत की पकड़ में आता जा रहा है और नीदरलैंड्स से दूर जाता जा रहा है. मात्र 8 ओवर का खेल अब शेष रहा है और 15 से अधिक रन अगर प्रति ओवर बनाने की क्षमता है नीदरलैंड्स की, तब तो कुछ कहा जा सकता है. लेकिन अगर आज की परिस्थिति में, अभी की परिस्थिति में देखा जाए तो नीदरलैंड्स की टीम अब थोड़ी सी परेशानी में. 6.92 की उनकी गति है, जबकि उनको चाहिए 15.88. इस बीच क्रांति की पहली गेंद को घुमा दिया है ऑन साइड में. बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज का घेर की पट्टी को पार किया. एक रन उनके खाते में जुड़ा है और इसके साथ ही स्कोर हो गया 83 रन. इस बीच 84 रन 3 विकेट के नुकसान पर. इस बीच एक जानकारी हम और आपको दे सके हैं कि दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है भारत और अफगानिस्तान के बीच में लखनऊ में खेला जाएगा. इस बीच ये गेंद हवा में ऊपर है, देखना है फील्डर्स के नीचे है या नहीं, लेकिन बहुत ही थोड़े से अंतराल से बच गई. वो बाल बाल बची. वहाँ पर स्मृति खड़ी थी, गेंद की तरफ लपकी थी, लेकिन गेंद उनके हाथ पर नहीं आई. डी लीड 21 रन पर सामना करेंगे, जबकि रिस्क क्या स्कोर हो गया 6 रन बगैर किसी नुकसान के. 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12.2 ओवर्स के खेल पर. और 125 रन अभी भी चाहिए नीदरलैंड्स को इस मैच में पार पाने के लिए. 46 बॉल में गेंदों पर बहुत मुश्किल काम. शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, पुल करना चाहती थी, हालांकि पीछे विकेट कीपर अपील की मुद्रा में है, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड करार दिया. एक अतिरिक्त रन और इस ओवर में दूसरा अतिरिक्त रन एक लेग बाई से मिला था पहली गेंद पर. उसके बाद में एक रन बल्लेबाजी में मिला था और

0: उसके बाद में ये वाइड गेंद करार दी गई। 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर। कप्तान बबेट डी लीट इस समय बीच मैदान में सामना करने के लिए तैयार हैं और उनके साथ हैं रिस्क। इस बीच एक गेंद को पुश किया था लीड ने और एक रन अपने खाते में जोड़ा। 22 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया। भारत ने आज अफगानिस्तान के विरुद्ध सेकेंड जो मैच खेला था 170 रन से जीता है भारत ने, और ये सूचना हमारी श्रोताओं को दी जा रही है कि आज जो मैच खेला गया था लखनऊ में, दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच था और उसमें भारत ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 170 रन के बड़े अंतर से अफगानिस्तान को पराजित किया है। 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12.3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच लीड्स के में खेला जा रहा T20 विश्व कप का ये मैच। एक बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को धीरे से स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ खेला, एक रन और जोड़ा है। 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है, और अगर उनको प्रति ओवर 16.50 रन की दरकार है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है नीदरलैंड्स के लिए। और इस बीच क्रांति की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को कट किया था, स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ जा रही है बहुत तेजी के साथ, लेकिन अब जाकर राधा यादव ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया विकेट के पर एंड में, लेकिन तब तक बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था कि वो रन जुटा लेते। दो रन और जुड़े हैं नीदरलैंड के खाते में। जिस तरह से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, छिटकी थी वहां पर फील्डर के हाथ से, गली में खड़ी फील्डर के हाथ से लगकर गेंद गई थी स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ, थोड़ी सी मुस्तैदी रखी जाती थी, ये कैच हो सकता था। इस बीच एक बार फिर से क्रांति की गेंद, अगली गेंद अच्छी गेंद थी इस बार, लेकिन बैट और बल्ले से उलझी गेंद, बहुत तेजी के साथ रन चुराते हुए डी लीड्स दौड़ी, वहां पर उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया। इसके साथ ही 25 रन 13 ओवर की समाप्ति पर 92 रन 3 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स का स्कोर।
1: No Indian bowlers have been tossed in this game, and a lot of cricket going around the world. India playing Afghanistan, and they won the game today, the second ODI by 170 runs, with centuries from the captain and of course the wicketkeeper. They're all hammering hundreds, and it was a comprehensive win for India. 402 when they batted first. Shubman Gill scored 154. And Ishan Kishan scored 124, and they won comprehensively. 170 runs is the margin of victory. So six bowlers have been used, and one is indisposed, which is Sri Lanka. Otherwise, Kranti Grau has bowled a 4 overs for 26. Nandini back in action now. 2 overs, 1 for 16 bowls. She goes for the scoop, does well, beats the short final leg fielder. This will race away. No, it probably should be stopped a few yards inside the fence by Sri Charani. Couple of runs here. The scoop has come into effect in this game well from Netherlands' point of view. It's one area where there's a lot of risk involved, but as a matter of fact, it fetches you more runs and disturbs the rhythm of the bowlers. And that takes the lead. She's on 27 from 25, fast catching up with the half century scored last Sunday against Bangladesh. Next ball. She daps the ball in down towards long on, and they were all held for a single. Lot more than that. Not sure why, Nandini's running after that, because she's well aware of the fact there is a fielder patrolling the long on boundary, and I probably can appreciate the commitment over there, but that's absolutely unnecessary. 3 for 95 in the 14th over, 115 more needed from 40 deliveries, which is beyond the reach of this Netherlands team. But I'm sure by the time these guys come and play in the next World Cup, you probably will see a reshaped young Netherlands team. Next ball is pushed back to the bowler, and a shy back at the bowler. I think it's hit her somewhere. And a bit of a friendly gesture and acknowledgement from both sides, both by the batter and the bowler. And it's a dot ball in the end, 3 for 95. Rich K, she's on 7 from 6, having played a nice little river sweep in the last over. And I think 2 on 9 for Bowl needs is a massive target to be chased in one. I felt maybe they should.

0: bad at first. But I mean, you know, to their advantage, as a matter of fact, and have some runs on the board and defend the total rather than chasing anything over 209. Nandini balls, slow ball, and he gets an inside part of the bat. Again, a clash between the bowler and the batter, and they get an easy run indeed. It takes Rich K up to 8 from 7, and D lead back on strike 28 from 26. 6.2 is still remaining after this. It's the formalities we're going through. And it's probably one of the most, you know, one-sided affair of this overall World Cup. I probably can tell you that. And mind you, Netherlands have to play Australia, South Africa and Pakistan. They probably will fancy the chances against Pakistan, as a matter of fact, but it's two strong teams. They need to play again. Nandini balls this time short. She can't see. She's been stamped smartly. Brilliant bit of work from Richa Ghosh. The captain goes stumped beautifully. And Nandini gets another wicket, isn't it? She's got a second wicket. And Netherlands now in deep trouble. They lose their key premier player. The captain gone, stamped smartly. She was coming down the track. And then she bowled it short intentionally. And she missed it completely. And an easy stumping for Richa Ghosh to complete. And that brings to an end, the end of the Captain D lead, stamped by Ghosh and off the bowling of Nandini for a well-compiled 27. Probably she could have stayed in there to get a better personal landmark, and 28 from 27. She walks back but dejected, and she knows the importance of a wicket, and News and Netherlands sink further. 96 for 4, and well, it's been, you know, Goswami, a one-sided affair. You know, the moment they lost it, they won the toss and preferred to bat first. To my surprise, they should have batted first, I feel, and put some score and defend the target. They did well against New Zealand. Correction, they did well against Netherlands in the first game. But this Indian side is pretty strong, both with bat and ball, and tons of experience behind them, and so much of cricket they play continuously and consistently. And there's some potential match winners on the side, the guys who can turn around quickly, and there are some players who can change the course of the game in few overs, someone like Richa Ghosh or Smriti Mandhana. She's such a wonderful player to watch, and a very gifted left-hander. It's been India's day so far. The men team have proven their mettle. They won the game against against Afghanistan by 170 runs. And the women's team is not far away. That one is a 50-over match, and the one that we are doing is a 20-over game. And June has been a month flooded with variety of sports, tennis, football, variety of T20, 50-50, test matches going on. England are playing New Zealand today with 220 for 5. New Zealand some time back. No Stokes in that game. He's got his own problems beyond the playing hours. Unfortunately, it's Root leading England after a long gap, and he's playing his 167th test match. Would you believe? He's playing 167th test match, and the rest of the other England side all put together 114. But a wonderful cricketer. Fans seem to get past Tendulkar somewhere down the line. He's got 3 or 4 years of cricket left with his bat. So right now, back here in Leeds, at Leeds, India on the way. They're in complete command of this game, and Netherlands probably haven't batted badly, but they're learning, continue to learn as the game goes on, the months and years to come, and they probably at some point of time in the next 10 years time, they'll be a strong contender in the T20 format, as a matter of fact. So right now, new player is going to step into the centre, play briefly held up with the exit of the captain, who's been stumped smartly by Ghosh, and off the bowling of Nandini, and one casualty in the inside with Patil. The off-spinner, you know, just bowled one ball, and she had a nasty fall. She slipped, and she suffered an ankle injury. Say, over Dick. She's the new batter in, and the batter at the other side is Rich K. Netherlands, 96 for 4, one ball to go in the 15th over, and the target they're chasing now looks very unrealistic. 210. Nandini with the last ball of her third over, bowls fuller, and lifted in the air, wide of mid-on. It'll be cut off by Jemima Rodrigue. She does well to cover. Have to run 15 metres. Couple of runs here. And after 14 overs, Netherlands, a 4 for 98.
1: 14 ओवर की समाप्ति पर 98 रन पर 4 विकेट इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है, जो 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं. हीट सीजर्स, कॉट, स्मृति मंधाना, बोल्ड, कीर्ति शर्मा 21 रन, मेलकन बोर्ड कॉट जेमिमा रॉड्रिक्स बोल्ड, दीप्ति शर्मा 15 रन, बबेट डेलीट स्टंप, ऋचा घोष बोल्ड, नंदी शर्मा 28 रन और स्टीव कैलिस जिनको सैफ अली ने बोल्ड किया था 18 रन के स्कोर पर। और इस समय चार विकेट जो गेंदबाजी का सिलसिला है, नंदी शर्मा ने तीन ओवर में 22 रन देके दो विकेट लिए, सैफ अली वर्मा ने तीन ओवर में 20 रन देके एक विकेट लिया है। और पाटिल जैसा कि इंजर्ड होकर चली गई थी, एक गेंद फेंकी थी, श्री चंडी ने दो ओवर में 11 रन दिए, कोई विकेट नहीं। और दीप्ति शर्मा ने दो ओवर में 18 रन देकर एक विकेट लेने में सफलता हासिल की। तो इस समय नीदरलैंड जूझ रही है भारतीय आक्रमण के समक्ष। 14 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, डिसीजन को रिव्यू किया गया है, देखना है अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया है और तीसरे अंपायर अब टीवी पर देखकर, टीवी अंपायर लॉरेन एगेन बैग टीवी अंपायर की भूमिका इस मैच में निभा रही हैं। और डिसीजन जिस तरह से आपको हम निरंतर बता रहे हैं कि गेंद को स्वीप करना चाहा था और गेंद उनके बूट पे लगी है, देखना है गेंद बैठ के कहीं किसी किनारे भीतरी किनारे से तो नहीं लगी, यही देखना है। और अगर नहीं लगी तो फिर उसकी क्या दिशा रही है, क्या गेंद स्टंप्स को छूकर निकल रही है या स्टंप्स के पास से निकल रही है, इन्हीं सब बातों का एक चिंतन होता है। और तीसरे अंपायर की तरफ से ये निर्णय किया जाता है। क्रिकेट में जब से रिव्यू सिस्टम आया है, बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब बेहतरीन बल्लेबाज कई बार गलत तरीके से आउट दे दिए जाते थे, लेकिन बाद में इस तरह की कंट्रोवर्सीज निकलती रहती थी। लेकिन फिलहाल देखना है कि अब जाके पूरी तरह से संतुष्ट, मिडिल स्टंप पर गेंद टकराई है, लेकिन देखना है कि क्या निर्णय होता है। अंपायर ने अपना निर्णय दिया, आउट हो गए हैं बैटर और ये अंपायर की उंगली उठी। इसके साथ ही रिज की पारी यहीं पर समाप्त हुई और एक और करारा छक्का लगा है। रॉबिन रिज 8 रन पर आउट हुए हैं। LBW बोर्ड श्री चरणी, उन्होंने मात्र 3 डॉट गेंद बनाई, एक रन उनके खाते में जुड़ा और इस तरह से दक्षिण नीदरलैंड्स को एक और करारा छटका लगा है। और देखा जाए तो एक तरफा मैच होता हुआ विश्वनाथ ही नजर आ रहा है कि किस तरह से पहले टॉस जीतने के बाद एक मौका मिला था कि वो बल्लेबाजी करती, लेकिन उन्होंने बेटर समझा, उचित समझा ये कि हम पहले गेंदबाजी करें। भारत ने 209 रन का स्कोर उनके समक्ष दिया है।
0: Well, at times I probably will say it's a match of the unequals, isn't it? One of the top-ranked team playing a team which is new entrant. And a long way to go. Charney bowls and driven to its long haul for a single. She's off the mark, Zwilling. She bowled well indeed. And takes Netherlands up to 99 for 5.
1: Zwilling ne apna khata khola hai, ek run liya hai, jis tarah se pichli gend par out hua tha. Umpire ne ek aur out nahi diya, lekin review diya aur us par भारत को सफलता मिली। 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है। ओवर डिस्क इस समय 2 रन के स्कोर पर खेल रही हैं। ज्वेलिंग ने 1 रन बनाया है और अब 111 रन पीछे है अभी भी नीदरलैंड्स की टीम भारत के मुकाबले, जबकि 34 गेंदों का खेल शेष रहा है। बहुत ही मुश्किल, कोई चमत्कार ही हो तो अलग बात है। इस बीच ये गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, सुरक्षात्मक तरीके से खेला, गुड लेंथ गेंद थी। एक बार फिर से श्री चरणी को सफलता मिली कि उन्होंने मौका नहीं दिया बैटर को रन लेने के लिए। ओवर डिस्क इस समय खेल रहे हैं 2 रन के स्कोर पर और एक बार फिर से श्री चंडी गेंदबाजी करने के लिए राउंड विकेट, एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव करना चाहती सीधा, लेकिन गेंद बन लेके बाहरी किनारे से लगते हुए थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: एक चौके से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन निश्चित रूप से ये मैच अब भारत की पकड़ पे मैं आ चुका है। श्री चरणी ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए इस ओवर में एक विकेट लेने में सफलता हासिल की थी और अंपायर ने हालांकि उसको आउट नहीं दिया था, लेकिन बाद में रिव्यू लेने पर उनको सफलता मिली। इस बीच ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया था इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ, इससे पहले की गेंद फील्ड की जाती है, थ्रो किया जाता, एक रन और उन्होंने अपने खाते में जोड़ा, हालांकि मिस फील्ड हुई। 103 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर है और एक गेंद अभी भी शेष है श्री चैनी के इस ओवर की। 14.5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। नीदरलैंड्स के बल्ले से अभी तक 104 रन निकले हैं, 5 विकेट का नुकसान उनको हो चुका है, आधी टीम उनके आउट होकर पेविलियन लौट चुकी है और भारत के लिए ये एक आत्मविश्वास भरी गेंदबाजी इस समय की जा रही है। गिली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पर गए, गेंद को धीरे से पुश किया स्क्वायर लेग एम्पायर की तरफ और इससे पहले कि गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता है एक रन और जोड़ लिया। 106 रन 15 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया है नीदरलैंड्स का।
0: So the game has gone one-sided, isn't it? Last 5 is coming up and it's certainly out of reach now. The ask is around about 20 runs and over, so we haven't seen any of the best of the IPL games. And 209 in reply after 15 overs, 105 for 5. So Dee Lange, she bowled well. She bowled 4 overs for 32. And she was the best of the ball. She had 2 wickets in the game against Bangladesh too. She bowled 4 overs 2 for 27, isn't it? In that game. It's going to be Deepti Sharma to bowl her 3rd ever flights this one. And it's lifted in the air, safe. It'll fall safe of the fielder Mandana at deep mid-wicket. In fact, it's not Mandana, I can tell you that. It's Rava. She fields in and sends in the return 106 for 5. And the last 4 overs and 5 deliveries coming up to complete the formalities of this game as they need 104 from 29. And Frederick Erdick, she's the one playing Richa Sharma. She comes in from close to some bowls and she slogs three to this man, not with much power and timing. Again, Mandana in business, Radha in business. And one more to the Netherlands team. They go up to 107 for 5. But I tell you, by all means, for a team like Netherlands, you know, this is a massive experience for them. One is to qualify for the World Cup. They'll be very happy if they win one game in these qualifying matches. Next ball is defended up to short mid-wicket. Mandana, obviously, rather Kaur, in fact, Harmanpreet Kaur, she's the fielder. And Mandana probably will be strong contender for the player of the match in this game. And the game has been a bit disappointing in the second half, I can tell you. The first half was more entertaining and enterprising. Next ball, she gets a thick outside edge. She's going down towards no women's land. And they run just a single. It was not timed. A thick edge that went sailing in the air and fell between mid-on and deep mid-wicket. You could cross over for an easy single. So that takes in Netherlands up to 108 for 1. 3 singles in this over. Deepti's having a nice little time. She tosses this one nicely. Again, slog swept, not with any timing. So the swipes, the ugly, has been looking very ugly, isn't it? The slog sweeps hasn't been as elegant as it has been. And most international wickets now is now Deepti from India sharing with Goswami 355. Magic figure indeed. Next ball, she's lifted this one high, ever long gone, and it's gone for 4.
2: Ye laga abha ka choka.
0: Well, that's a welcome boundary from a Netherlands team point of view. 42-4 in this game so far, and at the end of 16 overs, it's 5 down for 113. Winning is out of equation now, Goswami, but I'm sure they're going to play for pride. They're going to play with a lot of passion. And they're probably trying to narrow the gap and settle somewhere between 150 to 160 if all their wickets remain intact from a Netherlands point of view. But they'll be very happy if they win one game in the league games of this World Cup before they leave back for Netherlands.
1: 16 ओवर के बाद 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर उठा दिया। इस गेंद को देखना है कि इसके पीछे फील्डर है कि नहीं, और इसके साथ ही ये कैच बहुत ही शानदार तरीके से एक और विकेट मिला है श्री चरणी को। और जिस तरह से श्री चरणी ने अपने ओवर की शुरुआत की थी और गेंद को थोड़ी सी फ्लाइट किया था, बल्लेबाज को आमंत्रित किया था, स्मृति मंधाना ने एक कैच और पकड़ा है। स्लॉट पे पड़ी थी गेंद और उसे उठा दिया था बिल्कुल, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाई शॉट को। स्मृति मंधाना वहां पर खड़ी थी और एक शानदार कैच पकड़ते हुए इस बार एक और फ्रेडरिक ओवर डिस्क ने मात्र 9 रन बनाए 7 गेंदों का सामना किया। कॉट स्मृति बोल्ड श्री चंडी 7 रन। इस समय छठा विकेट आउट हो गया है, 6 विकेट गिर चुके हैं और अब पूरी तरह से दर्शकों में भी उत्साह, तिरंगा लहरा रहा है मैदान।

में वहां पर और निरंतर इंग्लैंड की धरती पर जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग भी निवास करते हैं, ऐसे किसी भी मैच को वो से मैदान पे ज़रूर आते हैं। 97 रन की अभी भी ज़रूरत है नीदरलैंड्स को, लेकिन अब ओवर बहुत ही कम बचे हैं। एक तरह से मैच भारत की पकड़ में पूरी तरह से आ चुका है और अब राड आए हैं अगली बल्लेबाज के रूप में। अच्छी गेंद थी अंपायर की तरफ से, एसआरएस के साथ ही आउट, एक और विकेट मिला है। श्री चंडी ने इस गेंद को थोड़ा से हवा में फ्लाइट किया था और डीआरएस लिया है वहां पर। बल्लेबाज ने देखा कि जैसे ही उनको लगा कि कहीं उनका किनारा नहीं लगा है, श्री चंडी की गेंद को कट करना चाहती थी, लेकिन बॉल ने उनके बल्ले का एक बाहरी किनारा लिया या नहीं लिया यह अब डीआरएस के जरिए तय होगा। लेकिन भारत के खेमे में उत्साह, क्योंकि अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी थी और अब देखना है कि बहुत नज़दीकी मामला है उनकी बैट से लगी या नहीं। यहाँ से देखने पर तीसरे अंपायर के पाले में गेंद गई है अब, और जो मूल निर्णय है वो आउट का है अंपायर की तरफ से, और देखना है कि गेंद बल्ले से टकराई या नहीं। लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच विकेट के पीछे ऋचा घोष ने लिया है, और अगर ये परिणाम में बदलता है तो एक और विकेट नीदरलैंड का गिर जाएगा। बैट से टकराई है और अंपायर ने अब जाके अपने निर्णय को वापस बरकरार रखा है, और अंपायर ने दूसरी बार तीसरे अंपायर की सलाह पर अपनी, देखते हैं उंगली उठाई या नहीं, लेकिन लेकिन बैटर पेवेलियन की तरफ लौट रही हैं और धीरे धीरे कदमों से लौट रही हैं। अभी भी कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर से निर्णय को देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा की गति से जब गेंद निकलती है, कई बार तो ऐसा लगता है कि बैट से लगा है, लेकिन विकेट कीपर ऋचा घोष को पूरा कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, और अब जाके निर्णय अंपायर का, उंगली ऊपर उठी और राड जो कि शून्य पर आउट होकर पहली ही गेंद पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया, और सातवां विकेट नीदरलैंड्स का गिर चुका है। और अब सीजर्स आई हैं बीच मैदान पर, और ये श्री चरणी लगातार दो विकेट ले चुके हैं, हैट्रिक पर हैं। देखना है अगर वो ये कमाल कर पाती हैं कि एक विकेट और वो अगर अगली गेंद पर लेती हैं तो एक बड़ी उपलब्धि उनके नाम पर जुड़ जाएगी। 16.2 ओवर का खेल अब तक पूरा हो चुका है, 113 रन 7 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स का स्कोर है, और अब कितने रन की आवश्यकता है सवाल यह नहीं है। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि भारत कितनी जल्दी इस मैच पर विजय प्राप्त करती है। इस बीच इस गेंद को ड्राइव किया था, लेकिन गेंद मैदान पर लुढ़कती हुई जा रही थी, गेंद को फील्ड किया, एक रन और खाते में जुड़ा है। सीजर्स ने अपना खाता खोल लिया है 114 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अभी भी 3 गेंदें शेष हैं, और श्री चरणी अपनी कलात्मक गेंदबाजी से कितना कुछ कर पाती हैं। सीजर्स ने 24 पारियों में 69 रन बनाए, बहुत अच्छी बैटिंग कोई उनकी रिकॉर्ड में दिखाई नहीं दे रही है, और 20 गेंदों का खेल अब शेष रहा है, 96 रन की दरकार है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। भारतीय दर्शकों में अपार उत्साह, तिरंगा झंडा भी फहराया जा रहा है, शोर करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ ही ये गेंद को खेला था, लेकिन गेंद टप्पे के साथ उछली थी हवा में और विकेट के बीच में आके उसको अपने हाथों में लिया था श्री चंडी ने। ऐसा लगा था यहाँ पर दर्शकों को कि कोई कैच है, लेकिन क्योंकि बैट्समैन ने बहुत सुरक्षित तरीके से खेला था। अगली गेंद अच्छी, और इस गेंद को उठा दिया है, देखना है गेंद बाउंड्री में क्या पार, जिसके साथ ही आउट, एक और विकेट गिर चुका है श्री चंडी की। इस ओवर में देखा जाए तो 3 विकेट उन्होंने जरूर लिए हैं, लेकिन लगातार 3 विकेट लेते तो हैट्रिक होता, लेकिन इस ओवर में सफलतम 17 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 114 रन 8 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स का स्कोर, और बहुत ही सफल ओवर जिसमें 3 विकेट उन्होंने श्री चंडी ने लिए हैं, और एक तरह से बहुत ही शानदार जेमिमा रॉड्रिक्स जो कि लॉन्ग पोजीशन पर फील्डिंग करती हैं उन्होंने कैच किया। आयरिश ज्वेलिंग 8 रन पर

0: the dressing room, in the Indian dressing room, their thinking will be completely different. They will forget what they have done against, you know, Pakistan or Netherlands. Yeah. So the, and don't think that they are a world beating side. They're a very good side, and they, and many of their cricketers play cricket in these kind of regions and are familiar with the conditions. Similarly, if you see, not many Indian cricketers actually are used to these conditions.
1: Right.
0: Because you see, Smriti Mandhana said something very interesting, that she played the 100. Okay. So these kind of conditions actually help them prepare better. That's why do you think that Smriti Mandhana is not happy with her 250s? Is because she knows that the next set of matches will be very, very crucial. And if she can't middle the ball, bat agar balla mein nahi laga, that feel good factor is not there. The runs will not come because the bowling from South Africa will be very, very tough.
2: Right, I think that's...
3: A lot will depend on the type of wicket that is provided. And in case it is a slightly spinning wicket, we have a good chance of beating South Africa.
2: All right, because Lees will also be waiting to rip the ball. So Shabnam Ismail is again someone who's quick when there's a little bit offerings from the surface. Now let's go to our listener. Ji, aap kahan se call kar rahe hain? Bataiye, aapka parichay dijiye. Namaskar. Ji, bataiye, aapka sawal kya hai? Shukriya, sir. राइट, श्रीयंका पाटिल के इंजरी के बारे में पूछ रहे हैं जी, बताइए. बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे लुत्फ उठाते रहे, हम यही उम्मीद करेंगे. वैशाली, आपसे रहेगा ये सवाल फिर कि श्रीयंका पाटिल की कमी क्या खलेगी अब इंडिया को?
4: कहने के लिए खल सकती है, लेकिन हमारे पास बेटर ऑप्शन है अभी राधा यादव, एंड वो बेटर फील्डर भी है. जैसे मैंने बोला कि बैटिंग भी करती है वो, तो हमारे पास उसे उनसे थोड़ा सा बेटर राधा यादव है, एंड वो इम्प्रूव भी कर रही हैं. उनकी हम देखें तो उनकी बैटिंग पहले से बहुत इम्प्रूव्ड हो गई है, एंड बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करें तो वो काफ़ी बेटर एंड क्रिप के साथ जो बॉल डालती है तो वो काफ़ी अनप्लेएबल बॉल होती है. एंड अगर हम बात करूँ बैटिंग के लाइनअप की, जो अभी आप बात कर रहे थे थर्ड डाउन की, बट हमारे पास मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, और वो साउथ अफ्रीका टीम के लिए, हम उस उनके अगेंस्ट जब खेलेंगे तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं लैक हो सकता है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर को बैटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी दो लास्ट टू मैचेस से दिख नहीं रहा है, नॉट इवन नॉट लास्ट मैच, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और वहाँ पर यास्तिका भाटिया या भारती की जगह जो भी खेलता है नेक्स्ट मैच में, उनकी जगह पे हरमन का आना बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर जैमी.
5: बिल्कुल, और हमने देखा है कि भारत जब विकेट्स लूज करता है तो वो क्लस्टर में लूज करता है, खास करके मिडिल ऑर्डर में. साउथ अफ्रीका के विरुद्ध सीरीज गवाई थी, लेकिन साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में 4-1 से उस श्रृंखला में हार का सामना करना पड़ा था भारतीय टीम को. अभी कंडीशंस काफ़ी अलग होंगे, लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम नेट रन रेट में काफ़ी पीछे. भारतीय टीम ने पहले दो मुकाबलों को बहुत अच्छे से बुनाया है इस वर्चुअल नॉकआउट से पहले. भू
3: नहीं, हमारी टीम अच्छा खेल रही है, दोनों जो मैच जीते हैं वो बड़े कन्विंसिंगली हमने जीत लिए हैं. एज फार एज साउथ अफ्रीका इज कंसर्न्ड, उनका अभी शबनम इस्माइल हैज जस्ट कम बैक इनटू द टीम फ्रॉम रिटायरमेंट, सो दैट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज शी इज बॉलिंग क्वाइट वेल, शी प्लेज इन द WPL, शी नोज ऑल आर बैट्सवुमन. सो मेरे को लगता है कि अगर हम शुरू के जो हमारे जो बैटर्स हैं वो 6 ओवर निकाल लें आराम से विदाउट लूजिंग मोर देन 1 विकेट, then we can get a good score against South Africa and then put them under pressure with our bowling. Bowling is quite good as far as the spinners are concerned.
5: Absolutely, और वॉलफार्ट शानदार फॉर्म में है, पिछले साल विश्व कप में 50 ओवर के विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन किया था, और अभी भी रन बनाने की मशीन बनी हुई है.
0: क्वालिटी बैट्समैन है, देखिए पेडिग्री जो है ना वो आपको दिखेगा रिगार्डलेस कि कौन फॉर्मेट में वाइट बॉल खेल रहे या रेड बॉल. देखिए मंदाना, हरमनप्रीत, मिताली राज पहले थे, तो दे हैव क्वालिटी, और क्वालिटी जिस बैट्समैन में पेडिग्री और क्वालिटी है, दे कैन प्ले इन एनी फॉर्मेट ऑफ द, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग कि नंबर 3 में कौन बैट करना चाहिए, राइट, बिकॉज टुडे यास्तिका डिड नॉट गेट द रन्स एज डिजायर्ड.

0: These kind of matches are very, very crucial. There, nobody will not look at run rates. They will look at victory, 2 points, right? So it is very, very important that, you know, you go with a proper mindset. Or is tarah ka match hum jeetne ka koshish karenge, not about run rates.
1: Not about run rates. It brings us to a very interesting point at this stage. On the 21st, Colonel, it's going to be the Indian bowlers versus South African batters. Or do you think the South African bowlers versus the Indian batters? What do you think will be the bigger battle on that day?
2: I think the bigger battle would be the South African bowlers versus the Indian batters. And I hope we do well. Okay. And score over 150 and put them under pressure with our spinners.
3: और हमने देखा है कि साउथ अफ्रीकन गेंदबाजी में काप जो कि काफी अनुभवी खिलाड़ी है, हालांकि बल्ले से योगदान आ रहा है, लेकिन गेंदबाजी में उनकी कमी कहीं ना कहीं खल रही है साउथ अफ्रीका को।
4: गेंदबाजी की बात करूं तो उसमें कहीं ना कहीं ना साउथ अफ्रीका का जो हमने लास्ट मैच खेला था वहां पे अगर देखा जाए तो फील्डिंग ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि दोनों साइड के बैटर बहुत अच्छे हैं एंड स्पिनर एंड बॉलर्स की अगर हम बात करें तो बहुत काफी है। बट यहां पे डिफरेंस होगा सिर्फ आपकी फील्डिंग को लेकर कि आप कैचेस को कैसे ग्रैब कर रहे हैं। आप फोर, जहाँ पे आप फोर को स्टॉप कर रहे हैं वहाँ पे आप टू रन्स दे रहे हैं, तो वो बहुत मैटर करता है फील्डिंग के अंदर। एंड साउथ अफ्रीका टीम के साथ हमें यही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी रन्स जितने कम से कम दे सकते हैं उनको, वो तभी आप आगे जीत के लिए जा सकते हैं। एंड उसके साथ मैं एक चीज और ये कहूंगी कि जैसे आज नंदिनी शर्मा ने बॉल डाली, आउटस्टैंडिंग बॉल डाली, बट उसके साथ अगर हम उन दोनों के फर्स्ट एंड सेकेंड ओवर देखें तो वहां पर कहीं ना कहीं लेग साइड पे बॉल जा रही थी एंड वो हमें इम्प्रूव करनी है। जब जीत हमें मिलती है तो हम गलतियां भूल जाते हैं, बट गलतियों को देख के अगर हम उसको इम्प्रूव करें तो वो हमें नेक्स्ट मैच के लिए विन दे सकती है।
1: इंडीड। और नंदिनी शर्मा की आपने जब बात की तो कीपर ऋचा घोष उनके लिए आगे खड़े हुए थे क्योंकि बल्लेबाज चहलकदमी करने पर उतर आए थे ताकि झूलती हुई गेंद को बेहतर संभाल सके। क्या आगे जाते हुए भी हम इन कंडीशंस में इसी पैतरे को आजमाते हुए देखेंगे ऋचा घोष स्टैंडिंग अप?
4: जी बिल्कुल, ऋचा घोष, मैं हमेशा बोलती हूँ इंडियन टीम के लिए बेस्ट है एंड उनकी बैटिंग ही नहीं, उनकी कीपिंग भी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वो कहीं भी लेग साइड हो या ऑफ साइड हो वो हर जगह पे आपको डाइव लगाती हुई नजर भी आएंगी एंड वो जिस तरह से अपना माइंड सेट रखती हैं उस तरीके से वो बॉल भी डलवाती हैं बॉलर्स को। वो इशारे से जो एक इशारा देते हैं हम विकेट कीपिंग की जगह पे खड़े होके, वो बॉलर को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एज एक टीम के लिए कीपर बैकबोन होता है, क्योंकि वो एक कीपर वहाँ पिच पे खड़े होके पूरी फील्ड सेट कर सकता है, सबको देख सकता है, उसके लिए वो सबसे ईजी पॉइंट है वहाँ पे खड़े होके चेक करना।
1: All in all, a great win for the Indian side, and now they'll be putting their feet up and watching Pakistan take on the South African bowlers, especially so that they are better prepared and they do their homework for the next game on the 21st. Megha?
3: Absolutely. Indian team would now turn its attention on making all the notes. वैशाली यूज द वर्ड इशारा, हमारे प्रोड्यूसर की तरफ से इशारा आ गया है इसी बात पे कि इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं इस प्रॉमिस के साथ कि 21 जून को हम वापस आएंगे। सुहास, आपका धन्यवाद, हमारे विशेषज्ञों का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्रोडक्शन की जिम्मेदारी प्रोड्यूसर शहनवाज खान ने उठाई, और प्रोडक्शन टीम में इंजीनियर्स हैं मनोज, अजय राणा और आर यादव, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स हैं तन्मय पंत, अमीशा पटेल और कविता। और इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम का यहां पर समापन करेंगे, वापस लौटेंगे 21 जून को भारत और साउथ अफ्रीका के मुकाबले के साथ। जुड़ते हैं आपके साथ शाम 6:30 बजे।
5: प्लेयर ऑफ द मैच,
6: अभी आप आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नेदरलैंड्स के बीच खेले गए टी20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
7: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द टी20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड नेदरलैंड्स ऑफ द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

मैं डॉक्टर अजय सिंह, आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।

शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है,

पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा।

0: रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
1: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

93 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:53 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।